मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 जुलाई 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:52 हो रहे हैं। आरंभ होती है आज की हमारी सभा।

0: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 5:55 हुए हैं। खेत खलिहान कार्यक्रम में आइए सुनते हैं वार्ता। विषय है धान का खैरा रोग।
1: किसान भाइयों नमस्कार। धान के पौधे पर अनेक रोग हो सकते हैं। उन रोगों में प्रमुख है धान का खैरा रोग, जिसे आप ललकी रोग के नाम से भी जानते हैं। जब यह खेत में रोग होता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में दिखाई देता है। रोग के लक्षण नर्सरी या पौधशाला में और रोपाई के बाद खेतों में दिखाई देते हैं। सबसे पहले रोगी पौधे की पत्तियों के आधार पर हरिमाहीनता हो जाती है, यानी कि उसकी हरियाली नष्ट हो जाती है और पत्ती पर आरंभ में छोटी छोटी भूरे अथवा कस्य रंग की चित्तियां बनती है, जो बाद में पूरी पत्ती के पत्रदल पर फैलकर बड़ी हो जाती है और पौधे की संपूर्ण पत्ती सूखकर लाल बादामी अथवा कस्य रंग की दिखाई देती है। यूं कहें कि वो कत्थई रंग की दिखाई देती है, ठीक वैसे ही जैसे कि पान खा करके व्यक्ति जो पीक फेंकता है उसके रंग की हो जाती है धान के पौधे की पत्तियां ललकी या खैरा रोग में। रोगग्रस्त पौधे छोटे रह जाते हैं, उनकी जड़ों की बढ़वार भी रुक जाती है और पौधों में या तो बालियां बनती ही नहीं हैं और यदि बनती भी हैं तो उनमें दानों की संख्या कम होती है, बालियां भी छोटी हो जाती हैं। इस रोग से फसल की उपज में होने वाली हानि रोग की व्यापकता पर निर्भर करती है। यदि रोग उग्र रूप से पैदा होता है और ज्यादा क्षेत्र में फैलता है तो संपूर्ण फसल बाली लगने के पहले भी नष्ट हो सकती है। इस रोग का कारण कोई जीव नहीं है बल्कि पोषण न्यूनता है, पोषण विकार है। मिट्टी में जस्ते की कमी के कारण यह रोग होता है। जिस मिट्टी में जस्ते की कमी होती है वहां पर ललकी या खैरा रोग जरूर हो जाता है। तो इस रोग की रोकथाम के लिए जब आप कदवा कर रहे हैं रोपाई करने के समय उसी समय मिट्टी में जिंक सल्फेट डालना चाहिए। 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट 2.5 किलोग्राम बुझे हुए चूने के साथ मिला करके यदि खेत में कदवा करते समय आप डालते हैं तो आने वाली फसल में आपकी ये धान का ललकी रोग या खैरा रोग नहीं होता है। नर्सरी में भी जब आप बीज डाल रहे हैं उस समय भी इस दवा का प्रयोग आप कर सकते हैं तो इससे जो है रोग नहीं होता है। अब बात आती है कि जब यह रोग हो जाए उस समय आप क्या करेंगे, तो जाहिर है कि उस समय आप इस दवा का छिड़काव करेंगे, यानी कि जस्ते का छिड़काव करेंगे। तो 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट ले लें, उसमें 2.5 किलोग्राम चूना मिला लें और 1000 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें। यह मात्रा जो है 1 हेक्टेयर खेत के लिए है। पौधे पर पहला छिड़काव बुआई के 10 दिन के बाद करें और दूसरा छिड़काव फिर 20 दिन बाद करें। इस तरह से यदि आप 3 छिड़काव करते हैं और यदि रोग उग्र अवस्था में होता है तो 3 से अधिक भी छिड़काव आप कर सकते हैं और जस्ते के छिड़काव के द्वारा ही धान का खैरा रोग या ललकी रोग जो है वो नियंत्रित किया जा सकता है, रोग की रोकथाम की जा सकती है। धान का खैरा रोग उत्तर प्रदेश बिहार में काफ़ी होता है। बिहार में यह रोग बांका भागलपुर जमुई में काफ़ी प्रचलित है। इसलिए जब भी आपके खेत के पौधे की पत्तियां सूखने लगे, कत्थई रंग के धब्बे पड़ने लगे या कत्थई रंग का पौधा हो जाए, उसके बाद पौधा सूख जाए तो आप समझ लें कि हमारे खेत में ललकी रोग हो गया है। पिछले वर्ष जिन किसान भाइयों के खेत में यह ललकी रोग हुआ था उन किसान भाइयों को पहले से ही सावधानी के तौर पर इस साल खेत में जिंक सल्फेट का प्रयोग जरूर करना चाहिए, पौधे के ऊपर जिंक सल्फेट का छिड़काव भी करना चाहिए। इससे ये होता है कि ये रोग जो है वो नहीं होता है। तो इस तरह से कुछ उपाय करके आप जस्ते का खेत में प्रयोग करके धान के पौधे पर होने वाले ललकी रोग या खैरा रोग से अपने पौधे को बचा सकते हैं, अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं।
0: अभी आप खेत खलिहान कार्यक्रम में सुन रहे थे श्रीनिवास सहाय की पूर्व प्रसारित वार्ता। विषय था धान का खैरा रोग। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने ही वाले हैं। अब आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दिल्ली के प्रसारण में, जहां से आप हिंदी में समाचार बुलेटिन सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
2: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने को हैं। अब समाचार होंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज।
4: प्राइम मिनिस्टर विल आल्सो बी विजिटिंग
5: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125 ए के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरूआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन की निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10 से 11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना और कार्बो वर्डे 3-2 गोल की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है चिंतन मनन। आज चिंतन मनन में चिंतन विश्व धर्म पर। वाचिका नौमी शांति हेम्ब्रम।
3: आज हम जिस युग में जी रहे हैं और जिस युग की ओर बढ़ रहे हैं, वह एक विश्व व्यवस्था और विश्व शांति की मांग कर रहा है। विज्ञान का हमारे युग पर दो रूपों में ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा है। एक तो ये कि इसने पूरी दुनिया को समेटकर एक गांव जैसा बना दिया है। दूसरे, इसने प्रकृति को नियंत्रित कर नई नई भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करके व्यक्ति को बहिर्मुखी बनाया है। इसका एक परिणाम ये भी हुआ है कि मनुष्य की आध्यात्मिक चेतना में कमजोरी सी आ गई है। यदि पूरा विश्व एक गांव जैसा बन गया है, तो स्वाभाविक रूप से एक विश्व संस्कृति की बात सामने आती है, और जहां विश्व संस्कृति की बात होगी, वहां एक आध्यात्मिक चिंतन की भी बात होगी, क्योंकि संस्कृति का संबंध आध्यात्मिक चेतना से अनिवार्य रूप से होता है। आध्यात्मिक चेतना का उद्देश्य मनुष्य में ईश्वरत्व के गुणों जैसे प्रेम, क्षमा, करुणा, भलाई का विकास करके विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है। एक विश्व संस्कृति की स्थापना में भी मूल रूप से इन्हीं गुणों की आवश्यकता है। ईश्वर ने जीव जगत से जैसा प्रेम किया, जीवों के बीच भी वैसे प्रेम की आवश्यकता है। ईश्वर ने मनुष्यों के लिए जैसे क्षमा की व्यवस्था दी, मनुष्य मनुष्य के बीच क्षमा का वही भाव, वही व्यवस्था कार्य करनी चाहिए। ईश्वर ने जैसी करुणा हम पर दिखाई, हमें भी परस्पर करुणा दिखानी चाहिए। और जिस प्रकार ईश्वर अपनी भलाई के वरदानों को मनुष्यों पर उंडेलते हैं, हम मनुष्यों को भी भलाई करने के लिए तत्पर होना चाहिए। तभी एक विश्व संस्कृति और विश्व शांति की बात साकार हो सकती है। आत्मिक भाव से मनुष्य के अंतःस्थल में निहित इसी आध्यात्मिक चेतना को धर्म या रिलीजन कहा गया है। अंग्रेजी का रिलीजन शब्द लैटिन भाषा के रिलिगेयर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है बांधना या जोड़ना। इसके आधार पर धर्म या रिलीजन का अर्थ हुआ एक ऐसी वस्तु जो आराध्य और आराधक तथा व्यक्ति एवं समाज को जोड़ती है, उन्हें आपस में बांधती है। अपने मूल रूप में धर्म का यही सृजनात्मक स्वरूप रहा है, और ये बात हमारे भारतीय चिंतन के मूल में हमेशा से रही है। बापू ने अपने एक लेख में लिखा है, धर्म व्यक्ति को ईश्वर से तथा व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ता है। वस्तुतः धर्म के बारे में हमें ये बात स्वीकार करनी होगी कि इसका संबंध विश्वास के साथ साथ कर्म और आचरण से है। इसे बाह्य विधि विधानों की अपेक्षा एक अंतः प्रेरणा माना जाना चाहिए। यदि मनुष्य का विश्वास उसके कर्मों, उसके व्यवहारों से प्रकट नहीं होता है, तो उसका धर्म एक पाखंड मात्र, आडंबर मात्र है। यदि कोई मनुष्य भूखा है और हम उसे सदा सुखी समृद्ध रहने की शुभकामना दें और भोजन ना दें, तो हमारा ऐसा विश्वास हमें उस व्यक्ति से नहीं जोड़ सकता, और ना ही ऐसा विश्वास धर्म का रूप ले सकता है। हमारा जीवन बिना पतवार की नाव जैसा हो जाता है, जो हवा के झोंकों से इधर उधर हिचकोले खाता रहता है। इसलिए आज ऐसे वैश्विक चिंतन की आवश्यकता है, जिसमें विश्वास और आस्था आचरण और कार्य व्यवहार के द्वारा प्रकट होती है, और तभी विश्व धर्म या विश्व संस्कृति की स्थापना संभव हो सकती है।
2: अभी आप चिंतन मनन में सुन रहे थे चिंतन, विषय था विश्व धर्म। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी में 6:10 हो रहे हैं। निवेदित है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत देश वंदना से।

हे मातृभूमि, तुम्हें बार बार प्रणाम। माँ भारती को बार बार प्रणाम। माँ की वंदना जितनी की जाए इतनी कम। उनकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, कौन कर सकता है उनके गुणों का गुणगान, जो अपार हैं, असीम हैं, जीवनदात्री हैं, जयत्री।

अभी आपने अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में कुछ भजन सुने, अब आइए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ों में श्री भगवान का भजन।

हे राम, तू ही कण कण में समाया। तू संसार में हर चीज़ों में अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित। तुमसे बाहर कुछ भी नहीं और न तुम किसी से बाहर। सब कुछ तू ही तो है, बस दृष्टि हमारी नहीं। हे राम, तू ही सब कुछ है।

0: जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। इस भजन के साथ ही आज का वंदना कार्यक्रम संपन्न होता है। आज आपने अनुराधा पौडवाल और जगजीत सिंह की आवाज़ों में कुछ भजन सुने। वंदना कार्यक्रम के बाद बारी है स्वास्थ्य चर्चा की। समय 6:35 हो चुके हैं। आज स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं वार्ता डॉक्टर सुरेश प्रसाद से। वार्ता का विषय है आँखों की सुरक्षा।
1: आँख मनुष्य को अत्यंत ही प्यारा है। आँखों से मनुष्य की सुंदरता आँकी जाती है। तरह तरह के मुहावरे आँखों से संबंधित हैं। इसके अलावा आँख मनुष्य को दृष्टि देती है, जिससे निराली छटा देखता है। जन्मजात अंधे व्यक्ति को महत्ता का अंदाज़ नहीं होता है, जितना कि आँखों वाले व्यक्ति की बात चुका

Tiene tanto ले चुका कष्टदायक होता है, आता है कितने

0: जरूरी है। सर्वप्रथम तो ईश्वर ने ही इसे सुरक्षित रहने की व्यवस्था कर दी है। मनुष्य की आँख खोपड़ी में दो
1: अभी आप स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 6:40 हुए हैं। निवेदित है श्री राम चरित मानस गान। मुख्य गायन स्वर शिप्रा बोस और रामकृष्ण चंदेश्री का है।
2: एपिसोड नंबर 270 270।

अभी आप श्रवण कर रहे थे श्री रामचरितमानस गान। मुख्य गायन सर शिप्रा बोस और रामकृष्ण चंद्रशीर का था, संगीत सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 6:50 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण, इसके अंतर्गत आइए जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे केंद्र से आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा और उसके प्रसारण समयों के बारे में।

अब से कुछ देर बाद यानी प्रातः 7 बजे आप सुनेंगे अपना पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इसके अंतर्गत आज वार्ता होगी गिरफ्तारी विषय पर। वार्ताकार होंगी सुप्रीता कुमारी। इसके अलावा रसरंग में कलाकार होंगे अरविंद कुमार यादव। 9:06 पर कार्यक्रम होगा नगमे नए पुराने। 9:30 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में आज आप गोपाल कृष्ण मिश्र को सुनेंगे। दिन के 10 बजे पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम होगा। 10:30 पर लोकगीत कार्यक्रम में आज कलाकार होंगी सुमित्रा देवी। दिन के 11 बजे आप श्रोता मित्रों के फ़ोन कॉल्स पर आधारित पसंदीदा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा फोन इन आपकी पसंद। दोपहर 12 बजे हमारी शहरी महिला श्रोता बहनों को संबोधित कार्यक्रम आप सुनेंगे नारी लोक। 12:30 पर सुर संगम, ये शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा। आज कलाकार होंगे संगीत कुमार राह नाहर। दोपहर 1 बजे लोक गीतों के कार्यक्रम लोक रंग में कलाकार होंगे रणवीर प्रसाद सिंह। 1:30 पर आज आप संताली भाषा का साप्ताहिक कार्यक्रम सुनेंगे जीवन झरना, प्रस्तुत करता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। 2:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट से।

दोपहर बाद 3 बजे प्रादेशिक संगीत कार्यक्रम प्रसारित होगा। 3:20 पर समूह स्वर में देशभक्ति गीत आप सुनेंगे। 3:25 से संध्या 5 बजे तक विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे। संध्या 5 बजे कार्यक्रम होगा युववाणी। 5:30 पर फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे। संध्या 6 बजे ग्राम जगत खेती गृहस्थी प्रसारित होगा। संध्या 7:10 पर लोकगीत कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे जय नारायण शर्मा। 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में कलाकार होंगे प्रतिभा सिन्हा। रात्रि 8 बजे प्रायोजित कार्यक्रम होगा उड़ान। 8:15 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। रात्रि 9:30 पर साहित्य भारती कार्यक्रम हम अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। और रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा। इसे हम अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। अभी आप कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत हमारे केंद्र से आज की इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा और उसके प्रसारण समयों की जानकारी प्राप्त कर रहे थे। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:55 होने ही वाले हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत भाषा में समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला कार्यक्रम।

नमस्कार, सुप्रभात। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला और मैं आज इस कार्यक्रम के साथ उपस्थित हूँ आपका दोस्त रविंद्र गौतम। श्रोता मित्रों, आज तिथि है 4 जुलाई और आज एक ऐसे महान शख्सियत की पुण्यतिथि है जिनके नाम से ही हमारे जहन में एक महान चेहरा उभरता है, जिन्होंने अपने कृतित्व से

न सिर्फ अपने जीवन को वरन पूरी दुनिया में भारत के मर्यादा को स्थापित किया, पुनर्स्थापित किया। स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को और आज की तिथि को ही यानी 4 जुलाई 1902 को उन्होंने संसार को अलविदा कह दिया था और अपनी दैहिक लीला संपन्न कर प्रयाण कर गए थे। भारत के महान दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु और देशभक्त सन्यासी स्वामी विवेकानंद, जिनके बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त, उन्होंने वेदांत और योग के प्राचीन भारतीय दर्शन को पूरी दुनिया में फैलाया और युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया। आज भी उनकी जयंती पर हमारे देश में प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही बहुत साहसी थे और एक उनके जीवन से जुड़े हुए संस्मरण में एक कहानी आती है कि उन्हें किसी ने बताया कि अमरूद के पेड़ के पास मत जाना, क्योंकि बच्चों में फलों के प्रति या फिर किसी अन्य जहां पर उनको रोका जाए वहां जाने के लिए उत्सुकता बहुत अधिक होती है। तो किसी ने उन्हें कहा कि अमरूद के पास नहीं जाना है क्योंकि वहां भूत होते हैं, लेकिन स्वामी जी, जिनकी अवस्था मात्र 6 वर्ष की थी, वो अमरूद के पेड़ पर रात भर बैठे रहे कि आखिर भूत कहाँ है जिससे मैं मिलूँगा। यह व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद का ही हो सकता है। कहते हैं होनहार विरवान के हो चीकने पात, स्वामी जी में भी कुछ ऐसी ही बात थी। परस्पर तथ्य को ढूंढने की उनकी कला बचपन से ही उनमें थी और ऐसा कहा जाता है कि स्वामी जी मानव नहीं अवतार थे, क्योंकि एक मानव में इतने सारे गुण होना बहुत दुष्कर लगता है। रामकृष्ण परमहंस के शरण में आने के बाद नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद हो गए। कोलकाता के एक संभ्रांत परिवार में पैदा हुए नरेंद्रनाथ यानी स्वामी विवेकानंद ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री पूरी की और पश्चिमी दर्शन और इतिहास का गहरा अध्ययन किया था। इसके बाद ईश्वर के अस्तित्व और असत्य को समझने की उनकी तीव्र इच्छा ने उन्हें उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस तक पहुंचाया। और रामकृष्ण परमहंस के पास आने के बाद स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन के मूल्य को समझा। गुरु के सानिध्य में उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया और फिर गुरु के प्रयाण के बाद उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। स्वामी विवेकानंद का नाम पूरी दुनिया में आज गूंज रहा है। उन्होंने एक सन्यासी के रूप में पैदल ही पूरे भारत की यात्रा की, जिससे उन्हें भारतीय समाज, गरीबी और संस्कृति की वास्तविक समझ मिली। स्वामी विवेकानंद को सबसे बड़ी और महान प्रसिद्धि तब मिली जब उन्होंने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया और सनातन धर्म को पूरी दुनिया के सामने स्थापित किया। विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 11 सितंबर 1893 की हुई तिथि जब ऐतिहासिक भाषण की शुरुआत हुई अमेरिका के भाइयों और बहनों, ब्रदर्स एंसेस्टर्स ऑफ अमेरिका शब्द से। इन शब्दों को सुनते ही सभागार का जैसे एक नया आनंद अध्याय लिखा गया। उन्होंने सभी का दिल जीत लिया। अपने ओजस्वी विचारों, ओजपूर्ण आवाज और पूरी पश्चिमी दुनिया को भारतीय वेदांत और सनातन से उन्होंने परिचित कराया। स्वामी जी ने पूरी दुनिया में मानव जीवन के अस्तित्व, मानव शरीर के धारण करने के सार्थकता के बारे में पूरी दुनिया को बताया कि हमारे शरीर धारण करने का मूल उद्देश्य सेवा, सहयोग और करुणामय, दयामय विचार होना चाहिए, जिससे कि संसार में प्रेम, भाईचारा, सद्भाव और उत्कृष्टता बनी रहे। मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। स्वामी जी का मानना था मनुष्य शरीर पाकर

लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उन्होंने युवा को परिभाषित करते हुए कहा, युवा वो है जिनके पैरों में गति, दिमाग में रचनात्मकता और भाव में प्रेम और सेवा हो। 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में उन्होंने ध्यान की अवस्था में ही महासमाधि ली। उनके महान कार्यों और विचारों के सम्मान में आज भी पूरी दुनिया और ख़ासकर हम भारतवासी उन्हें हमेशा शत शत नमन करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। उन्होंने भारत में आकर नव जागृति, नव चेतना ऐसी स्थापित की कि पूरी दुनिया आज उनकी कायल है। स्वामी जी जैसी शख्सियत दुनिया में बार बार नहीं आती। जब जब धर्म की हानि होगी, भगवान के इन वचन को उन्होंने सार्थक कर दिया। श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने लिखा, जब जब होगी धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिवानी, तब तब प्रभु धरि मनु शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब मनुष्य को कष्ट और पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है, जब जब सृष्टि खतरे में पड़ती है, जब जब जीव प्रजाति पर कष्ट आता है, संकट आता है, जब जब धर्म की हानि होती है, असुर और अभिमानी अधम का

हमारे लिए करुण पुकार होता है, तब तब मैं आता हूँ। तदात्मानं सृजाम्यहम्, उन मनुष्य के शरीर में ही, उन सूक्ष्म आत्माओं में ही मैं स्वयं को सृजित करता हूँ और महापुरुष के रूप में पूरी दुनिया को एक नई राह दिखाता हूँ। ऐसे ही उनके गुरु श्री राम कृष्ण परमहंस और उनके गुरु तोतापुरी और महान शिष्य और आज हमारे गुरु स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया को यह सिद्ध कर दिखाया। स्वामी जी को बार बार शत शत नमन करते हुए गुड मॉर्निंग विक्रमशिला कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: श्रोता मित्रों, एक छोटे से अंतराल के बाद हम रेल आवागमन संबंधित सूचनाओं से रूबरू होंगे।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: गुड मॉर्निंग विक्रमशिला कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी श्रोता मित्रों का बहुत बहुत स्वागत। समय हुआ है 7:09:14। अब रेल आवागमन संबंधित सूचनाओं की बारी है। ये रेल आवागमन संबंधित सूचनाएं हमें भागलपुर के रेलवे पूछताछ कक्ष से प्राप्त हुई हैं। इनके अनुसार अगर हम देखें कौन सी रेलगाड़ी समय से आ रही है, कौन सी देर से आ रही है, तो इस कड़ी में गाड़ी संख्या 15553 भागलपुर से चलकर जयनगर जाती है। भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस प्रातः 7:50 पर अपने नियत समय से भागलपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। गाड़ी संख्या 13016 हावड़ा कविगुरु एक्सप्रेस प्रातः 7:45 पर अपने सही समय पर भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंच रही है और इसके बाद 7:55 पर भागलपुर रेलवे स्टेशन से जमालपुर के लिए रवाना होगी। गाड़ी संख्या 12368 आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस आनंद विहार से चलकर भागलपुर आती है। प्रातः 8:15 पर अपने नियत समय पर भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने की सूचना है। गाड़ी संख्या 15658 ब्रह्मपुत्र मेल, इसके भागलपुर पहुंचने का सही समय है 8:05, लेकिन आज ये रेलगाड़ी लगभग 50 मिनट की देरी से भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 13403 रांची से चलकर भागलपुर आती है वनांचल एक्सप्रेस, आज भी ये रेलगाड़ी अपने सही समय से यानी प्रातः 9 बजे भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 15416 जमालपुर साहिबगंज पैसेंजर अपने सही समय से 8:37 पर भागलपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। गाड़ी संख्या 63431 साहिबगंज जमालपुर MEMU 9:15 पर भागलपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। गाड़ी संख्या 13409 मालदा की ओर इंटरसिटी 9:35 पर भागलपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। गाड़ी संख्या 13229 ये साप्ताहिक रेलगाड़ी है, गोड्डा से चलकर राजेंद्र नगर जाती है इंटरसिटी, 10:15 पर भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। और गाड़ी संख्या 12367 भागलपुर से चलकर आनंद विहार जाती है विक्रमशिला एक्सप्रेस, 11:55 पर भागलपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। अभी आप रेल आवागमन संबंधित सूचनाएँ प्राप्त कर रहे थे। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। अब वक्त है रसरंग का। कलाकार हैं गोपाल कृष्ण मिश्र। आइए इनसे सुनते हैं नेपाली की ये गीत रचना।

0: मेरा देश बड़ा गर्वीला, अभी आपने गोपाल सिंह नेपाली की ये गीत रचना सुनी। कलाकार थे गोपाल कृष्ण मिश्र। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। वक्त हुआ है 7:19:50। अब वक्त है कानून की बातें इस स्तंभ का, और आज इस स्तंभ में प्रस्तुत है वार्ता। विषय है गिरफ्तारी। वार्ताकर्त्री हैं सुप्रीता कुमारी।
1: गिरफ्तारी। गिरफ्तारी आपराधिक न्याय प्रणाली का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवेदनशील भाग होता है। सामान्यतः गिरफ्तारी का अर्थ किसी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करते हुए कानून की अभिरक्षा में लेना है, अर्थात जब किसी व्यक्ति को पुलिस या अधिकृत अधिकारी द्वारा इस प्रकार नियंत्रित किया जाता है कि वह अपने से कहीं नहीं जा सकता है, तो इसे ही गिरफ्तारी कहा जाता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में जहाँ विधि का शासन सर्वोपरि होता है, वहाँ गिरफ्तारी का प्रयोग संतुलित एवं न्याय संगत तरीके से किया जाना आवश्यक है। कानून की दृष्टि से गिरफ्तारी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति को हिरासत में लेकर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। भारत जैसे देश में जहां नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है, वहां गिरफ्तारी केवल कानूनी प्रावधानों के अनुसार ही की जा सकती है। यह न केवल अपराध के नियंत्रण का साधन है, वरन न्याय प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने का भी माध्यम है। गिरफ्तारी का प्रकार। सामान्यतः गिरफ्तारी 3 प्रकार के होते हैं। पहला, वारंट के साथ गिरफ्तारी। जब न्यायालय द्वारा लिखित आदेश अर्थात वारंट जारी किया जाता है, तब पुलिस उस आदेश के आधार पर व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। इसमें न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता होती है। यह अधिकतर असंज्ञेय अपराधों में उपयोग होता है। दूसरा, वारंट के बिना गिरफ्तारी। गंभीर अपराधों जैसे हत्या, डकैती, बलात्कार आदि में पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है और स्वतः कार्रवाई भी कर सकती है। यह संघीय मामलों में होता है। तीसरा, निवारक गिरफ्तारी। इस प्रकार की गिरफ्तारी भविष्य में होने वाले अपराध को रोकने के लिए की जाती है। गिरफ्तारी की चरणबद्ध कानूनी प्रक्रिया। न्यायालय द्वारा स्थापित नियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय निम्न वैधानिक चरणों का पालन करना अनिवार्य होता है। पहला, शारीरिक नियंत्रण। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 43 में गिरफ्तारी कैसे की जाएगी के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस अधिकारी आरोपी के शरीर को छुएगा और उसे हिरासत में लेगा, परंतु यदि आरोपी बल प्रयोग करता है या भागने की कोशिश करता है तो पुलिस अधिकारी उसे रोकने के लिए सभी आवश्यक साधनों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन वह ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कारित नहीं कर सकता है जो आजीवन कारावास या मृत्यु के अपराध का आरोपी नहीं हो। दूसरा, अरेस्ट मेमो और नामांकित व्यक्ति को सूचना। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 48 में अरेस्ट मेमो और नामांकित व्यक्ति को सूचना के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी तुरंत एक अरेस्ट मेमो तैयार करेगा। इस मेमो पर कम से कम एक गवाह जो आरोपी के परिवार का सदस्य या उस इलाके का प्रतिष्ठित व्यक्ति हो के हस्ताक्षर होंगे और आरोपी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा। इसके बाद आरोपी द्वारा नामांकित किसी मित्र रिश्तेदार को गिरफ्तारी की सूचना दी जाएगी। तीसरा, गिरफ्तारी के आधार और जमानत के अधिकार की घोषणा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 47 के अनुसार जब किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस अधिकारी तुरंत उस अपराध की पूरी जानकारी उस व्यक्ति को देगा जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। यदि अपराध जमानतीय है तो उस पुलिस अधिकारी उसे सूचित करेगा कि वह जमानत पर रिहा होने का हकदार है। चौथा, अनिवार्य चिकित्सीय जांच। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 53 में इसका प्रावधान है। इसके तहत गिरफ्तारी के तुरंत बाद आरोपी की जांच एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा की जाएगी। महिला आरोपी के मामले में यह जांच केवल एक महिला चिकित्सक द्वारा ही की जाएगी। पांचवा, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुति। यह प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 58 में वर्णित है। जब पुलिस अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी कस्टडी में 24 घंटे से अधिक समय तक नहीं रख सकती है, इस अवधि में गिरफ्तार के स्थान से मजिस्ट्रेट के अदालत तक के यात्रा के आवश्यक समय को शामिल नहीं किया जाएगा। गिरफ्तारी के दौरान गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार। भारत में हर व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण को जानने का अधिकार है, अपने पसंद के अधिवक्ता से सलाह करने का अधिकार होता है, आरोपी को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है, गिरफ्तार व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध बयान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, गिरफ्तार व्यक्ति को आवश्यक होने पर चिकित्सा सहायता का अधिकार होता है, यह अधिकार भारतीय संविधान द्वारा संरक्षित होता है। संवैधानिक संरक्षण। भारत का संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को और कुछ मामलों में विदेशियों को मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्य किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को केवल मनमाने तरीके से नहीं वरन कानून द्वारा स्थापित न्याय संगत निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया से ही छीन सकता है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार है और उसे अपने पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार है। इसी अनुच्छेद की उपधारा 2 के तहत गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक के यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। विशिष्ट वर्गों की गिरफ्तारी से जुड़े विशेष नियम। भारतीय कानून में महिलाओं, बच्चों और न्यायिक अधिकारियों की गरिमा की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। पहला, महिलाओं की गिरफ्तारी के नियम। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 43 के अंतर्गत यदि किसी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, परंतु असाधारण परिस्थितियों में यदि महिला की गिरफ्तारी आवश्यक है तो महिला पुलिस अधिकारी को प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसके अंतर्गत महिला की गिरफ्तारी केवल एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही की जा सकेगी। बच्चों की गिरफ्तारी के नियम। जुबिनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के बालक को सामान्य अर्थों में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, वरन उसे हिरासत में लिया जाएगा। उन्हें कभी भी नियमित पुलिस लॉकअप या जेल में नहीं डाला जा सकता है, वरन उसे बाल कल्याण पुलिस इकाई द्वारा संभाला जाता है और तुरंत बाल सुधार गृह भेजा जाता है। सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 42 के अंतर्गत केंद्र या राज्य सशस्त्र बलों के किसी भी सदस्य को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के पालन के दौरान किए गए कार्यों के लिए तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक कि संबंधित केंद्र या राज्य सरकार की पूर्व सहमति न ले ली जाए। गिरफ्तारी के बाद की विधिक स्थिति। जब 24 घंटे के भीतर अन्वेषण पूरी नहीं हो पाती है तब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 187 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष रिमांड की मांग की जाती है। इसके अंदर दो प्रकार की कस्टडी होती है। पुलिस कस्टडी, इसमें आरोपी को पुलिस लॉकअप में रखा जाता है ताकि पूछताछ की जा सके और साक्ष्य जुटाया जा सके। न्यायिक कस्टडी, इसमें आरोपी को जिला जेल या केंद्रीय कारा में भेजा जाता है। यहाँ वह सीधे कोर्ट में निगरानी में होता है और पुलिस बिना कोर्ट के इजाजत के उससे पूछताछ नहीं कर सकती है। नए कानून में किए गए क्रांतिकारी बदलाव। वर्ष 2024 से प्रभावी हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में गिरफ्तारी को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण और आधुनिक बदलाव किए गए हैं। पहला,

0: हथकड़ी का सीमित प्रयोग। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 43(3) में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पुलिस अधिकारी आदतन अपराधी, भगौरा या गंभीर अपराधों जैसे आतंकवाद, हत्या, बलात्कार, जाली नोट या राज्य के विरुद्ध अपराध के आरोपी को गिरफ्तार करते समय या न्यायालय में पेश करते समय हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है। दूसरा, डिजिटल रिकॉर्डिंग अनिवार्य। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य किया गया है ताकि इससे पारदर्शिता बनी रहे। धारा 35(3) का नोटिस, यदि किसी मामले में गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है तो पुलिस आरोपी को जांच में उपस्थित होने के लिए लिखित नोटिस जारी करेगी और आरोपी जब तक नोटिस की शर्तों का पालन करता है उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। गिरफ्तारी का उद्देश्य। गिरफ्तारी के पीछे कई महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं। पहला, अपराध की रोकथाम। अपराधी को तुरंत हिरासत में लेकर अन्य अपराधों को रोका जा सकता है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के लिए उसकी उपस्थिति के लिए गिरफ्तारी आवश्यक होती है। आरोपी को साक्ष्य नष्ट करने से रोका जा सकता है, इसलिए गिरफ्तारी अनिवार्य होती है। गिरफ्तारी करके खतरनाक अपराधियों को समाज से अलग रखा जा सकता है। अतः निष्कर्षतः गिरफ्तारी एक आवश्यक कानूनी प्रक्रिया है जो समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है, परंतु इसका प्रयोग संतुलित और न्यायपूर्ण तरीके से होना चाहिए। एक ओर यह अपराध नियंत्रण का प्रभावी साधन है, वहीं दूसरी ओर व्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए यह आवश्यक है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कानून के सभी प्रावधानों का पालन किया जाए और किसी भी प्रकार से दुरुपयोग से बचा जाए।
1: अभी आपने कानून की बातें के अंतर्गत वार्ता सुनी। विषय था गिरफ्तारी। वार्ताकार थी सुप्रीता कुमारी। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। समय हुआ है 7:30। अब वक्त है मौसम सूचनाओं का। ये सूचना है हमें ग्रामीण कृषि मौसम विज्ञान विभाग सबौर से प्राप्त हुई। इसके अनुसार पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है कि आज यानी 4 जुलाई से 8 जुलाई के बीच की अवधि में भागलपुर जिला और इसके आसपास के स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने, हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना व्यक्त की गई है। सापेक्षिक आर्द्रता 80 से 90 प्रतिशत तक प्रातः वेला में और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत तक रहने की संभावना है और हवाओं की रफ्तार इन 5 दिनों की अवधि में अधिकतम 10 से 15 किलोमीटर की हो सकती है, जो दक्षिण पूर्वी दिशा से चलने की संभावना है। और विशेषकर कल यानी 5 जुलाई को और फिर 7 और 8 जुलाई को आंधी, बिजली, तूफान और वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। तो अभी हम मौसम सूचनाएं प्राप्त कर रहे थे कार्यक्रम में गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। अब आइए सुनते हैं एक प्यारा सा नगमा। फिल्म का नाम है देवदास।

थाई शाम रोक लई रोक लई रोक लई थाई शाम रोक लई औचक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई गई गई सर से मोरी चुनरी।

दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच। आहट सुन, आहट सुन, आहट सुन, जियरा गयो धड़क धड़क।

अभी आपने ये खनकता हुआ सनक में सुना है, फिल्म का नाम देवदास। आवाजें थी बिरजू महाराज, कविता सुब्रमण्यम, माधुरी दीक्षित और साथियों की। गीत नुसरत पत्र ने लिखा था, संगीतबद्ध किया था इस्माइल दरबार ने। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। अब वक्त है आज के अखबारों की सुर्खियों को टटोलने का। आज के अखबारों की सुर्खी में बड़ी सुर्खी है, 6 विषयों के लिए 15 जुलाई तक भरे जाएंगे फॉर्म। कॉलेजों में 5000 गेस्ट फैकल्टी की भर्ती होगी, सैलरी 57,000 रुपये होगी। बिहार के 38 जिलों में 5000 से अधिक गेस्ट फैकल्टी टीचरों की नियुक्ति होगी। सरकार ने नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। चयनित शिक्षकों को हर महीने करीब 57,000 रुपये मानदेय मिलेगा। यह बहाली विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। आवेदन 15 जुलाई तक किया जा सकेगा। स्क्रीनिंग और साक्षात्कार की सूचना 17-18 को दी जाएगी। इंटरव्यू 20 से 27 के बीच होगी।

29 को मेधा सूची प्रकाशित होगी और 7 अगस्त तक योगदान देने की तिथि होगी। अभ्यर्थी आवेदन वेबसाइट http://hedbiharrec.samarth.edu.in पर कर सकते हैं। आयोग मेधा सूची बनाकर सभी विश्वविद्यालयों को भेज देगा। इसके बाद विश्वविद्यालय उन्हें कॉलेज में भेजेंगे। नियुक्ति की प्रक्रिया सबसे पहले प्रदेश के 211 डिग्री कॉलेजों में शुरू होगी। इसके बाद इन्हें अन्य महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भेजा जाएगा। इसके अलावा दूसरे खबरों की तरफ अगर नज़र डालें तो स्पेशल ब्रांच में 150 एसआई पद के लिए 9 जुलाई से आवेदन होंगे। अखबार लिखता है बिहार पुलिस के स्पेशल ब्रांच में 150 पद की बहाली के लिए 9 जुलाई से आवेदन मांगा गया है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने शुक्रवार को जारी विज्ञापन के अनुसार फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 9 अगस्त तक कर दी है। इसके अलावा भोपाल दिल्ली समेत देश भर से रोज सैकड़ों शिकायतें आ रही हैं। केंद्र सरकार ने 3 चीनी ऐप हटा दिए हैं। अब बीच रास्ते में बंद नहीं होंगी ई रिक्शा। आईटी मंत्रालय ने कहा ऐप स्टोर सख्ती से जांच करें। ई रिक्शा अचानक रुक जाए तो चाबी से बंद करें, 5-10 सेकेंड बाद फिर स्टार्ट करें। ये मोबाइल ऐप से जुड़ी हुई समस्याओं के कारण जो आवागमन संबंधित समस्या आ रही हैं उसके बारे में अखबार विशेष रूप से लिखता है। इसके अलावा डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति पर रोक, बिना मुख्यालय के अनुमति के नहीं बदलेंगे अस्पताल। बिहार के सरकारी डॉक्टरों में बिहार के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की मनमानी प्रतिनियुक्ति पर अब स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह रोक लगा दी है। विभाग के सचिव ने राज्य के सभी डीएम को पत्र जारी किया है। आदेश के अनुसार विभाग द्वारा किसी स्थान पर तैनात किए गए डॉक्टर को अब जिला स्तर से कहीं और प्रतिनियुक्त नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा मानसून से जुड़ी हुई खबर छपी है। 4 से लेकर 8 जुलाई तक गरज चमक के साथ हल्की बारिश के आसार। 15 दिन बाद भी मानसून सक्रिय नहीं हुआ है। भागलपुर में 70% कम बारिश हुई है अभी तक। 15 जून को भागलपुर में मानसून पहुंचने के बावजूद अब तक इसकी सक्रियता नहीं दिखी है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की ग्रामीण कृषि मौसम विभाग ने 4 से 8 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा के अनुमान व्यक्त किए हैं। इस शीर्षक से अखबार विस्तार से इसे लिखता है। इसके अलावा गंगा तट पर बनेगा आधुनिक क्रूज टर्मिनल। लग्जरी और बजट टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। आर्थिक प्रगति के द्वार खुलेंगे। रिवर क्रूज से जुड़ेगा बेपुर। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल से मिले बिहार राज्य के पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र। अखबार ने इसे विशेष रूप से छापा है। इसके अलावा पैक्सों के कंप्यूटरकरण में लाएं तेजी। डिजिटल और मॉडल पैक्स पर फोकस करें, भागलपुर के जिला अधिकारी का निर्देश। सीएससी और जन औषधि केंद्रों का भी किया जाएगा विस्तार। और अखबारों की सुर्खियों में पहले

से जुड़ी हुई खबर अखबारों ने छापा है। इसके अलावा अगर हम खेल की खबरों की तरफ नज़र डालें, आज के अखबारों में खेल की खबरों में क्या विशेष रूप से लिखा है, तो आज भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे T20 मैच के बारे में लिखा गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है 5 T20 मैचों की श्रृंखला का दूसरा T20 मैच आज इंग्लैंड में खेला जाएगा इस संध्या 7 बजे से। इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल से जुड़ी हुई खबर छपी है। स्पेन के कीपर बने दीवार, 519 मिनट से गोल नहीं खाया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से करारी शिकस्त दी। 16 साल बाद नॉकआउट में पहली जीत मिली, प्री क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह स्पेन ने। इसके अलावा मेजबान ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हराया था। लगातार 6ठी जीत के रिकॉर्ड अभियान के साथ 5वीं बार फाइनल खेलेगा इंग्लैंड। रविवार को ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी इंग्लिश टीम। T20 महिला विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया भिड़ेगा। तो ये आज के अखबारों की सुर्खियां थी। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। अब आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा नगमा। यह है फिल्म मुगले आजम से, आवाज़ लता मंगेशकर और साथियों की है। गीत शकील बादायने ने लिखा है, संगीत बद्ध किया है नौशाद ने।

0: अभी आपने मुगले आजम फिल्म में लता मंगेशकर को सुना। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। वक्त एक छोटे से अंतराल का, अंतराल के उस पार आज के इतिहास को टटोलने की बारी।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी
1: फीस तो देखो
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
4: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
5: आरबीआई कहता है
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। वक्त है अब आज के इतिहास को टटोलने का। तो आज के इतिहास में आज 4 जुलाई है और आज का इतिहास कहता है कि आज की ही तिथि को यानी 4 जुलाई को 1914 में बर्दून का युद्ध समाप्त हो गया था और 1997 में 4 जुलाई को अमेरिकी यान सोजर्नर मंगल ग्रह पर पहुंच गया था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में डॉल्फिन की एक नई प्रजाति स्नबफीन खोजी गई थी 2005 में 4 जुलाई को। और गांधी शांति पुरस्कार विजेता और भारत में जर्मनी के पूर्व राजदूत गरहार्ड फिशर का निधन हो गया था 2006 में 4 जुलाई को। इसके अलावा आज की तिथि को यानी 4 जुलाई को भारत के महान दार्शनिक विचारक सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी का स्वर्ग प्रयाण हुआ था 4 जुलाई 1902 को। और नोबेल पुरस्कार विजेता फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी और रासायनिज्ञ मैरी क्यूरी का निधन हो गया था 1934 में 4 जुलाई को। इसके अलावा 1946 में फिलीपींस को अमेरिका से पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। और वैज्ञानिकों द्वारा जिनेवा में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के माध्यम से हिग्स बोसोन पार्टिकल्स यानी गॉड पार्टिकल्स की खोज की ऐतिहासिक घोषणा की गई थी 2012 में 4 जुलाई को। तो अभी हम आज के इतिहास को टटोल रहे थे। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। अब आइए सुनते हैं एक और प्यारा सनकमा मेरा साया फिल्म से।

अभी आपने सुना मेरा साया फिल्म का नगमा आशा भोसले की आवाज़ थी। गीत लिखा था रजा मेहदी अली खान ने, संगीतबद्ध किया था मदन मोहन ने। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में अब सारे सेगमेंट्स लगभग पूरे हो चुके हैं। अब थोड़ी सी बची है हमारी बातचीत का सिलसिला, क्योंकि हमें आपसे गुजारिश करनी होती है कि हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा आज का। और आपको अगर हमारे इस कार्यक्रम में कोई बदलाव चाहिए, आप चाहते हैं कि हम कुछ विशेष लेकर आएँ आपके लिए, या फिर इस कार्यक्रम में कुछ फेर बदल हो, तो आप हमें लिख सकते हैं अपने सुझाव, या कोई शिकायत है तो शिकायत लिख सकते हैं, या हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो प्रशंसा लिख सकते हैं। जो कुछ भी हो, शिकायत, सुझाव, प्रशंसा, कुछ भी अपने विचार हमें लिख भेजिए। हमारा पता है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भागलपुर। हमारा पिन है 8120001। और अगर आप कंप्यूटर से हमें कुछ लिखना चाहते हैं मेल के द्वारा, तो हमारी मेल आईडी भी है, आप हमें मेल करें। हमारी मेल आईडी है phairbhagalpur@gmail.com। तो अब आज के कार्यक्रम को समेटने की अनुमति चाहता है रविंद्र। नमस्कार।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
2: तिलका मांझी तो बहुत।
0: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
6: बख्शी जगबंधु तो
2: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर।
5: 8700014242।
7: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी में प्रातः के 8 बजने ही वाले हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में समाचार सुनेंगे। इसके तत्काल बाद आप 8:48 से आकाशवाणी पटना से प्रादेशिक समाचार भी सुनेंगे। आकाशवाणी दिल्ली से समाचारों के लिए आइए चलते हैं, आकाशवाणी दिल्ली के प्रसारण में शामिल होते हैं।

0: समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक सीजी सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहां निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
3: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 trillion के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्ट्यूर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की।

0: दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मुसल्ला में आयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन, टैंक, मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ता लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ता ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी एप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट बीएमएस जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने तीन तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला तीन तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है, अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects in Rajasthan and Gujarat today to inaugurate country's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex in Balotra. Gujarat anti-terrorist squad arrests 8 people associated with Pakistan-based terror outfit Jaish-e-Mohammed. Center reviews below normal rainfall situation and potential drought conditions in certain areas across country due to El Nino. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Maharashtra and Odisha for today. In FIFA World Cup, Argentina enter round of 16 after defeating Cabo Verde in a thrilling 3-2 encounter at Miami. Egypt also cruise into pre-quarterfinals. And men in blue to take on England in second T20 in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today to inaugurate and lay the foundation stone of several development projects. The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will inaugurate the new terminal building of Jodhpur Airport this morning. The project worth 480 crore rupees is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. He will also launch the modified Uran scheme in Jodhpur. Thereafter, Mr. Modi will travel to Balotra, where he will dedicate, inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees this afternoon. These projects span multiple sectors, including petrochemicals, urban transport, railways, roads, renewable energy and power.

0: एक रिफिल्म जैसे शोबों को भी फरोग हासिल होगा, जिससे रियासत की मीशत में एक नई तकवियत पैदा होगी। ये प्रोजेक्ट राजस्थान के चैलेंजिंग सहरा में बनाया गया है, जो इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले से शुमाल जनूब राहदारी, खासतौर पर शहर की कसीर मॉडल कनेक्टिविटी को फरोग हासिल होगा। इस राहदारी से मेट्रो ट्रेन, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल से मरबूत हो जाएगी। वज़ीर आज़म के इस प्रोग्राम के रवा टेलीकास्ट के लिए रियासत के सभी जिला सदर दफ्तरों, शहरी बलदियाती इदारों और ग्राम पंचायतों में खसूसी इंतजाम किए गए हैं। जोधपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: बाद में शाम को वजीर आजम मोदी गुजरात का दौरा करेंगे। यहां वो अहमदाबाद के सनन इलाके में बाहर से मंगाए गए सीजी सेमीकंडक्टर के कलपुर्जों के तर्तीब और तजुर्बाती मरकज का इफ्तिताह करेंगे। ये इफ्तिताह भारत के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के सफर में एक अहम संगे मील है, जिसके तहत भारत के पहले शुरू से आखिर तक चिप पैकेजिंग यूनिट में कमर्शियल प्रोडक्शन का आगाज हो जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: बाहर से मंगाए गए सीजी सेमीकंडक्टर के कलपुर्जों के तरतीब और तजर्बाती मरकज ओसैट से एक खुदकफील टेक्नोलॉजी इको निजाम की जानिब भारत के सफर में एक बड़े संगे मील की अक्कासी होती है। इस यूनिट में मसनूई जहानत और आला कारकर्दगी वाली कंप्यूटिंग के शोबों में तेजी से तरक्की हुई है। ये यूनिट एडवांस्ड मेमोरी और स्टोरेज के लिए आलमी मांग को पूरा करने के मकसद से कायम किया गया है। सनंद में ज्यादा पैदावार से अहम सनतों में आलमी और घरेलू सारिफिन को बराह रास्त फायदा होगा। इन सनतों को ऑटोमोटिव, सनती खुदकारी, 5G मवासलात और इंटरनेट ऑफ थिंग्स शामिल है। अहमदाबाद से अपर्णा खुन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: गुजरात के इंसदादे दहशतगर्दी दस्ते ATS ने पाकिस्तान में कायम ममनुआ दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। इन अफराद को गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ अजला से कल एक साथ की गई कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS के मुताबिक मुलजमीन पाकिस्तानी आकाओं के राबते में थे और अपनी दहशतगर्दाना सरगर्मियों को मजीद तौसी देने के लिए गुजरात में एक सरगर्म नेटवर्क कायम करने के लिए जैश ए मोहम्मद की जानिब से सरगर्म अमल थे। ये अफराद जैश ए मोहम्मद के नुक्ते नजर की तशहीर के लिए उनके मवाद को गुजराती जबान में तर्जुमा करने का काम भी कर रहे थे। कौमी राजधानी में अब तक 1,02,000 से ज्यादा शुमारियाती फॉर्म्स डिजिटाइज्ड किए जा चुके हैं। दिल्ली के आला इंतखाबी अफसर के दफ्तर के मुताबिक दिल्ली में इंतखाबी फहरिस्तों की खसूसी नजरसानी के अमल के हिस्से के तौर पर तकरीबन 33,14,000 फॉर्म्स तकसीम किए गए हैं। दिल्ली में घर घर जाकर शुमारियाती फॉर्म्स तकसीम करने का काम फिलहाल जारी है। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की बरामदात के अपने निशाने को हासिल करने की तरफ बढ़ रहा है, जिसके तहत रवां माली साल की पहली सहमाही में तकरीबन 15% सालाना बरामदात का रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है। कल नई दिल्ली में तिजारती मीटिंग के बोर्ड से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि इस निशाने को हासिल करने के लिए अशिया की बरामदात में इजाफे की जरूरत होगी। ये बरामदात अभी तकरीबन 480 अरब अमरीकी डॉलर्स की हैं, जिसमें इजाफा करके इन्हें तकरीबन 530 अरब अमरीकी डॉलर मालियत का किया जाएगा, जबकि खिदमात की बरामदात में सरदस्त तकरीबन 421 अरब डॉलर की मालियत में इजाफा करके इसे तकरीबन 470 अरब अमरीकी डॉलर किया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह और ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने एलनिनो की वजह से मुल्क के कुछ इलाकों में मामूल से कम बारिश और इसके असरात से मुतालिक सूरत हाल का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत मुल्क के कुछ इलाकों में एलनिनो की वजह से मामूल से कम बारिश और खुश्क साली के इम्कानी हालात से मुतालिक सूरत हाल पर लगातार करीबी नजर रख रही है। उन्होंने ज़राअत की वजारत और मुतालिक वजारतों को हिदायत दी कि वो चौकन्ना रहें और रियासती सरकारों के साथ तालमेल रखें ताकि किसानों को सही फसल बोने के बारे में मशवरा दिया जा सके। नायब सदर CP राधाकृष्णन ने कहा है कि सहाफत को सदाकत, मोतबरियत और आला तरीन पेशावराना मेयारात पर अहदबस्ता रहना चाहिए। कल नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर्स वीकली के 80वें योम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए नायब सदर ने कहा कि जब मीडिया मुत्तला करता है, सवालात करता है और मोतबर

0: दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में होने वाली मीटिंग में हुकूमत ने 52,000 करोड़ रुपए के दिफाई सौदों को मंजूरी दी, जिसे मुसल्ला अफवाज की सलाहियत बढ़ाने और उन्हें जदीद तरीन हथियारों से लैस करने की सम्त में बड़ा कदम माना गया है। इस खबर को रोजनामा इंकलाब ने खसूसी तौर पर शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने वजारत खारजा की जानिब से जारी एक बयान को जली सुर्खी के साथ शाये किया है, जिसमें वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान को दो टोक अल्फाज में बता दिया है कि पहले दहशतगर्दी का खात्मा होगा, फिर सिंध तास आबी माहदे पर बात होगी। आयतुल्ला अली खामनेई की आखिरी रसूम के आगाज की खबर पर आज के बेशतर अखबारों ने तवज्जो मरकूज की है, जिसमें शिरकत के लिए भारत समेत मुख्तलिफ मुल्कों के वफूद की आमद का सिलसिला जारी है। आखिरी रसूम 4 जुलाई से 9 जुलाई तक ईरान और इराक के मुख्तलिफ शहरों में अदा की जाएंगी।
1: और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियाँ एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वो बालोतरा में मुल्क के पहले ग्रीन फील्ड मरबूत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। दहशतगर्दी की रोकथाम के गुजरात स्क्वाड ने पाकिस्तान में कायम दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। मरकज ने एलनीनो के सबब मुल्क के कुछ इलाकों में मामूल से कम बारिश और खुश्क साली की इम्कानी सूरत हाल का जायजा लिया। भारत के महकमा मौसमियात ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा आलमी कप में अर्जेंटीना मियामी में कैबो वर्डे को एक सनसनीखेज मैच में 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में मरहले में दाखिल हो गया है। मिस्र भी प्री क्वार्टर फाइनल्स में दाखिल हो गया है। और आज शाम मैनचेस्टर में दूसरे T20 में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: दिनांक 2 जुलाई से 8 जुलाई तक राज्य भर में मनाया जा रहा है बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं।
4: बिहार सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है अब भ्रष्टाचार के खिलाफ।
3: भ्रष्टाचार की शिकायत टोल फ्री नंबर 1064 पर कॉल करें या संपर्क करें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो अथवा विशेष निगरानी इकाई कार्यालय में।
4: भ्रष्टाचार मुक्त बिहार।
3: निगरानी विभाग व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल जो का...

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में 3 नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बोधगया में आज से शुरू हो रहा है राज्य स्तरीय सम्मेलन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे उद्घाटन। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में हुए शामिल। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में पूर्णिया देश भर में पहले स्थान पर, सीतामढ़ी भी शीर्ष 5 में शामिल। और प्रदेश में मानसून की कम सक्रियता से गर्मी और उमस बढ़ी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। गया जिले के बोधगया में आज से 3 नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे।
1: बोध गया के कन्वेंशन सेंटर महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित इस सम्मेलन में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय, अन्य न्यायाधीश और सभी जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक समेत 200 से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। यह सम्मेलन बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बिपार्ड और बिहार जुडिशियल एकेडमी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें नए आपराधिक कानूनों की बारीकियों और उन्हें लागू करने में पुलिस तथा न्यायपालिका के बीच बेहतर समन्वय पर मंथन किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए बोधगया से धर्मवीर भारती।
0: ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने सरकार और भारतीयों की ओर से सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने हाल के संघर्ष में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की है। गौरतलब है कि यह अंतिम संस्कार 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका के हवाई हमलों में खामेनेई की मृत्यु के बाद हो रहा है। अंतिम संस्कार कार्यक्रम अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में पूर्व नेता को सुपुर्द खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पूर्णिया जिले के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। नीति आयोग की त्रैमासिक डेल्टा रैंकिंग में पूर्णिया ने देश के 112 आकांक्षी जिलों में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। वहीं सीतामढ़ी जिला इस सूची में देश भर में तीसरे स्थान पर है। अररिया 108वें स्थान के साथ आखिरी 5 जिलों में शामिल है। रैंकिंग में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि, कौशल विकास और आधारभूत संरचना जैसे प्रमुख सूचकांकों के आधार पर विभिन्न जिलों में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अंक दिए गए हैं। राज्य सरकार ने सरकारी सेवकों के यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता के नियमों में संशोधन किया है। इन भत्तों के लिए अब केंद्र सरकार की दरें लागू होंगी। वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब सरकारी काम से विदेश जाने वाले कर्मचारी को यात्रा भत्ता विदेश मंत्रालय द्वारा तय दरों के अनुसार मिलेगा। नए नियमावली के तहत बिहार यात्रा भत्ता नियमावली 1949 के महत्वपूर्ण प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। इससे पहले विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार की निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान होता था। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और नवगठित राजकीय डिग्री कॉलेजों में संविदा के आधार

0: पर 3,687 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी ने बताया कि अभ्यर्थी समर्थ पोर्टल से 15 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। इन पदों के लिए 20 और 27 जुलाई को साक्षात्कार लिया जाएगा। सभी प्रक्रियाओं के बाद 7 अगस्त तक चयनित अभ्यर्थियों को योगदान देना होगा। श्री चौधरी ने बताया कि यह नियुक्ति 6 विषयों हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में होगी। लोक भवन ने स्पष्ट किया है कि पीएचडी अध्यादेश और विनियमन के तहत पीएचडी गाइड के सेवानिवृत्त होने पर भी गाइड 70 वर्ष की उम्र तक शोधार्थी को शोध करा सकेंगे। नए अध्यादेश के नियमों के अनुसार जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 3 वर्ष से कम का समय शेष है, वे अपने पर्यवेक्षण में नए शोधार्थियों को पंजीकृत नहीं कर सकेंगे। लोक भवन ने स्पष्ट किया है कि जो छात्र पहले से इन शिक्षकों के अधीन पंजीकृत हैं, उनका शोध कार्य नहीं रुकेगा। ऐसे शिक्षक 70 वर्ष की आयु तक सह पर्यवेक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे सकेंगे। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और गुमराह करने वाला है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए हैं। इन ट्रायल में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास बुरा असर नहीं देखा गया। परीक्षणों में पैसेंजर कारों से लगभग 40,000 किलोमीटर और दोपहिया वाहनों से 20,000 किलोमीटर की दूरी तय की गई। इसमें कहा गया है कि माइलेज पर ईंधन के प्रकार के अलावा गाड़ी चलाने का तरीका, रखरखाव, टायर का दबाव, अलाइनमेंट और एयर कंडीशनिंग का लोड जैसी कई और चीजों का भी असर पड़ता है। केंद्र सरकार ने बैट बीएमएस, एपॉक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम यात्रियों और साइबर सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। शीर्ष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सलाह पर पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं। पंचायती राज मंत्रालय की नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला में पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि राज्यों के सहयोग से पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।
1: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
0: मानसून की कम सक्रियता के चलते प्रदेश के अधिकांश स्थानों में तापमान में बढ़ोतरी हुई है। उमस और गर्मी से जनजीवन प्रभावित है। पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर का भभुआ 38.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं पटना का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान पटना सहित राज्य के अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान कई स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने आज राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में कुछ जगहों पर तेज हवा के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की है।
2: राज्य के सभी भागों के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रखी है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। अररिया पुलिस लाइन केंद्र में आयोजित दीक्षांत समारोह में सिपाहियों को सफलतापूर्वक बुनियादी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सेवा की शपथ दिलाई गई। पूर्णिया प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक ने पास आउट परेड का निरीक्षण किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। भागलपुर के समीक्षा भवन में राज्य सरकार के 7 निश्चय 3 के सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम के तहत आम लोगों की समस्याओं की सुनवाई की गई। जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय की अध्यक्षता में लंबित पेंशन भूमि विवाद समेत विभिन्न मामलों से जुड़े 22 आवेदनों का निष्पादन किया गया। इधर भागलपुर जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गोपालपुर और इस्माइलपुर प्रखंड अंतर्गत तटबंध के मरम्मत कार्य को लेकर प्रसारित खबर तथ्यहीन और भ्रामक है। जनसंपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक ने विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि 30 जून को जिला पदाधिकारी और अपर समाहर्ता आपदा ने स्थल निरीक्षण किया है। इस संबंध में बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल नौगछिया के अभियंता ने बताया कि 15 जुलाई तक आवश्यक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। सीतामढ़ी के जिलाधिकारी ऋचि पांडे ने डुमरा में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यालय के शुरू होने से सैनिक कल्याण से संबंधित सभी प्रमुख सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी। इस अवसर पर जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी विंग कमांडर यूके त्रिपाठी समेत बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और उनके आश्रित उपस्थित थे। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के तत्वावधान में प्रदेश में 23 से 26 जुलाई के बीच राज्य महिला फुटबॉल लीग का आयोजन किया जाएगा। प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने बताया कि यह प्रतियोगिता के मैच पटना, मुंगेर और बेगूसराय में खेले जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस लीग का उद्देश्य राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धी माहौल उपलब्ध कराना और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा नई टाउनशिप में 7 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। 12 टाउनशिप के विकास पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा हुडको। दैनिक जागरण लिखा है लालू राबड़ी को मिलेगी जेड श्रेणी सुरक्षा। दैनिक भास्कर लिखता है सरकार ने 3 चीनी ऐप हटाए, अब बीच रास्ते में बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। प्रभात खबर ने लिखा है 24 घंटे में 2 एनकाउंटर, सीतामढ़ी और वैशाली में 2 अपराधियों को लगी गोली। आज अखबार की सुर्खी है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा इंडो नेपाल सीमा पर रखें निगरानी। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, राज्य में 6000 करोड़ के निवेश से 3000 रोजगार के अवसर होंगे सृजित। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 3 नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बोधगया में आज से शुरू हो रहा है राज्य स्तरीय सम्मेलन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे उद्घाटन। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में हुए शामिल। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में पूर्णिया देश भर में पहले

0: स्थान पर, सीतामढ़ी भी शीर्ष पांच में शामिल। और प्रदेश में मानसून की कम सक्रियता से गर्मी और उमस बढ़ी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात।
5: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
6: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
7: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
6: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
7: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
6: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
7: 870-001-4242।
5: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 9:06 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म नगमा का कार्यक्रम नगमे नए पुराने।

अभी आपने सुना कालिया फिल्म का नगमा मजरूह सुल्तानपुर ने से लिखा था, संगीतबद्ध किया था आर डी बर्मन ने, आवाज थी किशोर कुमार और लता मंगेश, क्षमा करें किशोर कुमार और आशा भोसले की। अब आइए सुनते हैं जंगली फिल्म का नगमा, हसरत जयपुर ने से लिखा है, संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने, आवाज मोहम्मद रफ़ी साहब की।

कार्यक्रम नगमे नए पुराने में। अब आइए सुनते हैं नदिया के पार फिल्म का ये नगमा।

अभी आपने सुना नदिया के पार फिल्म का नगमा हेमलता और जसपाल सिंह की आवाज़ें थीं। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। अब आइए सुनते हैं पड़ोसन फिल्म का ये नगमा।

अभी आप सुन रहे थे पड़ोसन फिल्म का नगमा। लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, संगीतबद्ध किया था आर डी बर्मन ने। अब एस डी बर्मन का संगीतबद्ध किया गाना मजरूह सुल्तानपुरी ने से लिखा, आवाज़ लता मंगेशकर, क्षमा करें, आवाज़ किशोर कुमार और आशा भोसले की। फिल्म का नाम पेगेस्ट।

0: पेइंग गेस्ट फिल्म के इस नगमे के साथ ही आज का नगमे नए पुराने कार्यक्रम का सफर हुआ पूरा। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
0: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 9:31:03 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत कार्यक्रम। कलाकार हैं गोपाल कृष्ण मिश्र। कार्यक्रम के आरंभ में इनसे आइए सुनते हैं मलुक दास की ये भक्ति रचना।

अभी आप सुगम संगीत कार्यक्रम में गोपाल कृष्ण मिश्र को सुन रहे थे, क्षमा करें, सुन रहे हैं। अभी आपने इनसे मलोक दास की भक्ति रचना सुनी, अब आइए सुनते हैं ब्रह्मानंद की ये भक्ति रचना।

अभी आप सुगम संगीत कार्यक्रम में गोपाल कृष्ण मिश्र को सुन रहे हैं। ब्रह्मानंद की इस भक्ति रचना के बाद अब आइए सुनते हैं बिंदु जी की भक्ति रचना।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत कार्यक्रम। कलाकार थे गोपाल कृष्ण मिश्र। सुगम संगीत कार्यक्रम संपन्न हुआ, ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। दिन के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी नगमों का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म के इस नगमे के साथ, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने, संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाज लता मंगेशकर और साथियों की।

अभी आपने आरजू फिल्म का नगमा सुना। हजरत जयपुरी ने इसे लिखा था, संगीतबद्ध किया था मोहम्मद रफ़ी ने, आवाज़ क्षमा करें संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब की थी। अब आइए सुनते हैं बेटी बेटी फिल्म का नगमा। गीत एक बार फिर से हर्षत ने लिखा है, संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की।

अब आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में धरती फिल्म का नगमा। गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

अभी आपने धरती फिल्म में मोहम्मद रफ़ी साहब को सुना। गीत लिखा था राजेंद्र किशन ने, संगीतबद्ध किया था शंकर जय किशन ने। कार्यक्रम है पुरानी फिल्मों से। अब आइए सुनते हैं गूंज उठी सहनाई फिल्म का ये नगमा।

पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति है फिल्म तीसरी मंजिल से। गीत मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है, संगीत से सजाया है राहुल देववर्मन ने, आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी साहब की।

0: इस गीत के साथ ही आज का पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम का सफर हुआ पूरा।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 10:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है लोक गीत कार्यक्रम। कलाकार हैं सुमित्रा देवी। कार्यक्रम के आरंभ में इनसे आइए सुनते हैं ये देवी गीत।

अभी आपने सुमित्रा देवी से ये विदाई गीत सुनी। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम के आखिर में सोहर गीत।

अभी आप लोकगीत कार्यक्रम सुन रहे थे। कलाकार थे सुमित्रा देवी। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 11 बजने वाले हैं, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स और एफएम के 110.1 मेगाहर्ट्स पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के फ़ोन कॉल पर आधारित फरमाइश से फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फ़ोन इन आपके पसंद। इस कार्यक्रम को आज आपके लिए पेश कर रहे हैं सौरभ कुमार।

0: फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। श्रोताओं, कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने मन पसंदीदा गानों की रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 11:30 बजे से 12 बजे के बीच में करवा सकते हैं। साथ ही आप अपनी फरमाइश प्रत्येक शनिवार को 11 बजे से 12 बजे के बीच में सुन सकते हैं। तो लेते हैं हम अपने पहले कॉलर को।
1: हेलो, नमस्कार।
0: हाँ नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: जय बजरंग रेडियो सोता तक बस स्टैंड वंडा वैली के आपके नेम शो लक्ष्मण रेकॉर्ड चाय वाले बात कर रहे हैं सर, चाय पी लो।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए क्या क्या चल रहा है?
1: बस अभी तो बरसात हो रही है थोड़ी हल्की हल्की।
0: जी जी, और बारिश हो गई, काफी अच्छा लगा सुनकर। और बताइए कि आपकी दुकान कैसी चल रही है?
1: अच्छी चल रही, भगवान की कृपा है, आप लोग की कृपा है तो चल।
0: और बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: आज सुनवा दी एक पिक्चर है बॉबी झूठ बोले कौवा।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो गाना खुद सुनेंगे या किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे आप?
1: हमारे रहेंगे गजराज लोधी, मांगी लाल चंद्र, बसंती लाल तुम तो पिन कटारे, ऋषिकेश तिवारी, अमित तिवारी जी हैं, कलयुग महाराज हैं
0: जी,
1: मुकेश भाई साहब से सब।
0: जरूर जरूर, और आपको ये गाना हम जरूर सुनाएंगे और इसी तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा।
1: ठीक है सर, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ सर नमस्कार, मैं बनिया पारा धमतरी छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ, रामचंद मखीजा काफिर भाई। सर
0: अच्छा, रामचंद्र जी कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है सर, मौसम कैसा है आपके उधर?
0: हमारे यहाँ तो अभी मिला जुला है, कभी बारिश हो जा रही है और गर्मी भी हो रही है, तो काफ़ी कस के हो रही है, उमस भरी गर्मी हो रही है, तो इसके कारण लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। और आपकी तरफ कैसा मौसम है अभी?
1: हमारे यहाँ बदल है थोड़ा, छुटपुट रात में पानी गिरता है, ठंड यानी
0: जी
1: माहौल ठंडा है, अभी धूप नहीं है यानी बदल छाए हुए हैं। बढ़िया
0: मिला जुला आपके यहाँ भी है थोड़ा मौसम,
1: जी।
0: लेकिन आप छत्तीसगढ़ में सुना है बारिश स्टार्ट हो गई है।
1: हाँ स्टार्ट हो गया ना, रात को ठंडक का थी, पानी गिरा था, सबेरे भी बूंदा पानी हुआ है। हाँ
0: जी हम आशा करेंगे कि देश के उन भागों में जहाँ पे अभी दिक्कत है, बारिश नहीं हो रही, वहाँ भी बारिश हो और पूरे देश में अच्छे से मानसून बारिश हो, ताकि लोगों को और किसानों को खास करके इससे
1: जी
0: इसका फ़ायदा मिले।
1: और किसानों के ऊपर हमारा पूरा भारत कृषि प्रधान देश है, उन्हीं के ऊपर टिका हुआ है।
0: जी बिल्कुल
1: बरसात गिरेगा तो खेती अच्छी होगी, हरियाली होगी,
0: जी
1: और किसानों को बरसात का ही मौसम का ज़्यादा इंतजार रहता है। और दूसरा हमारे जो शहरों में, नगरों में, गांवों में आजकल देखिए हर जगह पर सीमेंटेड
0: जी
1: करण हो गया है, मकान पक्के बन रहे हैं, रोड पक्के बन रहे हैं,
0: जी
1: गली मोहल्ला चाहे कोई भी हो, शहर या गाँव। तो अपने को हार्वेस्टर की भी समस्या पूरी करनी है, मकान बनाते हैं तो पानी की ऐसी सुविधा हो कि आगे चल के काम है, संरक्षण हो अपना जल का, क्योंकि
0: जी बिल्कुल सही
1: पेयजल की
0: कहा आपने
1: समस्या
0: कि
1: आगे आएगी।
0: जी, अगर आप कंक्रीट का घर बना रहे हैं तो कम से कम वर्षा जल संरक्षण तकनीक जो है वो अपने घर में ज़रूर लगाएं, ताकि जो भूगर्भ जल का जो संचयन है वो हो सके, क्योंकि देश में के हर जगह नदियों से ही सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। नहरों,
1: जी
0: नदियों की संख्या जहाँ पे है वहीं पर सिंचाई होती है,
1: वही तो।
0: अदरवाइज कई जगह पे तालाबों से वर्षा जल संचयन करके, खास करके सेंट्रल इंडिया दक्कन प्लेटू में खास करके तालाबों से होता है इसका संचयन, वर्षा जल संचयन करके उसका हम लोग वो एग्रीकल्चर में यूज करते हैं और कुआं वगैरह का प्रयोग करते हैं। तो कुआं में भी तो आप ज़्यादा दोहन करेंगे तो फिर उसको भी रिचार्ज करने की आवश्यकता है। अब वर्षा

0: को अगर हम संचय करके रखेंगे तो आपका रिचार्ज होके रहेगा।
1: जी, वही जल धरती में जाएगा तो आगे पेयजल की भी समस्या नहीं होगी। और
0: जी
1: दूसरा, अब नया तकनीक निकला है कि बड़ा पाइप ले लो, 6 फीट चौड़ा यानी 4 फीट जैसे भी, तो पक्के मकान बने उसको तोड़ के गड्ढा करके, जैसे अपन नलकूप नहीं बनाते हैं पानी
0: जी जी
1: हैंडपम्प की,
0: वो जी वही वर्षा जल संरक्षण
1: तो
0: तकनीक है।
1: वो
0: तो
1: भी अच्छी तकनीक है।
0: जी
1: और
0: तो
1: जल है तो कल है, उसी से ही
0: जी,
1: सब
0: जल है तो
1: ऊपर है
0: कल
1: सब।
0: है, जल ही जीवन है।
1: और कालिदास जी ने तो बादलों को, वर्षा ऋतु को बादलों को प्रेम का प्रतीक माना है, संदेश वाहक।
0: जी
1: और
0: जी
1: कई लोग बरसात गिरती है तो ऐसा लग रहा है कि रो रहा है, पानी गिर रहा है बूंदे। सबकी
0: जी जी जी जी
1: अपनी अपनी है।
0: जी तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: आप सुनाइएगा, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, और मेरे साथ आज बरसात भी रुक पड़ी है। इसको सुनाएंगे सर, चांदनी फिल्म का है।
0: तो ये गाना आप खुद
1: और
0: सुनेंगे, अपने दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: हमारे मित्र हैं आपके, सुरजीत कुमार जी आप हैं, और पूरा भागलपुर आकाशवाणी के सभी श्रोतागण जो सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं उनके साथ सर।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपकी पसंद पे आपके तमाम दोस्तों को और अपने तमाम श्रोताओं को ये खूबसूरत सा गाना हम जरूर सुनाएंगे, और इसी तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा।
1: ओके सर, वंदे मातरम।
0: धन्यवाद।

0: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: परमाली सौरभ साहब, सादर प्रेम प्यार नमस्कार। मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मत्स्य से वार्तालाप कर रहा हूँ। मालवर आप कैसे हैं? मौसम कुछ नरम हुआ कि नहीं?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, और हम अभी अच्छे हैं। और साथ ही आपके माध्यम से अपने श्रोताओं को बताएंगे कि अभी बिहार में छिटपुट वर्षा हो रही है, लेकिन उसके बाद उमस बहुत ज़्यादा हो जाता है, गर्मी भी फिर आ जाती है, धूप तेज हो जाता है, तो ये मिला जुला असर है और लोग इस पर अपना ध्यान रखें।
1: जी जी बिल्कुल, जो छुटपुट बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही, बौछार पड़ रही है और फिर इसके बाद चमचमाती हुई तेज धूप हो जाती है, जिसके कारण की प्रचंड उमस भरी गर्मी बढ़ जाती है और ये उमस भरी गर्मी ज्यादा परेशान करती है वनस्पति गर्मी की वजह से।
0: जी जी,
1: और गर्मी जितना परेशान नहीं करती, वो उमस भरी गर्मी ज्यादा परेशान करती है। पसीने से चिपचिप रहता है, बेचैनी महसूस होती रहती है। हमारी मथुरा वृंदावन में भी बारिश तो खैर नहीं हुई, बिल्कुल मानसूनी बारिश भी नहीं हुई, प्री मानसून बारिश भी नहीं हुई है, लेकिन आसपास के कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी हल्की फुल्की बौछार पड़ जाती है, जिसके कारण की वाष्पन यहाँ तक पहुँचता है और उमस भरी गर्मी उत्पन्न कर रहा है। हालांकि जो तापमान 42-44 डिग्री जा रहा था, अब 35 डिग्री के आसपास टिका हुआ है।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है 1942 अ लव स्टोरी।
0: इस फिल्म का कौन सा?
1: बहुत ही सुंदर और प्यारा सा सुरीला सा गीत है, भावना से परिपूर्ण, कल्पनाओं से परिपूर्ण गीत है। ये रोमांटिक गीत तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन भावनाओं और कल्पनाओं से परिपूर्ण है ये। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, बहुत ही सुंदर प्यारा सुरीला गीत है और ये गीत जब हम सुनते हैं तो कल्पनाओं में खो जाते हैं कि जब हम किसी मूरत को, किसी सूरत को, किसी सौंदर्य को देखते हैं तो कल्पना करते हैं कि ये इस जैसी होगी, ये ऐसी जैसी हो, ये ऐसी हो, इसकी तुलना ऐसा, लेकिन वो तुलना मिलता नहीं कि कहाँ करें, किससे करें। तो ये बहुत ही बड़ी विशेषता है इस गीत की।
0: तो ठीक है, आपकी पसंद पे ये गाना हम जरूर सुनेंगे, लेकिन ये गाना आप खुद सुनेंगे, अपने दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: जी, मैं तो सदैव अपने मित्रों को शामिल करते रहता हूँ और ये प्यारा सा खूबसूरत गीत सब श्री भागलपुर से सौरभ कुमार साहब को सादर समर्पित करता हूँ।
0: धन्यवाद।
1: और याद करना चाहता हूँ ब्रज रेडियो श्रोता मित्र अविनाश जी, आशुतोष जी, लोकिन वर्मा, राजू यादव हैं, केशव प्रसाद शर्मा जी हैं और तेज चंद्र अग्रवाल, इन सभी दोस्तों के साथ में ये प्यारा सा खूबसूरत गीत आकाशवाणी भागलपुर सुन रहे सभी श्रोताओं को सादर समर्पित करता हूँ।
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो आपकी पसंद पे गाना हम जरूर सुनाएंगे और इसी तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा।
1: जी हृदय धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।
0: नमस्कार नमस्कार।

0: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते, आप अपना परिचय दें।
1: मैं पीजी देशमुख बोल रहा हूँ, ऊंचेगा बुजुर्ग, तालुका हदगांव, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र से।
0: जी, इतनी दूर से आप फोन कर रहे हैं और लगता है हम आपसे पहली बार बात कर रहे हैं, तो बताइए आप कैसे हैं?
1: बस बहुत अच्छा है सर, अभी मानसून आ गया हमारे डिस्ट्रिक्ट में, बहुत फसल की बुआई हो गई।
0: क्या बात है, तब काफ़ी अच्छी लगा सुनकर, क्योंकि देश के कई इलाकों में अभी भी बारिश अच्छे से नहीं हो रही है, जिसका जो सीधा सीधा असर हमारे किसान भाइयों को हो रहा है। और बताइए आप क्या करते हैं?
1: बस मैं किसानी करता हूँ सर।
0: क्या बात है, तो आपने इस बार की कौन कौन सी फसल लगाई है?
1: अभी सोयाबीन की है, कपास है, तुअर है।
0: क्या बात है, तो आप क्या आशा करेंगे कि इस बार अच्छी फसल होगी?
1: अभी तो फसल तो अच्छी निकलेगी, अभी तो ऊपर निकल रही है थोड़ी थोड़ी बीच जमीन के ऊपर।
0: जी, तब तो हम भी आशा करेंगे कि इस बार आपकी फसल काफ़ी अच्छी हो, और सभी किसानों को मौसम जो इनका डिमांड है कि बारिश हो, तो भगवान भी इसे कुछ सुने और बारिश करे।
1: ओके सर, ओके।
0: जी, तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: मुझे फिल्म का नाम है देश प्रेमी।
0: देश प्रेमी फिल्म का कौन सा गाना?
1: उसमें गीत के बोले, मेरे देश प्रेमी आपस में प्रेम करो।
0: क्या बात है, तो गाना खुद सुनेंगे अपने दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: दोस्तों के साथ सुनना चाहता हूँ सर। आपका नाम क्या है पहले?
0: मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ।
1: ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। बस हमारे दोस्त एक फेमस रेडियो ग्रुप है हमारा सर, ऑल इंडिया का।
0: जी जी जी
1: और गौतम राय बोले हमारे, गुणवंत कड़ू, गौतम राय, लोकेंद्र वर्मा है, रामपाल यादव है, टेकचंद अग्रवाल है
0: जी,
1: और तुकाराम जाधव है, हमारे बहुत दोस्त है सर।
0: जी जी जी तो आपके तमाम दोस्तों को और अपने तमाम श्रोताओं को आपकी पसंद पे खूबसूरत सा गाना हम जरूर सुनाएंगे, और इसी तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा।
1: ओके, थैंक यू सर,
0: थैंक यू।

0: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: मजे में, अच्छे सुरक्षित है। आप कैसे हैं सर?
0: हम भी अच्छे हैं। और जीताराम जी बताइए, क्या चल रहा है?
1: बस हमारे तो खेती किसानों को तो आज का काम चल रहा है, और बरसात भी अच्छी हुई है हमारे किसान भाई की फसल
0: जी।
1: तो
0: ये सब
1: अच्छी हुई सर।
0: ये सबसे बड़ी बात हुई कि आपके यहाँ बारिश बहुत अच्छी हुई है और फसल अच्छी होगी, क्योंकि कई इलाकों में बारिश हो नहीं रही है, इसका जो प्रतिकूल असर पड़ रहा है। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि अभी बारिश स्टार्ट हो गई, मानसून आ रहा है धीरे धीरे, तो हम आशा करेंगे कि देश के अन्य भागों में मानसून फैले और अच्छे से बारिश हो, ताकि सभी किसान भाइयों का फसल अच्छा हो।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद
0: जी
1: सर। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर।
0: जी तो बताइए, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: मुझे बरसात में अभी तो चल रहा है अपने तुम्हारे हमारी बातचीत, और सब भारत देश में बारिश चल रही है, कुछ कम है कुछ ज्यादा है, कुछ बारिश नहीं हो रही है। साधु संगम में मुझे
0: जी
1: गाना देना, फिल्म का नाम है सर प्यासा सावन।
0: प्यासा सावन कौन सा गाना?
1: हाँ, गाने के बोले मेघा रे मेघा मत परदेसी जा रे, ये गाना सुना दो सर।
0: जी तो गाना खुद सुनेंगे, दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: सब दोस्तों के साथ मुझे ये गाना सुनना है सर।
0: जी तो ठीक है, आपके सभी दोस्तों को और अपने सभी श्रोताओं को आपकी पसंद पे गाना हम जरूर सुनाएंगे, और इसी तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा।
1: धन्यवाद सर,
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद।

0: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार बंधु।
0: नमस्कार, काफी दिनों बाद आपसे बात हो रही है। आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: मैं आपका शुभचिंतक जी बाहुबली छत्रपति संभाजी नगर से वार्तालाप कर रहा हूँ।
0: जी काफी अच्छा लगता है, और आप हमारे बहुत पुराने रेडियो के श्रोता हैं। हमको लगता है भारत में आप बहुत पुराने श्रोताओं में से जाने जाते हैं।
1: ये तो आपका बड़प्पन है भाई साहब।
0: जी जी, और आपने हमें फोन किया, काफी अच्छा लगा इस बात को देखकर। और आप कैसे हैं?
1: मैं तो अभी मस्त हूँ
0: जी।
1: अभी उम्र का तगाजा रहता है
0: जी,
1: और थोड़ी बहुत अभी 84 साल की उम्र चालू है
0: जी जी,
1: और अभी बोले तो शारीरिक व्याधि तो सताती है, मगर उसके ऊपर ज्यादा गौर न करते हुए अपना समय
0: जी
1: अच्छे कामों में व्यस्त किए
0: जी,
1: तो आदमी को बोले तो वेदना दुख नहीं होता
0: जी जी जी। तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: तो आज मैं
0: जी
1: फिल्म बड़ा आदमी
0: जी,
1: और गाने के बोल है अखियन संग अखिया लागी आज।
0: जी जी जी, तो ये गाना आप खुद सुनेंगे, अपने दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: जी जी, मेरे दोस्तों सभी, अपने तमाम भागलपुर के जो भी श्रोतागण हैं
0: जी,
1: उनको मैं ये समर्पित करना चाहूंगा
0: जी।
1: मीर जी को रफी जी ने गाया है
0: जी,
1: और संगीत चित्रगुप्त जी का है भैया जी, और भाई साहब आपसे वार्तालाप जब जब होता है
0: जी जी,
1: मन बोले तो प्रसन्न और आनंदित हो जाता है।
0: जी जी, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। आप इतनी दूर से, आप अभी भी इतनी एज में भी आप रेडियो सुनते हैं, ये बहुत बड़ी बात है और काफी अच्छा लगता है।
1: जी जी जी, और भाई साहब आपके वाणी में जो मधुरता और जो एक अपनापन का भाव मुझे जो महसूस होता है, उससे मैं बोले तो आपका बहुत बहुत बोले तो शुक्र गुजार हूँ।
0: जी, हम कोशिश करेंगे आपके लिए और अच्छे से हम लोग कार्यक्रम करें
1: जी।
0: तो आपके तमाम जिन लोगों को आप ये गाना डेडिकेट करना चाहते हैं, सभी को और अपने तमाम श्रोताओं को ये गाना हम जरूर सुनाएंगे, और इसी तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा।
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद।

0: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है, आप कौन बोल रहे हैं?
1: सर नमस्कार, टेकचंद अग्रवाल बोल रहा हूँ, परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
0: टेकचंद जी कैसे हैं आप?
1: बस सर हम बहुत बढ़िया हैं, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं। और क्या करते हैं आप?
1: सर मैं एक कहना चाहिए सेवानिवृत्त कामगार हूँ।
0: क्या बात है, तो अभी आपके यहाँ मौसम वगैरह कैसा है?
1: मौसम तो सर बहुत ही सुहाना है, 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है।
0: जी जी,
1: और अभी भी हो रही सर, और अभी 1-2 दिन पहले बारिश कुछ तेज हुई थी।
0: जी जी,
1: लेकिन अभी 2 दिन से जो बारिश हो रही सर, वो कहना चाहिए धरती को उससे मतलब कहना चाहिए उसमें जो है पानी कहना चाहिए उसमें सर पानी बह नहीं रहा, लेकिन उसमें पानी पी रही है सर, मतलब कहना चाहिए
0: मतलब इसकी बहुत आवश्यकता थी, इतनी गर्मी पड़ रही थी। जी
1: क्या होता सर, जब झमाझम बारिश हो जाती है तो पानी एकदम से बह करके निकल जाता है।
0: जी,
1: लेकिन अभी जो है सर जमीन उस पानी को मतलब ले रही है।
0: जी जी,
1: तो उससे क्या है सर, पानी का जलस्तर भी बढ़ेगा,
0: जी
1: साथ में जो मौसम है वो ठंडा भी हो रहेगा।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और किसानों को इससे फायदा भी होगा कृषि कार्य में।
1: बिल्कुल सर, उन्होंने खेत बखर के तो पहले रख लिए थे सर, अब बोनी का उनका समय हो गया, तो हमारे आजू बाजू खेती है।
0: जी जी जी,
1: तो कुछ जो किसान है वो बोनी भी कर रहे हैं।
0: जी जी जी, तो आप
1: खेत बन चुके हैं।
0: जी जी, तो आप सेवानिवृत्ति के बाद मतलब अपना समय वगैरह ये सब कैसे करते हैं, मतलब कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं?
1: सर एक रोटेशन बना हुआ है, मैं पहले कोल इंडिया में कार्यरत था।
0: जी जी,
1: और 37 से 38 साल में उसमें सेवा दिया हूँ।
0: जी,
1: तो मेरा सर क्या था कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट था।
0: जी जी जी,
1: जो काफी सर कहना चाहिए मेहनत और जोखिम भरा था।
0: जी बिल्कुल,
1: तो वो रोटेशन सर क्या अभी भी नहीं टूटा हुआ है, अभी भी मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिर से वो जॉब में जाकर के अभी भी वो काम कर सकता हूँ।
0: क्या बात है, ये मतलब आपका उत्साह अभी भी है पूरा।
1: जो एक सिस्टम बना हुआ है सर 60 साल के बाद रिटायरमेंट का।
0: जी जी,
1: तो उसके तहत तो सर हमें रिटायर होना ही है।
0: जी जी,
1: अगर हम रिटायर नहीं होंगे तो आने वाले जो हमारे बच्चे हैं उनको
0: मौका नहीं मिलेगा,
1: भविष्य बनाने में कैसे सहयोग मिलेगा।
0: जी जी,
1: तो एक ये बात भी है सर। और होता क्या है सर, सुबह से जो एक दिनचर्या रहती है, सुबह उठना, थोड़ा सा घूमना फिरना, फिर अपना एक छोटा सा एक बगीचा है सर, उसमें थोड़ा सा समय हमें दे देते हैं।
0: जी जी,
1: साफ सफाई वगैरह ये करना।
0: जी,
1: और मतलब खाद पानी की व्यवस्था करना।
0: जी जी,
1: उसके बाद सर अपना नहाना वहाना जो पूजा पाठ, तो और बाकी सर जो समय हम अपने मतलब कार्यकाल जब ड्यूटी थे हमारी,
0: जी
1: जो कार्यकाल उस समय में सर जो हमने अपना समय परिवार को नहीं दे सके।
0: जी जी,
1: वो समय आप सर परिवार को देते हैं।
0: क्या बात है, क्या बात, आपने बिल्कुल सही कहा कि आप आदमी नौकरी में जो समय परिवार को नहीं दे पाता है वो अब देता है रिटायरमेंट के बाद, और कई सारे हमारे कार्य जो अधूरे रह जाते हैं वो सब हम लोग पूरा करते हैं इसमें।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, और ये सर जो एक पारिवारिक जो जिंदगी है सर, उससे रिटायर होना जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा तब तक नहीं हो सकते।
0: नहीं बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वो जिम्मेदारी होती है,
1: रिटायरमेंट नहीं कर सकती।
0: जी, वो हमारी सही की जो असली जिम्मेदारी होती है।
1: जी
0: जी, तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: सर 1972 की एक फिल्म थी मोहम्मद।

0: समय बहुत अखड़ता है, दोस्तों को आप
1: जी
0: अभी मिस करते हैं, तो आप अपने दोस्तों के
1: हाँ
0: नाम बता सकते हैं?
1: सर, दोस्त तो मेरे बहुत हैं सर, उसमें से
0: जी
1: दो चार नाम मैं ले लेता हूँ।
0: जी
1: हमारे एक परम मित्र में सर सर एक है आर के शर्मा करके,
0: जी
1: आर के मरकाम, आर के जावरकर
0: जी
1: और आर के डहरिया।
0: जी
1: सर ज्यादातर मेरे जो दोस्त हैं वो राजन कुमार से ही या राजन प्रसाद से नाम है,
0: जी जी जी
1: और हिरण्मय चटर्जी करके सर, सुरेश कुमार
0: जी
1: कहना चाहिए, जावरकर है,
0: जी
1: तो बहुत से सर मित्र हैं जो हमारे कहना चाहिए खासो खास है,
0: जी जी जी
1: जो हमारे किसी खास समय पे हमारे साथ खड़े हैं, हमारे साथ जो अपना समय देने के लिए तैयार है।
0: जी जी तो ठीक है, आपके तमाम मित्रों को और आपके तमाम चाहने वालों को और अपने तमाम श्रोताओं को आपकी पसंद पे एक खूबसूरत सा गाना नाम जरूर सुनाएंगे, और इसी तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा।
1: शुक्रिया सर जी,
0: धन्यवाद,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो।
1: नमस्कार सर, मैं चिरमिरी कुरासे अकाली जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: नमस्कार इंद्रभान जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है सर, आप भी अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूँ सर। बहुत देर का प्रयास कर रहा था, लग गया फोन सर। यहाँ तो पानी गिरा सर ड्यूटी में,
0: जी
1: कल
0: जी
1: गिरा है और सुबह भी गिरा है।
0: जी जी
1: एकदम मौसम सुहाना है सर, ठंडा ठंडा हवा
0: जी
1: चल
0: जी
1: रही
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो कुछ इलाके हैं उसमें काफ़ी बारिश हो रही है, और काफ़ी
1: है।
0: अच्छा लगा सुन के। महाराष्ट्र में भी बारिश हो रही है, और बताइए कि अभी और क्या चल रहा है?
1: सर अभी तो नौकरी चल रहा है सर, और यही आपका कार्यक्रम में फोन किया हूँ सर, कई केंद्र में फोन किया हूँ
0: जी
1: और बहुत इसका प्रयास कर रहा था। मेरे को तो नहीं लग रहा था सर लगेगा, लेकिन लग गया सर।
0: जी जी जी तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: आज मैं सुनूंगा सर, फिल्म का नाम है क्या बोलते हैं, कश्मीर
0: क्या बात है
1: सर।
0: जी, तो गाना खुद सुनेंगे, अपने दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: सबसे पहले आपको सुनाऊंगा सर, और
0: जी
1: सबसे पहले आपको दीजिए कह रहा हूँ
0: जी जी जी
1: आकाशवाणी भागलपुर में जुड़े सभी श्रोता भाई बहनों को, उद्घोषकों को, आपके परिवारजन को, रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को, केंद्र निर्देशक साहब को, भागलपुर में जुड़े सभी उद्घोषक भाई बहनों को, स्टाफ को।

0: हेलो।
1: हाँ हेलो सर।
0: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: जी सर, हम मोहम्मद राजू खान बोल रहे हैं सर, मुजाहिदपुर पूरब टोला भागलपुर से सर।
0: कैसे हैं राजू जी?
1: बस ठीक है सर, आप लोग की दुआ से अच्छे हैं सर।
0: और क्या चल रहा है अभी?
1: बस ऐसे ही सर, काम उम करते हैं सर। अभी तो इतना गर्मी कर दिया है कि बहुत हालत खराब हो गया सर।
0: जी जी,
1: बड़ी
0: बहुत ध्यान रखिए अपना। और
1: जी
0: बताइए
1: जी
0: कि
1: सर,
0: आज कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे?
1: हमको सर फिर हेरा फेरी वाला गाना सुनवा दीजिए ना सर। दिल दे दिया है सीने से निकाल के, सुनिधि चौहान कुनाल।
0: क्या बात
1: वाला
0: है, तो गाना खुद सुनेंगे घर वालों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: घर वालों के साथ सुनना चाहते हैं। और हमारे दोस्त हैं सर गोरट्टा मुजाहिदपुर से, मोहम्मद शमीम है
0: जी।
1: और मोहम्मद फैजान है सर, और बड़ा भाई है मोहम्मद जहांगीर खान, सबनम जानम खैरू भाई रूबी बेगम
0: जी।
1: बेटा है सर अरवाज खान, अयाज खान, आलिया, आबिया, आपिया, सादिया और जाफर, ये सभी गाना सुनना
0: जी
1: चाहते
0: जी
1: हैं
0: जी। तो ठीक है, आपकी पसंद पे ये गाना हम जरूर सुनाएंगे और इसी तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा।

घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही है, यानी वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का। जाने से पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि प्रत्येक शुक्रवार को आप अपने मन पसंदीदा फरमाइशी फिल्मी गानों के लिए अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। इसके लिए आप हमें सुबह 11:30 से 12 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मुझे यानी सौरभ कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
4: आप सुन रहे थे श्रोताओं के फोन कॉल पर आधारित फरमाइशें फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फोन इन आपके पसंद। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के ठीक 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम नारी लोक।

नारी लोक सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को अर्चना का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, हमारे देश में प्रत्येक साल 1 से 7 जुलाई तक वृक्षारोपण का उत्सव मनाया जाता है, जिसे वन महोत्सव के रूप में जाना जाता है। यह उत्सव बहनों एक महान पारंपरिक उत्सव है, जो वृक्षारोपण के माध्यम से धरती माता का सम्मान और प्रेम करने, प्रकृति की सुंदरता के प्रति जागरूकता पैदा करने और कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रण करें की अवधारणा को बढ़ावा देने वाले वातावरण को विकसित करने के लिए भारतीय संस्कृति और विरासत को दर्शाता है। कुल मिलाकर बहनों, वन महोत्सव वृक्षों के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में अधिक सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। अधिक वृक्षारोपण करके हम जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने, पर्यावरण की रक्षा करने और मानव कल्याण को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। वन महोत्सव का शाब्दिक अर्थ एक महान वन उत्सव है, जो वृक्षारोपण के केंद्रीय विषय के साथ दुनिया भर में भारतीय समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक आयोजन है। कुल मिलाकर बहनों, वन महोत्सव वृक्षों के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में अधिक सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। अधिक वृक्षारोपण करके हम जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने, पर्यावरण की रक्षा करने और मानव कल्याण को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। कम करने, पुनः उपयोग करने और पुनर्चक्रण करने का उत्तम विचार वैश्विक तापक्रम को कम करने और प्रकृति को बढ़ावा देने में योगदान से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। वन महोत्सव उन लोगों के लिए भी है जो धरती माता से प्रेम करते हैं और उन लोगों के लिए भी है जो इससे अनभिज्ञ हैं, क्योंकि उन्हें भी अच्छे पर्यावरण, सुहावने मौसम और सुखद जलवायु परिस्थितियों के बीच प्राकृतिक संतुलन का आनंद लेने का अवसर मिलेगा। इस त्यौहार को मनाना भारत और उसके बाद विश्व की हरियाली बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देने से सीधे तौर पर संबंधित है। बहनों, भारत में राष्ट्रीय वृक्षारोपण सप्ताह का आयोजन महेंद्र सिंह रंधावा द्वारा 20 से 27 जुलाई 1947 तक किया गया। रंधावा विभिन्न देशों में मनाए जाने वाले वन सप्ताह, वृक्ष उत्सव या वृक्ष दिवस के विचारों से प्रेरित थे। 20 जुलाई 1947 को पहले कार्यक्रम का उद्घाटन दिल्ली के आयुक्त खुर्शीद अहमद द्वारा सुबह बेहोनिया के पौधे लगाकर किया गया। दोपहर में अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष नेहरू के नेतृत्व में पुराना किला में एक अन्य समारोह आयोजित किया गया। एक अन्य समारोह जिसमें कुतुब मीनार में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें लेडी माउंटबेटन सहित कई प्रतिभागी शामिल थी। नेहरू जी ने कहा कि यह उनके लिए आश्चर्य की बात है कि अब तक वृक्षारोपण में कोई रुचि नहीं दिखाई गई है। लोगों की लापरवाही के कारण देश के बड़े हिस्से रेगिस्तान बन गए हैं, क्योंकि लोग पेड़ों के महत्व को समझे बिना उन्हें काट देते हैं। ऐसा कानून होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति पेड़ तक ना काट पाए, जब तक कि वह पहले उसके स्थान पर एक नया पेड़ ना लगा दे। इस परंपरा को जारी रखा गया और 1950 में खाद्य एवं कृषि मंत्री कन्हैया लाल मानेकलाल मुंशी द्वारा इसे एक राष्ट्रीय गतिविधि बना दिया गया, जिसे इसे जुलाई के पहले सप्ताह में स्थानांतरित कर दिया गया और 1950 में इसका नाम बदलकर वन महोत्सव कर दिया। बहनों, वन महोत्सव ने अपनी स्थापना के बाद से एक लंबा सफर तय किया है। एक आंदोलन के रूप में शुरू होकर यह धरती माता को बचाने के अभियान में बदल गया है। भारत के कई राज्यों में जीवन के उत्सव के रूप में मान्यता प्राप्त की है और अंततः एक ऐसे त्यौहार में तब्दील हो गया जिसे अब कई राज्यों में राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारतीय लोगों को वृक्षारोपण और उसकी देखभाल में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करके महोत्सव के आयोजक देश में अधिक वन सृजित करने की आशा रखते हैं। इससे वैकल्पिक ईंधन प्राप्त होगा, खाद्य संसाधनों का उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ाने के लिए खेतों के चारों ओर छायादार क्षेत्र बनेंगे, पशुओं को चारा और छाया मिलेगी, छायादार और सुंदर परिदृश्य बनेंगे, सूखा कम होगा और मृदा अपरदन को रोकने में मदद मिलेगी। जुलाई का पहला सप्ताह भारत के अधिकांश हिस्सों में वृक्षारोपण के लिए बिल्कुल उपयुक्त समय है, क्योंकि यह मानसून के मौसम के साथ मेल खाता है।
इस वन महोत्सव को मनाने का एकमात्र उद्देश्य है वनों की कटाई को रोकना, वनों के आवरण को बढ़ाना और सबों के बीच पेड़ों और जंगलों के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना और अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, क्योंकि यह मौसम पौधों के पनपने के लिए सबसे अनुकूल होता है। इसी के साथ बहनों, आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और अब आनंद लेते हैं इस प्यारे से गीत का।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: बहनों, किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस एक ऐसी अवस्था है जो बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का एक महत्वपूर्ण संक्रमण काल है। यह सामान्यतः 11 से 19 वर्ष की आयु के बीच माना जाता है। इस चरण में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र परिवर्तन होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व और भविष्य की नींव तय करते हैं। बहनों, इस दौरान मस्तिष्क और सोचने की क्षमता का अभूतपूर्व विकास होता है। अमूर्त चिंतन, तर्क वितर और भविष्य की योजना बनाने की क्षमता विकसित होने लगती है। कल्पनाशीलता यानी इमेजिनेशन बहुत बढ़ जाती है और डे ड्रीमिंग यानी कि दिवा स्वप्न भी अधिक देखने लगते हैं। इस अवस्था में वे अपनी पहचान बनाने को लेकर भी भावनात्मक उथल पथल की स्थिति में रहते हैं। किशोरावस्था में स्वतंत्रता की चाह बढ़ जाती है और वे अपने माता पिता या परिवार वालों से भी ज़्यादा अपने दोस्तों या पीयर ग्रुप के साथ समय बिताना पसंद करते हैं और वे विपरीत लिंग के प्रति भी आकर्षित हो जाते हैं और अपनी पहचान को लेकर भी असमंजस की स्थिति में रहते हैं। इस वक्त उन्हें बहनों सही मार्गदर्शन और भावनात्मक सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, इसलिए माता पिता और शिक्षकों को चाहिए कि वे किशोरों के साथ मित्रवत व्यवहार करें और उन्हें यौन शिक्षा, नशा मुक्ति और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें। और बस यह बात याद रखें कि किशोरावस्था जीवन का सबसे ऊर्जावान, कल्पनाशील और तूफानी दौर माना गया है, जिसमें सही दिशा मिलने पर व्यक्ति महान उपलब्धियां हासिल कर सकता है। तो बहनों, इस अवस्था में किशोर और किशोरियों को यौन शिक्षक से अवगत कराना क्यों आवश्यक है, इसकी शिक्षा उन्हें कैसे और कब दें, इन्हीं सब बातों पर आइए सुनते हैं ये वार्ता। विषय है किशोरियों के लिए यौन शिक्षा कितना आवश्यक। वार्ताकार है अंजलि शर्मा। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।

आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में अक्सर खुलकर बात नहीं की जाती है, लेकिन जिसे समझना हर किशोरी के लिए बहुत ही जरूरी है। इस विषय का नाम है यौन शिक्षा। यौन शिक्षा का मतलब केवल सेक्स के बारे में जानकारी देना नहीं है, इसका अर्थ है अपने शरीर को समझना, किशोर अवस्था में होने वाले बदलावों को जानना, अच्छी और बुरी छुअन की पहचान करना, मासिक धर्म की सही जानकारी रखना, स्वयं का सम्मान करना, सुरक्षित रहना और सही समय पर सही निर्णय लेना। किशोर अवस्था क्या है? किशोर अवस्था जीवन का वह समय है जब शरीर और मन दोनों तेजी से बदलते हैं। लगभग 10 से 19 वर्ष की आयु के बीच यह परिवर्तन होते हैं। इस समय लड़कियों में लंबाई बढ़ती है और शरीर का विकास होता है। मासिक धर्म की शुरुआत होती है और भावात्मक बदलाव भी आते हैं। कभी खुशी, कभी गुस्सा, कभी उदासी या झिझक महसूस होना सामान्य बात है। इन बदलावों से डरने की नहीं बल्कि उन्हें समझने की ज़रूरत है। मासिक धर्म यानी पीरियड्स। मासिक धर्म हर लड़की के जीवन का एक सामान्य और प्राकृतिक हिस्सा है। यह कोई बीमारी नहीं है और न ही शर्म की बात है। मासिक धर्म के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, समय समय पर सैनिटरी पैड बदलें, साफ पानी से सफाई करें, पौष्टिक भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं, जरूरत हो तो आराम करें। यदि बहुत अधिक दर्द हो या अत्यधिक रक्तस्राव हो तो कई महीनों तक पीरियड ना आए तो डॉक्टर से सलाह लेनी जरूरी है। अपने शरीर का सम्मान करें। हमारा शरीर अनमोल है। किसी को भी हमारी इच्छा के बिना हमें छूने का अधिकार नहीं है। याद रखें, मेरा शरीर, मेरी मर्यादा और मेरी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छी और बुरी छुअन। अच्छी छुअन वह होती है जिसे हमें सुरक्षित महसूस होता है और सम्मानित महसूस हो। बुरी छुअन वह होती है जिससे डर, शर्म, असहजता या परेशानी महसूस हो। यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से छूने की कोशिश करे, तुरंत वहाँ से हट जाएं, जोर से ना कहें, किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति को तुरंत बताएं।

0: कभी भी डर कर चुप न रहें। गलती आपकी नहीं होती है, गलत हमेशा वह व्यक्ति होता है जो ऐसा व्यवहार करता है। यौन शिक्षा का अर्थ केवल सेक्स के बारे में जानकारी ही देना नहीं है। हमारे समाज में यौन शिक्षा पर खुलकर बात नहीं होती है। अगर सही समय पर सही जानकारी न मिले तो किशोरियाँ गलत जानकारी पर विश्वास कर सकती हैं, जिससे डर और भ्रम पैदा होता है। इसलिए यौन शिक्षा बहुत ही जरूरी है। इसके लिए प्रजनन तंत्र को समझना भी बहुत जरूरी है, खास करके किशोरियों के लिए। हर लड़की के शरीर में कुछ विशेष अंग होते हैं जिन्हें प्रजनन अंग कहा जाता है। इसमें गर्भाशय, अंडाशय और योनि शामिल है। अंडाशय हर महीने एक अंडाणु बनाते हैं। यदि वह अंडाणु निषेचित नहीं होता तो गर्भाशय की अंदरूनी परत टूटकर रक्त के रूप में निकलती है। इसे ही मासिक धर्म कहा जाता है। यह कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। गर्भ कैसे ठहरता है? जब एक वयस्क महिला और पुरुष के बीच आपसी सहमति से यौन संबंध बनता है तो पुरुष का शुक्राणु महिला के अंडाणु से मिल सकता है। यदि दोनों मिल जाते हैं तो निषेचन होता है और गर्भ ठहर सकता है। इसी कारण कम उम्र में या बिना तैयारी के यौन संबंध बनाने से अनचाहा गर्भ ठहरने का भी खतरा रहता है, जिससे लड़की के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। यौन शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है सहमति। सहमति का अर्थ है कि दोनों व्यक्ति अपनी इच्छा से बिना किसी दबाव, डर या लालच के किसी भी शारीरिक संबंध के लिए स्पष्ट रूप से तैयार हों। यदि कोई लड़की नहीं कहती है, चुप रहती है और डर रही है या नाबालिग है तो उसे सहमति नहीं माना जाता है। हर किशोरी को अपने शरीर पर पूरा अधिकार है। सुरक्षित यौन व्यवहार, कम उम्र में यौन संबंध बनाने से बचना सबसे सुरक्षित विकल्प है। जब लोग व्यस्क होकर यौन संबंध बनाते हैं तो अनचाहे गर्भ और कुछ यौन संचारित संक्रमणों से बचाव के लिए सुरक्षा के उपाय अपनाना आवश्यक होता है। सही जानकारी और स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यौन संचारित संक्रमण भी जानकारी के अभाव में फैलते हैं। कुछ संक्रमण यौन संपर्क से फैलते हैं, जैसे HIV, सिफिलिस, गोनोरिया और क्लेमाइडिया। इन संक्रमणों से बचाव के लिए सही जानकारी, सुरक्षित व्यवहार और समय पर जांच आवश्यक है। यदि किसी को असामान्य दर्द, घाव, खुजली, बदबूदार स्राव या जलन जैसी समस्या हो तो बिना शर्म किए डॉक्टर से मिलना चाहिए। यदि किशोरियों के मन में कोई सवाल हो तो उसे छिपाएं नहीं। विश्वसनीय शिक्षक, माता पिता, डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से सही जानकारी लें। गलत जानकारी से भ्रम और नुकसान दोनों हो सकते हैं। यौन शिक्षा केवल लड़कियों के लिए ही नहीं बल्कि लड़कों के लिए भी उतनी ही जरूरी है। जब दोनों को सही जानकारी मिलेगी तभी समाज में सम्मान, सुरक्षा और समानता बढ़ेगी। हमारे समाज में अक्सर यौन शब्द सुनते ही लोग असहज हो जाते हैं। परिवारों में इस विषय पर बात करना अनुचित समझा जाता है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि जिस विषय पर हम बात करने से बचते हैं उसी विषय पर गलत जानकारी तेजी से फैलती है। किशोर अवस्था जीवन का वह दौर है जब शरीर में तेजी से परिवर्तन होते हैं, मन में अनेक प्रश्न उठते हैं, नई भावनाएँ जन्म लेती हैं और जिज्ञासाएँ बढ़ती हैं। यदि इन प्रश्नों का उत्तर माता पिता, शिक्षक या स्वास्थ्य विशेषज्ञ नहीं देंगे तो किशोर इंटरनेट, सोशल मीडिया या साथियों से जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कई बार अधूरी, भ्रामक और हानिकारक होती है। विश्व स्वास्थ्य विशेषज्ञों का भी मानना है कि आयु के अनुसार दी गई सही यौन शिक्षा बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाती है, यौन शिक्षा के खतरों को कम करती है, लैंगिक हिंसा को रोकने में मदद करती है और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में प्रेरित करती है। हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि आज डिजिटल युग में बच्चों की पहुंच में मोबाइल और इंटरनेट तक बहुत आसान हो गई है। ऐसे में यदि परिवार चुप रहेगा तो इंटरनेट शिक्षक बन जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि माता पिता किशोरियों के पहले और सबसे विश्वसनीय मार्गदर्शक बने। यह समझना ही बहुत आवश्यक है कि यौन शिक्षा से अधिक खतरनाक चीज़ है गलत या अधूरी यौन जानकारी। जब किसी किशोरी को उसके शरीर, स्वास्थ्य और अधिकार के बारे में सही जानकारी नहीं मिलती तो उसके जीवन में इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। सबसे पहले वह अपने शरीर में होने वाले बदलावों से डरने लगती है। मासिक धर्म, हार्मोनल परिवर्तन या शारीरिक विकास जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाएँ उसे बीमारी या शर्म का विषय लग सकती हैं। दूसरा, यदि किसी लड़की को अच्छे और बुरे स्पर्श का अंतर नहीं पता है तो यौन शोषण का शिकार होने पर भी उसे पहचान नहीं पाती है। कई बार डर, शर्म या अपराध बोध के कारण वह किसी से कुछ भी नहीं कह पाती। यह चुप्पी उसके मानसिक स्वास्थ्य पर लंबे समय तक असर डालती है। तीसरा, गलत जानकारी के अभाव में किशोरी इंटरनेट, दोस्तों या अफवाहों पर भरोसा करने के मन में कई भ्रम पैदा हो सकते हैं जो भविष्य में उसके निर्णयों को प्रभावित करते हैं। गलत जानकारी के अभाव में वह मानसिक रूप से भी प्रभावित होती है। डर, आत्मग्लानि, चिंता, अवसाद, आत्मविश्वास की कमी और लोगों पर भरोसा न कर पाना, ये सब गलत या अधूरी जानकारी के परिणाम हो सकते हैं। किशोरियों को यौन शिक्षा देने का उद्देश्य उसे यौन संबंधों के लिए प्रेरित करना नहीं है, बल्कि उसे सुरक्षित, जागरूक, आत्मसम्मानी और जिम्मेदार बनाना है। यौन शिक्षा की सही जानकारी एक किशोरी को अपने अधिकार पहचानने, गलत का विरोध करने और ज़रूरत पड़ने पर निडर होकर सहायता मांगने का साहस देती है। इसलिए हर माता पिता, शिक्षक और समाज का यह दायित्व है कि वे बेटियों को डर और शर्म नहीं बल्कि ज्ञान, सम्मान और आत्मविश्वास दें, क्योंकि एक जागरूक किशोरी स्वयं सुरक्षित नहीं रहती बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित और सशक्त बनाती है।
1: अभी मैंने सुन रही थी वार्ता, विषय था किशोरियों के लिए यौन शिक्षा कितनी आवश्यक। वार्ताकार थी अंजलि शर्मा। इनकी इतनी अच्छी और उपयोगी वार्ता के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते चलते आनंद लेते हैं इस प्यारे से गीत का।

अभी आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुर संगम में पंडित बलराम दास मिश्र का तबला वादन सुन रहे थे, राग तीन ताल पे। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर का ठीक एक बजा है। लीजिए सुनिए लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आज के हमारे कलाकार हैं रणवीर प्रसाद सिंह। आरंभ में आइए इनसे सुनते हैं ये देवी गीत।

0: अड़हुल के फूल बड़े लाल गे, कमल के फूल बड़े लाल गे मलिनिया, अड़हुल के फूल बड़े लाल गे।
1: लीजिए अब सुनिए रणवीर प्रसाद सिंह से ये निर्गुण।

आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंगा। आज के हमारे कलाकार हैं रणवीर प्रसाद सिंह। इनके गाए लोकगीत आप एक बार फिर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार के बाद, जिसके लिए आइए शामिल होते हैं राज्य की प्रसारण सभा में।

0: प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में कम बारिश को लेकर नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक। गृह मंत्री और कृषि मंत्री ने की अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा। किसानों को राहत देने पर हुई चर्चा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शी बॉक्स पोर्टल को सराहा। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायतें रहेंगी पूरी तरह गोपनीय। मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में लंबित अदालती मामलों पर उच्च स्तरीय बैठक। समय पर शपथ पत्र दाखिल करने और विधि पोर्टल 2.0 लाने का निर्देश। राज्य में बीडीओ और सीओ का पद एक ही अधिकारी को देने के सरकार के फैसले का भाजपा ने किया विरोध। प्रदेश महामंत्री ने जताई ग्रामीण विकास ठप होने की आशंका। और झारखंड राज्य खाद्य आयोग की प्रभारी अध्यक्ष ने पश्चिम सिंहभूम का किया दौरा। जरूरतमंदों को आकस्मिक खाद्यान्न कोष से तुरंत राशन देने का निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के प्रभाव से देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा की स्थिति की समीक्षा की। नई दिल्ली में हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय गृह सचिव और कृषि सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कम बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में जल प्रबंधन और किसानों को राहत देने की रणनीतियों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
0: राज्य में मॉनसून पर अल नीनो का प्रभाव देखा जा रहा है। रांची मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार प्रशांत महासागर के सतही तापमान में बदलाव यानी अल नीनो के कारण दक्षिण पश्चिमी मॉनसून कमजोर पड़ रहा है।
2: देखिए, प्रशांत महासागर में जो सतही समुद्री टेम्परेचर की बात करें तो उसमें जो चेंजेस आता है पूर्वी या पश्चिमी भाग में, उस टेम्परेचर चेंजेस को हम लोग अल नीनो के नाम से जानते हैं। तो इसके होने से ये होता है कि भारतीय मानसून कमजोर होता है, से अधिकतर खेती होती है, उसी पर हम लोग ज्यादा निर्भर है, बारिश में अनियमितता देखने को मिलती है।
0: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शी बॉक्स पोर्टल को कामकाजी महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के लिए एक सशक्त माध्यम बताया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि इसके जरिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें पूरी तरह गोपनीय और सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन दर्ज की जा सकती हैं। यह डिजिटल पहल महिलाओं को निडर होकर अपनी आवाज उठाने की सुविधा देती है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर बाउरी ने राज्य के प्रखंडों में बीडीओ और सीओ के पद एक ही अधिकारी को सौंपे जाने पर सरकार पर तीखा हमला बोला है। रांची में पत्रकारों से बात करते हुए श्री बाउरी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार का विकास और जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है।
3: आज के समय डिसेंट्रलाइजेशन सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। काम को जितना विकेंद्रीकरण करके आप अकाउंटेबल लोगों को पदाधिकारियों को बैठा करके आप रिजल्ट निकालिए, वैसे समय में आप ये मर्ज करके इस पूरे व्यवस्था को चौपट करना चाहते हैं और मुझे लगता है इसका दूरगामी परिणाम बहुत भयावह होने जा रहा है झारखंड की परिस्थिति में। और आज नहीं तो कल इनको रोल बैक करना ही होगा, इसलिए पुनर्विचार करें और नए नए पदों में नए नए पदाधिकारी जेपीएससी यूपीएससी से जो लोग आए हैं जो भी वीडियो सी उनको वहां दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की बहाली करिए और उनको काम करने में लगाइए।
0: राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में लंबित अदालती मामलों के त्वरित निपटारे के लिए मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। प्रोजेक्ट भवन में हुई इस बैठक में नवनियुक्त महाधिवक्ता रोहिताशी रॉय भी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने सभी विभागीय सचिवों को अदालती मामलों में तय समय पर शपथ पत्र दाखिल करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कानूनी मामलों की प्रभावी डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए जल्द ही अपग्रेड विधि पोर्टल 2.0 लॉन्च करने का फैसला लिया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्वामी जी को महान देशभक्त और दार्शनिक बताते हुए कहा कि उनके प्रेरणादायक विचार और आध्यात्मिक शिक्षाएं विकसित भारत के निर्माण में युवाओं का मार्गदर्शन करती रहेंगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद के निरसा विधायक अरूप चटर्जी को कथित तौर पर गैंगस्टर प्रिंस खान द्वारा फोन और व्हाट्सएप पर धमकी मिलने का मामला सामने आया है। विधायक ने धनबाद एसएसपी से लिखित शिकायत पर सुरक्षा बढ़ाने और कार्रवाई की गुहार लगाई है।
4: जो टुल्लू महतो के खिलाफ जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो उनके गलत कारनामों को हम लोग खोल रहे हैं, उन तमाम चीजों से बाज आए। टुल्लू अगर ये समझता है जो किसी क्रिमिनल को लगा कर हम लोगों को चुप करवा देगा, जब वो खुद नहीं बोल पाता है, चीजों की जवाब नहीं दे पाती है, तो क्रिमिनल को आगे करते हैं।
0: झारखंड राज्य खाद्य आयोग के प्रभारी अध्यक्ष शबनम परवीन ने पश्चिमी सिंहभूम के 2 दिवसीय दौरे के बाद कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम से वंचित सभी जरूरतमंदों को आकस्मिक खाद्यान्न कोष से राशन दिया जाए।
5: जांच में मैंने पाया कि उन लोगों का जो आरोप था वो सही है। मैंने यहाँ के एडिशनल कलेक्टर जो जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी होते हैं उनको मैंने ये निर्देश दिया है कि वो 15 दिनों के अंदर उनकी समस्याओं का समाधान करके और जितने दिनों का राशन नहीं मिला है सवा गुना मुआवजा के साथ उसे राशन उपलब्ध कराना है।
0: चक्रधरपुर रेल मंडल के DRM तरुण हुरिया ने जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन परिसर, नवनिर्मित बुनियादी ढांचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। DRM ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रेल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और साफ सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के कड़े निर्देश दिए।
6: यहाँ पे आवागमन के लिए लाइन की कमी है, यहाँ पर लाइनों कैसे बढ़ाया जा सकता है, कहाँ पे क्या कर कहाँ पे और लाइन दी जा सकती है या कहाँ पे लाइन ऐसी दी जाए ताकि बारियर जल्दी आ जाए, उसके लिए एक सर्वे किया था हमने प्यार में भी दो गए थे, वो है उपयोग किया गया तो पैसेंजर के लिए जो सुविधा है।
0: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपए प्रति किलो है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने सहकार से समृद्धि का संकल्प दोहराया। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र का विस्तार देश की आत्मनिर्भरता की नींव है। 65वीं रांची जिला सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता के अंडर-15 बालक वर्ग का खिताब मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय कांके ने जीत लिया है। रोमांचक फाइनल मुकाबले में कांके की टीम ने सेंट जॉन्स स्कूल को 4-3 से पराजित किया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में कम बारिश को लेकर नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक। गृह मंत्री और कृषि मंत्री ने की अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा। किसानों को राहत देने पर हुई चर्चा। केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शी बॉक्स पोर्टल को सराहा। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायतें रहेंगी पूरी तरह गोपनीय। मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में लंबित अदालती मामलों पर उच्च स्तरीय बैठक। समय पर शपथ पत्र दाखिल करने और विधि पोर्टल 2.0 लाने का निर्देश। राज्य में बीडीओ और सीओ का पद एक ही अधिकारी को देने के सरकार के फैसले का भाजपा ने किया विरोध। प्रदेश महामंत्री ने जताई ग्रामीण विकास ठप होने की आशंका। और झारखंड राज्य खाद्य आयोग की प्रभारी अध्यक्ष ने पश्चिमी सिंहभूम का किया दौरा। जरूरतमंदों को आकस्मिक खाद्यान्न कोष से तुरंत राशन देने का निर्देश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
7: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है लोक गीतों के कार्यक्रम लोक रंग का शेष भाग। कलाकार हैं रणवीर प्रसाद सिंह। इस भाग के आरंभ में आइए सुनते हैं ये विदाई गीत।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं रणवीर प्रसाद सिंह से ये विरह गीत।

आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग। कलाकार थे रणवीर प्रसाद सिंह। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक संताली पत्रिका कार्यक्रम जीवन झरना।

आप सुन रहे थे हमारा संताली पत्रिका कार्यक्रम जीवन झरना। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 2 बजने वाले हैं, आइए शामिल होते हैं पटना के प्रसारण सभा में समाचारों के लिए।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। बोधगया स्थित महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में आज से 3 नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया। सम्मेलन में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय, अन्य न्यायाधीश, सभी जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक समेत 200 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। यह सम्मेलन बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बिपार्ट और बिहार जुडिशियल एकेडमी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने बहुचर्चित टेंडर घोटाले में गिरफ्तार भवन निर्माण विभाग के तत्कालीन संयुक्त सचिव मुमुक्षु कुमार चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार सरकारी सेवक नियमावली के तहत यह कार्रवाई की है। मुमुक्षु कुमार चौधरी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। अगला आदेश जारी होने तक उनका निलंबन प्रभावी रहेगा। पूर्वी चंपारण के पिपराकोठी में प्रस्तावित वाटर पार्क परियोजना के निर्माण कार्य में बाधा डालने के आरोप में स्थानीय थाने में राजद सांसद सुधाकर सिंह समेत 57 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। 27 लोगों के खिलाफ नामजद और 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपितों ने निर्माण कार्य रुकवाया और मौके पर मौजूद कर्मियों के साथ मारपीट की। राज्य सरकार ने झारखंड से बिहार में प्रवेश करने वाले अवैध और ओवरलोडेड गिट्टी लदे वाहनों के खिलाफ निगरानी बढ़ा दी है। राज्य परिवहन आयुक्त ने सभी सीमावर्ती जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर ऐसे वाहनों की सघन जांच करने और मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि ओवरलोडेड वाहनों से सड़क सुरक्षा प्रभावित होती है और सरकारी राजस्व को भी नुकसान होता है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से श्री यादव के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। अररिया के जिलाधिकारी विनोद तुहन ने नेपाल की नागरिकता रखने वाली 10 महिलाओं को भारतीय नागरिकता प्राप्ति की प्रक्रिया के तहत शपथ दिलाई। इन सभी महिलाओं का विवाह अररिया जिले में हुआ है और वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ अररिया में निवास कर रही हैं। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ने से बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। इसके चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। पूर्णिया के ढेंगरा घाट में सबसे अधिक 28.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी की संभावना है। मुजफ्फरपुर जिले के सिवायपट्टी थाना क्षेत्र में आज तड़के अपराधियों ने एक किराना व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। व्यवसायी रोज की तरह टेढ़ा चौक स्थित मंदिर में पूजा करने पहुंचे थे, तभी हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पटना के बेउर में पिछले दिनों एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि भूमि विवाद में हत्या को अंजाम दिया गया था। वैशाली जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ लाभुकों के लिए घर घर खाद्यान्न पहुंचाने की नई व्यवस्था शुरू हो गई है। जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने हाजीपुर सदर प्रखंड की इस्माइलपुर पंचायत के हरोली गांव से इस योजना का शुभारंभ किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शरफुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। बोधगया वाक़े महाबोधि सकाफती मरकज़ में आज से 3 नए

मुजरिमाना कानून के मौसर अमल दरामद के लिए 2 रोज़ा रियासती सतह की कॉन्फ्रेंस मुनक़द की गई। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने किया। कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज, पटना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मीनाक्षी मदन राय, सभी ज़िलों के सीनियर एसपी और एसपी समेत 200 से ज़्यादा नुमाइंदगान शामिल हो रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस बिहार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और बीपार्ड व बिहार जुडिशियल एकेडमी के जरिए मुनाकिद हो रही है। रियासती हुकूमत ने मशहूर टेंडर घोटाले में गिरफ्तार महकमा तामीरात इमारत के उस वक्त के ज्वाइंट सेक्रेटरी मुमुचू कुमार चौधरी को फौरी असर से मुअत्तल कर दिया है। महकमा जनरल इंतजामिया ने बिहार सरकारी सेवक जाब्ता के तहत ये कार्रवाई की है। मुमुक्षु कुमार चौधरी फिलहाल अदालती हिरासत में हैं। अगले हुक्म तक उनकी मुअत्तली मौसर रहेगी। मशरकी चंपारण के पिपरा कोठी में मुजवजा वाटर पार्क प्रोजेक्ट के तामीराती काम में खलल डालने के इल्ज़ाम में मकामी थाने में आरजेडी एमपी सुधाकर सिंह समेत 57 अफराद के खिलाफ इतला अव्वल दर्ज की गई है। 27 अफराद के खिलाफ नामजद और 30 नामालूम लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजमीन ने तामीराती काम में खलल डाला और मौके पर मौजूद अमलों के साथ मारपीट की। रियासती हुकूमत ने झारखंड से बिहार में दाखिल होने वाले गैर कानूनी और ओवरलोडेड गिट्टी लदी गाड़ियों के खिलाफ निगरानी बढ़ा दी है। स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने सभी सरहदी ज़िलों के ज़िला मैजिस्ट्रेट्स को खत लिखकर ऐसी गाड़ियों की सख्त जांच करने और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। खत में कहा गया है कि ओवरलोडेड गाड़ियों से सड़क तहफ्फुज मुतासिर होता है और सरकारी रेवेन्यू को भी नुकसान होता है। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने पटना के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कोऑपरेटिव वज़ीर रामकृपाल यादव से मुलाकात करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आला ने डॉक्टरों से उनकी सेहत से मुतल्लिक मालूमात हासिल की और उनकी जल्द सेहतयाबी की तमन्ना की। अररिया के ज़िला मजिस्ट्रेट विनोद दुहन ने नेपाल की शहरियत रखने वाली 10 खवातीन को हिंदुस्तानी शहरियत की हुसूलियाबी के अमल के तहत हल्फ बर्दारी कराई। इन सभी औरतों की शादी अररिया ज़िले में हुई है। फिलहाल वो अपने ख़ानदान के साथ अररिया में मुकीम हैं। रियासत में मानसून की रफ्तार सुस्त पड़ने से बारिश की हलचल में कमी आई है। इसके सबब ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम पारा हरारत में भी इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात से मिली इत्तला के बमौजिब गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के शमाली और जुनूबी हिस्सों में कुछ मकामात पर हल्की बारिश दर्ज की गई। पूर्णिया के ढेंगरा घाट में सबसे ज़्यादा 28.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम की कयास आरआई में कहा गया है कि आज रियासत के बेशतर हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। मुजफ्फरपुर ज़िले के सिवाई पट्टी थाना हलका में आज सवेरे जराम पेशा अनासिर ने एक किराना दुकानदार को गोली मारकर हलाक कर दिया। दुकानदार मामूल के मुताबिक डेरा चौक वाके मंदिर में पूजा करने पहुंचे थे, तभी हमला आवरों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जराम पेशा अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापामारी कर रही है। पटना के बिहोर में पिछले दिनों एक नौजवान की हलाकत के मामले में पुलिस ने 4 मुलजमीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ज़मीनी तनाज़ा में हलाकत को अंजाम दिया गया। वैशाली ज़िले में कौमी अजनास तहफ़ुज़ एक्ट के तहत 80 बरस और उससे ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्ग मुस्तफीज़ों के लिए घर घर अनाज पहुँचाने का नया निज़ाम शुरू हो गया है। ज़िला मजिस्ट्रेट वर्षा सिंह ने हाजीपुर सदर ब्लॉक की इस्माइलपुर पंचायत से इस मनसूबे को शुरू किया। और इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।

0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 2:15 होने ही वाले हैं, आइए शामिल होते हैं दिल्ली के प्रसारण सभा में दोपहर समाचार के लिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
2: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1,000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
2: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
4: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
5: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
6: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है। तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाए। मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है। अंतिम सांस तक इस अभियान को एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
7: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
8: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार 5वें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
9: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना के लिए लियोनल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर बाद के 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म तेरे मेरे सपने का एक दो गाना। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
3: तिलका मांझी तो बहुत।
2: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
4: बख्शी जगबंधु तो
3: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
5: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, त्रिश और बाल्टी बॉय।
6: लता मंगेशकर और आशा भोसले की युगल आवाजों में सुनिए फिल्म उत्सव का ये गीत।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं गुलामी फिल्म का गीत, जिसे गाया है शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर ने।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से, प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर बाद के ठीक 3 बजे हैं। लीजिए सुनिए प्रादेशिक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको ब्रज भाषा में लोक संगीत सुनवा रहे हैं। आरंभ में आइए सुनते हैं कुछ लोकगीत।

श्रोताओं, हमें खेद है कि किसी कारणवश हम आपको प्रादेशिक संगीत का ये भाग पूरी तरह नहीं सुनवा पाए। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में दोपहर बाद के 3:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स और FM के 110.1 मेगाहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर बाद के 3:25 हो चुके हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। इसके लिए आइए शामिल होते हैं विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा में।

0: इस युगलगान के साथ ही आज का फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत अब समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपके लिए पेश किया मंदाकिनी जोशी ने।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: दोस्तों आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: नाट्य तरंग कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है नाटक मालविकाग्नि मित्र। महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी अनुवाद किया है सीताराम चतुर्वेदी ने। रेडियो नाट्य रूपांतरकार एवं निर्देशक चिरंजीत।
1: विदिशा के राज प्रासाद की संगीत शाला में नृत्य सीखती हुई अनुपम सुंदरी मालविका की नूपुरों की ये मधमाती ध्वनि। नव वसंत की मादक बेला में शुंग वंशीय विदिशापति महाराज अग्निमित्र के प्रेम पीड़ित मन को ये ध्वनि तड़पा रही थी, अधीर और पागल बना रही थी। महाराज अग्निमित्र ने मालविका का अभी चित्र ही देखा था, साक्षात दर्शन नहीं किए थे, परंतु चित्र से ही उन्हें विश्वास हो गया था कि मालविका जैसी अनुपम सुंदरी न बड़ी रानी धारणी है न छोटी रानी इरावती। पूछने पर पता चला कि वो लड़की महारानी धारणी की एक नई दासी मालविका है। उसे महारानी के भाई और राज्य के सीमावर्ती दुर्ग के रक्षक वीरसेन ने अपनी बहन की सेवा के लिए भेजा था। चित्र पर गड़ी अपने पति की लुब्ध मुग्ध दृष्टि के मर्म को महारानी धारणी तुरंत समझ गई। उसी दिन से उसने ऐसा कड़ा प्रबंध किया कि मालविका संगीत शाला में ही बंद रहे, ताकि वो महाराज अग्निमित्र की आंखों के सामने न जा सके। और उसी दिन से महाराज मालविका की एक झलक पाने को तरस रहे थे।
2: मित्र गौतम, जिसका चित्र इतना सुंदर है वो स्वयं कितनी सुंदर होगी। शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय करो कि हम मालविका को अपनी आंखों से साक्षात देख सकें।
1: गौतम नामधारी विदूषक उपाय ढूंढने में लग गया। मालविका से मिलने को व्याकुल महाराज अग्निमित्र का मन राजकाज में भी नहीं लग रहा था। वैसे वे पड़ोसी विदर्भ के राजा यज्ञसेन से बहुत ही रुष्ट थे, उससे उनका पुराना वैर था। अग्निमित्र ने उसके चचेरे भाई कुमार माधव सेन को अपने साथ मिला लिया था। तय पाया था कि माधव सेन की बहन का विवाह विदिशापति महाराज अग्निमित्र से होगा। इसी उद्देश्य से कुमार माधव सेन अपनी बहन को विदिशा ला रहा था कि विदर्भ राज यज्ञसेन ने रास्ते में ही उसे उसके परिवार सहित बंदी बना लिया। रुष्ट होकर अग्निमित्र ने जब यज्ञसेन से बंदियों को छोड़ने को कहा तो उसने बड़ी ही धृष्टता से उत्तर भेजा,
3: मंत्री जी पढ़िए पत्र।
4: महाराज, उस दुष्ट यज्ञसेन ने लिखा है, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि इस धरपकड़ में माधव सेन की बहन तो कहीं खो गई है। रही माधव सेन को छोड़ने की बात, सो आपने भी मेरे साले मौर्य सचिव को बंदी बना रखा है। यदि आप उसे छोड़ दें तो मैं माधव सेन को छोड़ दूंगा।
3: हमारे साथ ये यज्ञसेन अदला बदली का व्यवहार कर रहा है, ये दुष्ट ऐसे नहीं मानेगा। मंत्री जी, अपने सीमांत रक्षक वीरसेन को आज्ञा दीजिए कि वो सेना लेकर विदर्भ पर चढ़ाई कर दे और यज्ञसेन जैसे खोटे शत्रु को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे।
1: इधर विदिशापति अग्निमित्र की सेना ने विदर्भ पर चढ़ाई की, उधर अग्निमित्र के पिता और शुंग वंश के संस्थापक सेनापति पुष्यमित्र का दिग्विजय का प्रचंड अभियान चल रहा था। सेनापति पुष्यमित्र ने अपने जीवन काल में दूसरा अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प कर रखा था। और इधर अग्निमित्र का ध्यान मालविका की ओर लगा था। उनके हृदय में संगीत शाला में नृत्य सीखती मालविका की चित्रांकित छवि बसी थी। बहुत सोच विचार के बाद महाराज के मित्र विदूषक ने मालविका को उनकी प्यासी आंखों के सामने लाने का उपाय ढूंढ लिया। संगीत शाला में गणदास और हरदत्त नाम के दो नाट्याचार्य थे। मालविका गणदास की शिष्या थी। दोनों नाट्याचार्यों में से कौन अधिक योग्य है, इस प्रश्न को लेकर विदूषक ने गणदास और हरदत्त के बीच झगड़ा करा दिया। दोनों महाराज के पास आए। निर्णय के लिए महाराज ने बड़ी रानी धारिणी और राज प्रासाद में रहने वाली पंडिता कौशिकी नाम की परिव्राजिका को बुला लिया। परिव्राजिका से विदूषक ने पहले ही साठगांठ कर ली थी, उसी को तटस्थ मानकर निर्णय का कार्यभार उस पर सौंपा गया। दोनों नाट्याचार्यों की योग्यता अयोग्यता की जांच के लिए ये तय पाया कि दोनों ही संगीत शाला में अपनी अपनी शिष्याओं का नाट्य कौशल राजा महारानी और परिव्राजिका कौशिकी के सामने प्रदर्शित करें। निश्चय हुआ कि सबसे पहले नाट्याचार्य गणदास अपनी शिष्या मालविका का अभिनय दिखाएं।

0: अति सुंदर।
1: महाराज देखा?
0: पितृ गौतम, इसे साक्षात देखकर हम सोचने लगे हैं कि चित्रकार ने ठीक ध्यान से इसका चित्र नहीं बनाया।

0: इसने तो स्पीड के बहाने अपने आप को आप पर न्यौछावर कर डाला।
1: मैं भी यही समझता हूँ। सब इसने हमको संबोधित करके कहा है कि नाथ पशु पर अपनी ही समझो।
2: मालविका अब तू जा।
3: ठहरो ठहरो ठहरो, अभी ने मैं कुछ भूल रह गई। मैं पूछना चाहूंगा कि अच्छा पहले कौशिकी जी आप ही पूछ लीजिए।
0: महाराज जी भर कर
4: मैं क्या पूछूंगी, मैंने तो जो देखा है उसमें कहीं कोई दोष दिखाई नहीं दिया। मालविका ने गीत के सब भावों का ठीक ठीक अर्थ अंगों के अभिनय से भली भांति दिखा दिया है। आपका क्या विचार है महाराज?
1: मेरा विचार हम हरदत्त जी के अभिभावक हैं और गणदास जी की अभिभाविका हैं महारानी। जो देखा है उससे अपने पक्ष का हमारा अभिमान कम हो गया है।
2: गणदास जी, अपने परीक्षकों को संतुष्ट करने के लिए आपको बधाई। और हाँ आर्य गौतम, तुम क्या कहना चाहते हो?
3: महारानी, मुझे तो गणदास से ही एक बात कहनी है। जब पहले पहल अपनी सिखाई विद्या का लोगों के सम्मुख प्रदर्शन किया जाता है तो सर्वप्रथम हम जैसे ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए।
4: वाह, क्या नाट्य कला के मर्म की बात पूछी है।
1: मालविका की ये मुस्कुराहट, हमें तो मनचाही वस्तु देखने को मिल गई।
3: मालविका, जब भगवती कौशिकी ने तुम्हारे अभिनय को निर्दोष और सुंदर कह दिया तो लाओ मैं भी तुम्हें पुरस्कार स्वरूप महाराज का यह स्वर्ण कंगन देता हूँ।
2: ठहरो गौतम, दूसरे पक्ष का अभिनय देखे बिना तुम पुरस्कार स्वरूप ये कंगन कैसे दे सकते हो?
3: दे दूसरे का है यही समझ कर दे रहा हूँ।
2: गणदास जी, आपकी ये शिष्य अपना अभिनय दिखा चुकी, अभी से अपने साथ ले जाइए। जाओ मालविका।
5: जो आज्ञा।
3: लीजिए महाराज, जहां तक मेरी बुद्धि की सामर्थ्य थी मैंने आपका काम कर दिया।
1: क्या कहते हो मित्र, उसके जाने से मुझे ऐसा लग रहा है मानो मेरी आंखों का भाग्य फूट गया हो, मेरे हृदय का उल्लास ठंडा पड़ गया हो, मेरे धैर्य का द्वार बंद हो गया।
3: ओहो महाराज, आप तो निर्धन रोगी की तरह ये भी चाहते हैं कि व्यक्ति ही अपने पास ही औषधि भी दे।
2: आर्यपुत्र, अब हरदत्त की शिष्या का भी अभिनय देख लिया जाए।
1: जो देखना था सो देख लिया। क्यों नहीं, हम तो देखने को उतावले हो रहे हैं।
2: तो हरदत्त जी, अब आप अपनी शिष्या को बुलाइए और

0: तो हम लोगों के भोजन का समय हो गया। वैद्यों का कहना है कि समय पर भोजन ना करने से बड़ी हानि होती है।
1: तो हरदत्त जी, आपके शिष्या का अभिनय हम कल ही देख पाए।

0: आप जाकर विश्राम कीजिए।
1: ओह आर्यपुत्र, मैं भी जाकर आपके भोजन की व्यवस्था करती हूँ।
2: महाराज अब मुझे भी आज्ञा दीजिए, आपका कल्याण।
3: महाराज सुंदरता में ही नहीं कला में भी मालविका अद्वितीय है।
0: मित्र सच पूछो तो विधाता ने सहस सुंदरी मालविका को ललित कला का ज्ञान क्या दिया, मानो इसके हाथों में कामदेव का विष बुझा बाण ही दे दिया हो। अब तुम हमारी कुछ चिंता करो ना।
3: हाँ हाँ हाँ, इस समय तो महाराज आप मेरी चिंता कीजिए, भूख के कारण मेरा पेट हलवा की कढ़ाई की तरह जल रहा है।
0: मित्र शीघ्र कोई ऐसा उपाय करो कि हम मालविका से मिल सके।
3: महाराज कठिनाई तो ये है कि बादलों में छिपी चांदनी की तरह मालविका का दर्शन भी तो दूसरों के हाथ में है, और इधर आप हैं कि मांस विक्रेता की दुकान पर मंडराने वाले गिद्ध की तरह उस पर ललचाए हुए भी हैं और साथ ही डरते भी हैं। आपकी ये घबराहट।
0: हम घबराहट क्यों ना हो, वो तिरछी चितवन वाली हमारे हृदय में ऐसी बसी है कि रानीवास की तमाम रानियों से हमारा मन एकदम उचाट हो गया है। मित्र गौतम सोचा कोई उपाय?
3: उपाय उपाय हाँ, महारानी धारणी की दासी बकुला वलिका, उसी से सहायता लेनी होगी।
0: हम उसे मालामाल कर देंगे।
3: बकुला वलिका समझ गई ना, यदि तुम महाराज का ये काम कर दो तो तुम्हें मालामाल कर देंगे। हाँ
1: आरे गौतम, महाराज से आप निवेदन कर दीजिएगा कि मुझे ये काम सौंपकर उन्होंने मुझ पर बड़ी कृपा की है, पर बेचारी मालविका को महारानी धारणी ने वैसे ही अपनी कड़ी निगरानी में रखा हुआ है जैसे कोई सांप खजाने पर कुंडली मारे बैठा हो। फिर भी मैं जतन करूंगी। हाँ
4: अरे मालविका तुम आ गई।
5: दासी सेवा में उपस्थित है देवी, पांव में क्या बहुत कष्ट है?
4: ओ, इस दुष्ट गौतम के नटखट बन से मैं झूले से गिर पड़ी हूँ। दोनों पांव में ऐसी चोट आई है कि मैं उठकर चल फिर भी नहीं सकती। उधर मुझे अपने प्यारे सुनहले अशोक वृक्ष की चिंता है, आज वसंतोत्सव है और उसमें अभी तक फूल नहीं आए, उसे किसी सुंदरी का पदाघात अपेक्षित है। यदि मैं स्वस्थ होती तो ये काम मैं स्वयं ही करती, अब मैं ये काम तुम्हें सौंपती हूँ।
5: मेरा अहोभाग्य जो देवी ने मुझे इस योग्य समझा।
4: तो तुम बकुला वालिका के साथ प्रमद बन जाओ।
5: जो आज्ञा।
4: यदि तुम्हारे पदाघात से मेरे सुनहले अशोक में 5 दिनों के अंदर अंदर फूल आ गए तो मैं तुम्हें मुँह मांगा पुरस्कार दूंगी।
3: ये लीजिए महाराज, हम प्रमद वन में पहुंच गए। आ हा हा हा, तुम्हें देखे तो महाराज, प्रमद वन की लक्ष्मी ने आपको लुभाने के लिए ही युवतियों के 16 श्रृंगार को भी मात करने वाला ये वसंत के फूलों का श्रृंगार किया है।
0: हाँ हम देख रहे हैं वसंत की अनुपम शोभा। सुनो मित्र, इस मधुर कोकिल सर द्वारा वसंतृत हमसे मानो पूछ रही है, क्यों प्रेम की पीड़ा से नहीं पा रहे हो क्या? ये प्रेम की पीड़ा, हे कामदेव, कहां तो एक और जी को ढारस देने वाला तुम्हारा कोमल फूलों का धनुष, और कहां ये हृदय को भी मत डालने वाला प्रेम का रोग। ये ठीक ही कहा गया है कि जो जितने कोमल दिखाई देते हैं वे उतने ही कठोर होते हैं।
3: महाराज तुम्हें धीरे से काम लीजिए, आपका मनोरथ पूरा करने के लिए मैंने कुछ उपाय किया है।
0: हमारा तो किसी काम में जी नहीं लग रहा, आज ये पहाड़ सा दिन कैसे बीतेगा।
3: चलिए झूला गृह की ओर।
0: झूला गृह की ओर?
3: हाँ हाँ, अरे आप भूल गए, छोटी रानी इरावती ने अपनी दासी निपुणका द्वारा आज क्या संदेश भेजा था। रानी इरावती ने कहलाया था कि वे वसंत आगमन के उपलक्ष्य में

0: आज आपके साथ प्रमद वन के झूला गृह में झूला झूलना चाहती हैं और आपने उनकी प्रार्थना मान ली थी।
1: हाँ, मान तो ली थी, परंतु
2: अरे कैसी अच्छी

0: कि वृक्षों के झुरमुट के पीछे अवश्य ही कोई नदी होगी। वैसे ही ये जानकर हमारे व्याकुल मन को भी बड़ा धीरज मिला है कि मालविका पास ही है।
1: लीजिए, वो पुष्प विहीन अशोक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गई।
0: आहा, ये सीधे सादे वस्त्रों में पहले से भी अधिक सुंदर लग रही है। देखो मित्र, इसने इन्हीं गिने आभूषण पहने हुए हैं, गाल एकदम पीले हैं, लगता है जैसे वसंत से परिपक्व पत्तों वाली किसी कुंदलता में इन्हीं गिने फूल बचे रह गए हों।
1: तो इसे भी आपके जैसा ही प्रेम का रोग लग गया होगा।
0: मित्रों को ऐसा ही सुझा करता है। अरे मालविका अपने आप कुछ कह रही है, आओ मित्र हम लोग पास वाली उस लता के पीछे छिपकर सुने।
1: लेकिन महाराज, अब तो छोटी रानी इरावती भी आ रही होंगी।
0: मित्र, हाथी जब कमलिनी को देख लेता है तो उसे जल में छिपे घड़ियाल का ध्यान कहाँ रहता है। आओ उधर लता के पीछे।
2: दुर्लभ प्रिय है हृदय, छोड़ दे तू मिलने की आशा। अरे हृदय, तू ऐसे की चाह क्यों करता है जिस पर ना तो अपना कोई अधिकार है, ना जिस तक अपनी पहुंच ही है। मुझे यू सता कर तुझे क्या मिल रहा है?
0: प्रीत की कैसी उल्टी रीत है मित्र, इसने अभी तक अपने मन की व्याकुलता का कारण खोलकर तो बताया नहीं, अनुमान से भी इसके मन की ठीक ठीक था नहीं लग पा रही। हम कैसे समझ लें कि यह हमारे ही लिए व्याकुल हो रही है?
1: महाराज, आपके मन का संदेह अभी दूर हो जाता है। वो देखिए, वो हमारे सहायका बकला वलका उसके पास पहुंच गई।
0: अरे ये बकला वलका सार श्रृंगार की इतनी सामग्री और नूपुर काहे को लाई है?
1: अरे आप भूल गए महाराज कि महारानी धारिणी पांव की चोट के कारण चल फिर नहीं सकती, और इधर उनका प्यारा अशोक वृक्ष अभी फूला नहीं।
0: अच्छा, तो अशोक पर पदाघात करने का काम मालविका को सौंपा गया है और उसी के लिए मालविका का श्रृंगार किया जाएगा।
1: और नहीं तो क्या आपके लिए?

0: सखी मालविका, महारानी ने तुम्हें जो काम सौंपा है उसके लिए बस तुम ही योग्य थी। हाँ लाओ अपना पैर इधर बढ़ाओ, मैं उसमें महावर लगाकर ये नूपुर पहना दूं।
1: लो सखी, हृदय ये सम्मान पाकर व्यर्थ भूल मत जाना।
0: सखी तुम्हें आज मेरे पैरों का श्रृंगार करना पड़ रहा है, इसके लिए क्षमा करना।
1: वाह तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई पराई हो।
0: अरे तुम तो मुझे देह प्राण जैसी प्यारी हो।
1: हाँ
2: मित्र गौतम, प्रिया के पैर में महावर की जो रेखा खींची है वो ऐसी दिखती है मानो महादेव के क्रोध से जले कामदेव रूपी वृक्ष में नई खोपलें फूट आई हो।
3: और जैसे इसके चरण सुंदर है महाराज, वैसा ही इसे काम भी सौंपा गया है।
2: ये ठीक कहा तुमने, इस सुंदरी के सुंदर सुकुमार चरण या तो फूलने की इच्छा करने वाले इस अनफूले अशोक पर पड़ने योग्य हैं, या प्रेम में अपराध करके सिर झुकाने वाले प्रेमी के सिर पर पड़ने योग्य हैं।
3: तो समझ लीजिए महाराज, यदि आप ही अपराध करेंगे तो यही चरण आप पर भी पड़ेंगे।
2: मनचाहा भविष्य बताने वाले ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद सिर माथे।
0: अरे निपुणिका, आर्य पुत्र तो यहाँ झूला गृह में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे।
4: आर्य गौतम ने तो कहा था कि महाराज निश्चय यहाँ मिलेंगे। देवी ध्यान से देखिए, आपसे परिहास करने के विचार से महाराज यहीं कहीं छिपे बैठे होंगे, आइए उन्हें ढूंढे।
0: अरे मदिरा कुछ इतनी चढ़ गई है कि आर्य पुत्र को देखने की अब

0: बुलाहट होने पर भी पैर आगे नहीं बढ़ रहे।
1: तो आइए हम लोग उधर अशोक के तले प्रेमगुलता मंडप में बैठे।
0: अच्छा चल।
2: अरे ये क्या
1: स्वामिनी?
0: क्या क्या हुआ रेनी पुणिका?
1: हम चली थी आम की कोपल ढूंढने और काट लिया चींटियों ने।
0: अरे क्या कह रही है?
1: देवी तनिक उधर देखिए, उधर वहाँ अशोक की छाया में महारानी धारणी की दासी बकुलावलिका मालविका के पैर रंग रही है।
0: मालविका तो इधर आ नहीं सकती, आज इसे किसने इधर आने दिया?
1: मैं समझती हूँ कि पांव की चोट के कारण महारानी धारणी तो आ नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने स्वयं ही अनफूले अशोक पर पदाघात करने का काम मालविका को सौंप दिया होगा। नहीं तो महारानी क्या कभी अपने नूप पर उतार कर इन दासियों को दे सकती थी?
0: हाँ हो सकता है, परंतु मैं सोचती हूँ कि
1: तो क्या महाराज को अब ढूंढिएगा नहीं?
0: पता नहीं क्यों मेरे पांव आगे नहीं बढ़ रहे। आ यहाँ आड़ में हो जाए, कुछ संदेह सा हो गया है, संदेह का निराकरण तो होना ही चाहिए। मालविका का ये साथ श्रृंगार, इन्हीं बातों से तो मेरा जी जल जाता है।
3: क्यों सखी, पैरों पर ये महावरी रंगाई पसंद आई?
4: अपने पैरों की प्रशंसा करते मुझे लाज लगती है सखी। अच्छा सखी ये तो बताओ कि श्रृंगार की इतनी बढ़िया कला तुम्हें सिखाई किसने?
3: सच सच कह दूं
0: ये कला मैंने स्वयं महाराज से सीखी है।
4: सच? बड़े भाग्यवान हो, इतने पर भी तुम्हें तनिक भी घमंड नहीं।
3: पर मैंने जो कुछ सीखा है वैसी कला दिखलाने योग्य तुम्हारे सुंदर चरण पाकर आज तो मुझे अवश्य घमंड हो गया है। हाँ
4: लो तुम्हारा एक पैर तो रंगा गया।
3: आहा, ये पैर तो लाल कमल के समान खिला पड़ रहा है।
4: लाओ अपना दूसरा पैर तो।
3: मैं तो मनाती हूँ कि तुम सदा महाराज के अंक में रहो।
4: सखी ऐसी बेसिर पैर की बातें ना कहा करो।
3: जो कहना चाहिए वही तो कह रही हूँ। हाँ
4: मैं तुम्हें प्यारी हूँ, इसीलिए
3: मुझे ही नहीं तुम महाराज को भी प्यारी हो।
4: ये सब झूठ है, उनका तो मुझ पर तनिक भी प्रेम नहीं।
3: सयानों का कहना है कि प्रेम की परीक्षा प्रेम से ही होती है। हाँ
4: क्या ये सब अपने मन से ही करती जा रही हो?
3: ये प्रेम पगे शब्द स्वयं महाराज ने अपने मुंह से कहे हैं।
4: सच? पर सखी उधर महारानी का व्यवहार देखती हूँ तो रही से ही आशा भी मिट जाए।
3: अरे पगले, भौरों के डर से कोई कानों में आम्र मंजरी पहनना थोड़े ही छोड़ देता है। लो इस पैर में भी महावर लग गया, अब इन दोनों पैरों में नूपुर पहना दूं? लो अब उठकर इस अनफूले अशोक की इच्छा पूरी करो।
4: अरे क्या सोच रही हो? सखी यदि कभी मुझ पर कोई विपत्ति आए तो मेरा साथ ना छोड़ देना।
3: अरे मेरा तो नाम ही बकुलावली का है, मैं तो जितनी ही अधिक मसली जाऊंगी उतनी ही अधिक सुगंध दूंगी।
5: वाह बकुलावली का वाह! मित्र बकुलावली का ने बड़ी चतुराई से मालिका के मन की था लेकर हमारा प्रेम प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसके नाना करने पर भी उसे एकदम पक्का कर लिया। आज हमें विश्वास हो गया कि प्रेमियों के प्राण सचमुच ही दूतियों की मुट्ठी में रहते हैं।
1: महाराज उधर देखिए, मालविका ने अशोक के कोमल पत्तों का गुच्छा कान में लटका लिया और अब अपने बाएं सुंदर सजीले पांव से ये किया उसने अशोक पर प्रहार।
5: यदि इन चरणों की पूजा पाकर भी अशोक न फूला तो दोष इनके चरणों का नहीं ये अशोक ही निकम्मा समझा जाएगा। मित्र हम लोगों को किसी बहाने उनके पास चलना चाहिए।
6: तो आइए महाराज मैं कुछ खेल खेलता हूं। मालविका क्या हमारे प्यारे अशोक पर अपने पैर से प्रहार करके आपने कोई अच्छा काम किया?
3: आई गौतम महाराज भी
6: क्यों रही बकला वालिका, सब कुछ जानती हुए भी तुमने इन्हें ऐसी धृष्टता करने से रोका क्यों नहीं?
3: आर्य गौतम मैं आर्य इसमें धृष्टता जानबूझकर नहीं की थी, महारानी धारणी की आज्ञा का ही इसने पालन किया है, फिर भी हम दोनों महाराज के चरणों में गिर कर क्षमा याचना करती हैं।
5: अच्छा तो कोई बात नहीं, उठो मालविका हमारा हाथ पकड़ कर उठो।
6: ठीक है ठीक है ठीक है, महारानी की आज्ञा तो माननी ही चाहिए थी।
5: क्यों भद्री, तुम्हारा ये किसले कोमल बायां चरण अशोक वृक्ष पर लगने से दुखने लगा है? लजाओ नहीं विलासिनी, बोलो।
3: सखी महारानी को जाकर सूचना दी कि उनकी आज्ञा अनुसार हमने।
0: अरे पहले महाराज से जाने की अनुमति तो ले।
5: भद्री तुम जा सकती हो, परंतु इससे पहले हमारी एक बात सुननी होगी।
7: मालविका अग्निमित्र महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण अभी आप सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतरकार एवं निर्देशक चिरंजीत। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गीतकार सुधाकर शर्मा से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे सामने एक खास मेहमान बैठे हैं। आप हैं सुधाकर शर्मा। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधाकर जी।
3: मंदाकिनी जी नमस्कार। मेरे सभी उन श्रोताओं को जिन्होंने मेरे गानों को सुन सुन के मुझे विविध भारती के स्टूडियो तक पहुंचा।
2: सुधाकर जी, आपके हर गीत के पीछे एक कहानी छुपी हुई है और मुझे तो आप खुद एक बहुत बड़ी कहानी लग रहे हैं। कितनी सारी कहानियां, घटनाएं है ना, अनुभव आपकी जिंदगी से जुड़े हैं। हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं कि चुनरिया शब्द आपके लिए इतना लकी साबित हुआ और आपने इस चुनरिया पर लगभग 190 गाने लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी जो है आप टाइप्ड नहीं हुए, तो इस शब्द में ऐसी क्या खासियत थी कि हर बार आपने नए गीत नए रंग में लिख दिए?
3: देखिए, ये मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। हाँ। और हरियाणा में चुनरिया एक जेवर के रूप में मानी जाती है।
2: बिल्कुल।
3: तो मेरी माँ के पास भी एक चुनरिया थी। वो तीज त्योहारों पे ही सब ओढ़ा करती थी। तो मैंने पहले किसी लेडीज कपड़े का नाम सुना तो वो चुनरिया ही थी। तो मेरे जहन में वो एक बात थी। तो बड़ी ही ये लक और अनलक की बात ऐसी है कि जब ये पहली चुनरिया मेरी हिट हुई, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, उसके बाद एक फिल्म और मिली हमको और वो फिल्म थी हेलो ब्रदर। उसमें भी सलमान भाई थे।
2: हाँ हाँ।
3: तो उसमें भी हमको एक गाना लिखने के लिए मिला। तो मैंने वहां फिर एक चुनरिया लिख दी, सर की जो सर से धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई।
2: बिल्कुल।
3: वो उससे भी बड़ा साबित हुआ। हाँ। और मुझे लगा कि ये शब्द मेरे लिए लकी है क्योंकि दोनों गाने वही थे।
2: मतलब इस वाले गीत में कोई डिमांड नहीं थी प्रोड्यूसर डायरेक्टर
3: नहीं
2: थी कि चुनरिया पर ही
3: आपको गीत लिखा? मैंने खुद लिखा। उन्होंने कहा कुछ ऐसा ऐसा एक रोमांटिक चीज। मैंने हिमेश भाई को रिक्वेस्ट किया कि हिमेश भाई हमारी चुनरिया हिट हुई है तो एक चुनरिया और दे देते हैं, क्योंकि उसको तो 4-6 महीने हो गए और इसको बनने में साल भर लगेगा, तब तक वो ये आ जाएगी। और उन्होंने मेरी बात मान ली और ये हम किसी की चॉइस पे नहीं था, मेरा और हिमेश भाई का एक
2: आपस का
3: कॉल था और हमने ये गाना लिखा।

0: उसमें जो दूसरा गाना मैंने लिखा, जो आप टाइप की बात कर रहे हैं, टाइप्ड में इसलिए नहीं हुआ कि मैंने ऐसा नहीं सिर्फ चुनरिया ही लिखी, लगभग 5000 गाने मेरे रिलीज हैं तो 5000 चुनरिया तो नहीं है। और मैंने हर चुनरिया अलग स्टाइल में लिखी,
1: बिल्कुल
0: अलग मैंने किया। लक की ऐसी बात है कि जिस म्यूजिक डायरेक्टर के पास भी मैं गया, जिस प्रोड्यूसर के पास भी गया, उसने कहा यार एक चुनरिया मेरे लिए भी।
1: अच्छा,
0: ऑन डिमांड पे चुनरिया चलती थी। ये ऐसा हुआ कि एक बार शानुदा एक फिल्म के प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो मेरे को वो मिले दिल्ली में। दिल्ली में जब मिले तो मैंने कहा दादा आप प्रोड्यूसर बन रहे हो, म्यूजिक डायरेक्टर भी हो, तो मैं गाना तो यार मेरे से लिखवाओ, तू लिखेगा? हाँ क्यों नहीं लिखूंगा, कल घर पे आ जा। साथ में ही फ्लाइट में थे हम लोग।
1: हाँ?
0: तो वो शायद कलकत्ता जा रहे थे, मैं यहाँ आया और अगले दिन मैं उनके पास चला गया और हम लोगों ने 6 गाने लिख लिए। 6 गाने के बाद उन्होंने मेरे को बोला था सुबह आना पड़ेगा 7 बजे, क्योंकि 10 बजे मैं रिकॉर्डिंग में जाऊंगा। मैंने कहा सर मैं कभी 7:05 पे नहीं आऊंगा, लेकिन एक बात मैं बताऊं उस आदमी की, टाइम का क्या पंक्चुअल आदमी है। मैं घर पे बेल बजाई तो दरवाजा भाई नहीं खोला,
1: कुमार सानू
0: वो जगह ही रहता था।
1: अरे
0: मतलब, और फुल तैयार, बाजा रखो, हाँ बोल। हम लोग बैठ जाते थे, सारा जब काम हो गया तो मेरे को बोलता है, शायद भाभी ने बोला, वो अंदर से एक आवाज आई कि कंप्लीट हो गए गाने के। हाँ ना भाई साहब, इसमें आपका वो लक्की गाना तो है ही नहीं,
1: चुनरिया।
0: और नेक्स्ट डे दादा ने फिर वो उस फिल्म में भी चुनरिया मुझसे लिखवाई।
1: तो कौन सा गाना था?
0: रंगलीनी चुनरिया ऐसा एक गाना था। इत्तफाक से वो फिल्म में रिलीज नहीं हुआ, लेकिन वो अभी चलता रहता।
1: तो आपने अभी जैसा कि बताया हिमेश रेशमिया के साथ बहुत सारे गाने कंपोज किए और वो सब सुपर डुपर हिट हुए। इनसे पहले आप किन किन संगीतकारों की संगत में आए, उनसे भी प्रभावित हुए होंगे, उनके भी कुछ अनुभव आपसे जुड़े होंगे?
0: जी जी, मैंने पहले तो संगीत के बेताज बादशाह शंकर जयकिशन, तो शंकर जी के साथ जुड़ा और उनके साथ फिल्म की मैंने, फिर एक फिल्म मैंने की कल्याण जी आनंद जी के साथ, लेकिन वो सिटिंग तक ही रह गए गाने, वो बाहर नहीं आए। एक फिल्म मैंने नैयर साहब के साथ भी की।
1: अच्छा,
0: ये सारी फाइलें जो है ना वो सब वो है जो इसमें मेरे गाने रिलीज नहीं हुए, बट उन लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने उन लोगों के साथ जो काम किया, उनसे मैंने सीखा बहुत। भले ही वो गाने मेरे नहीं आए, लेकिन मैंने सीखा बहुत। और सीखने की हद यहां तक थी मेरे अंदर कि मैं हमेशा जो है ये सोचता था कि अगर मेरे पास कोई काम आ रहा है तो मैं किस म्यूजिक डायरेक्टर को लूं। जैसे एक फिल्म मेरे पास आई जिसमें मैं डायरेक्टर भी था, फिल्म थी सावन, तो मैंने कहा यार इसमें रविंदर जैन साहब को लेते हैं। तो मैं रविंदर जैन जी के पास गया। अब देखिए, दादू से बड़ा राइटर मैं मानता नहीं, वो म्यूजिक डायरेक्टर और राइटर का अजीब कॉम्बिनेशन है।
1: जी, जी।
0: तो मेरे को सब लोगों ने डराया कि भाई वो उनको लेगा तो वो खुद ही लिखेंगे। मैंने कहा भाई वो तो है, लेकिन चलो मैं बात करता हूँ। मैं दादू के पास गया और एक दिन तो मैं ऐसी बातचीत उनसे कर करा के चला आया, तो मेरे को उठते हुए पूछा उन्होंने, कह रहे क्या काम से आया था? मैंने कहा दादू एक पिक्चर मिली है मुझे, आपके साथ करना चाहता हूँ। और तो करना मैंने कब मना किया? मैंने कहा लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? गाने तू ही लिखेगा।
1: अरे क्या बात है।
0: हाँ अरे तो लिख लेना, कोई बात नहीं। हाँ? इसमें क्या है, कुछ नहीं लिख पाएगा तो मैं लिख दूंगा।
1: अरे वाह।
0: मैंने कहा दादा ठीक है, लेकिन गाना मैं लिखूंगा।
1: हाँ?
0: तो मैंने गाने लिखे और दादू ने म्यूजिक दिया। और ये उनका बहुत बड़ापन था, उनके साथ जो बैठ के मैंने काम किया। और मैं ईमानदारी से बोलता हूं कि मेरी राइटिंग में भी उन्होंने कई जगह ऐसे सजेशन दिए कि तू चाहे तो इसको ऐसा कर ले, नहीं चाहता है तो तेरा ठीक है। लेकिन मुझे उसमें एक और सम्मान देते हुए उन्होंने मुझे एक सीख दी कि अगर भाई कुछ सीनियर लोग अच्छी बात करते हैं तो उसको मानना चाहिए। उसके बाद मैंने दादू के साथ 3 पिक्चरें की, बाहर की पिक्चरें थी। मैं गीतकार था और प्रोड्यूसर को मेरे गाने पसंद आए तो बोले यार मैं रविंदर जैन से बात करूंगा, वो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। जैन साहब ने मेरा कोई गाना रिजेक्ट नहीं किया। और एक दिन मुझे फोन करके एक फिल्म के लिए बोले, अरे तेरा एक कागज उड़ता उड़ता इधर आ गया है। मैंने दादू एक फिल्म में मैंने एक गाना लिखा है प्रोड्यूसर के लिए, वही आया होगा आपके पास। बोले हाँ कल रिकॉर्डिंग है आ जाना।
1: अरे वाह,
0: तो इतने ग्रेट थे, वरना कहाँ रविंदर जैन और कहाँ सुधाकर शर्मा, क्यों मेरे गाने लेंगे वो। देखिए रविंदर जैन इतने महान थे कि मैं बताऊं कि उनके घर में जब हम जाते थे कभी भी बांद्रा, जब अगर हमको जाना है तो एक प्यारे भाई और एक रविंदर जैन, मतलब इनसे बिना मिले आ ही नहीं सकते। तो जैन साहब के घर जब भी हम लोग जाते थे तो जाते ही बोलेंगे, कह रहे वो शिमला वाले वो बने हैं चावल,
1: अच्छा,
0: और कश्मीर का राजमा है,
1: अरे
0: एक प्लेट में लाके दे। मतलब वो इस बात को जानते थे कि ये स्ट्रगलर हैं,
1: हाँ,
0: आए हैं,
1: भूख लगी होगी,
0: लगी होगी, और ये मांगेंगे नहीं। लेकिन बिना खाए उस रसोई से भाभी ने, जो उनकी मिसेज थी, वो और दादू हंसते हुए विदा करते थे।
1: बहुत
0: खूब। एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले मुझे एक गाना आप सुनाइए।
1: हाँ।
0: एक गाना है मेरा, फिल्म है शिखर।
1: गाना कौन सा है?
0: गाना है नीले नीले आसमां में तू है, जगजीत जी का गाया हुआ।

0: ये गाना आपने जो सुना
1: जी,
0: ये वो एक दौर का गाना है। इसका एक अजीब किस्सा है। इंडस्ट्री में मैं किसी भी लिरिक राइटर से मिलता था तो वो बोलता था, मैंने कहा क्या चल रहा है, बोले मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूँ।
1: अच्छा।
0: किसी म्यूजिक डायरेक्टर से पूछूं, मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूँ। और मैं यार सभी जॉन मैथ्यू साहब की पिक्चर लिख रहे हैं यार, तो यार क्या पिक्चर क्या होगी, अब कौन कर पाएगा वो मालूम नहीं। तो मुझे भी एक म्यूजिक डायरेक्टर, बरसात हो रही थी, सात बंगले में मिला, कि सर मेरे लिए एक मुखड़ा और अंतरा लिख देंगे आप। मैंने क्यों, तो मुझे जॉन मैथ्यू को सुनाना है।
1: अच्छा।
0: मैं बेचैन हो गया। हमने कहा भाई ये रास्ता सही है, मैं भी वहां तक जाना चाहता हूँ ना, लेकिन जरिया तो मिलना चाहिए कोई। तो मैंने वो गाना किया और मैं जॉन मैथ्यू साहब के साथ अटैच हो गया और वो पिक्चर मुझे मिली। ये गाना शिखर, सब गाने हो गए और जॉन साहब ने गाना पिक्चराइज कर लिया।
1: अच्छा।
0: म्यूजिक बीट पे कुछ भी बोल बाल के पिक्चर करके आ गए और मुझे बुलाया, कहा कि सुधाकर मैंने गाना शूट करके ले आया हूँ। बहुत ही म्यूजिकल आदमी है वो, और बहुत ही मतलब मैं समझता हूँ कि मेरा अपना आकलन ये है कि मेरी जिंदगी में नंबर वन राज कपूर साहब और बिल्कुल पैरेलल जॉन मैथ्यू साहब, जो उनकी सोच, उनकी डायरेक्शन, उनका सब। तो मैंने कहा सर आप शूट करके आ गए, अभी मैं क्या लिखूंगा। बोले यही तो होना चाहिए, आप तो बोल रहे थे मैं कुछ भी करता हूँ, मैं ये करता हूँ। और उससे पहले मेरी ट्यूनिंग इसलिए हो गई थी कि मेरे पांच गाने तो सिलेक्ट हो चुके थे। अब मैं सोचा ये गाना अगर मेरे हाथ से गया तो फंस जाऊंगा ना। तो मैंने कहा सर एक काम कर सकते हैं आप, गाना मुझे दिखाइए आप। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप देख लीजिए। तो एडिटर मुझे दिखाने लगा, तो मैंने कहा सर एक सजेशन है मेरा। हाँ बोलो। हमने कहा ये शॉट यहां से हटा दीजिए आप, और इसको यहां लगाइए और इसको यहां लगाइए
1: जी।
0: तो एडिटर बोला इससे क्या होगा। जॉन सर बोले नहीं ये जो कह रहे हैं पहले वो करो। देखिए इतने बड़े डायरेक्टर और मैं कुछ भी नहीं, देखिए उनका पेशेंस ये था, चलो मैं ऐसे कर लूंगा फिर देखता हूँ ये क्या करता है। और वो हो गया, और जैसे ही हुआ तो मैंने कहा कि ठीक है अभी गाना हो जाएगा। तो मैंने गाना लिखा, नीले नीले आसमां में तू है, धरती की हलचल में तू है। वो हलचल में क्या था कि एक किसान हल चला रहा है।
1: अच्छा। धरती की हलचल।
0: हलचल। और फर्स्ट शॉट उनका था, वो नीला आसमां दिख रहा था, तो धरती की हलचल ये थी है। फिर एक फूलों का था, नीले पीले फूलों में तू है। ऐसा मेरे को सीक्वेंस मिल गया मुखड़े का। और मैंने गाना लिख दिया और ये विजू शाह ने बना दिया।
1: अरे वाह। संगीतकार विजू
0: शाह। पहली बार मैं संगीतकार विजू शाह के साथ काम कर रहा था। तो विजू भाई भी बहुत खुश हो गए, बोले यार ये तो अच्छा बनेगा। अब अच्छा बनेगा वो बनते बनते ही बनेगा। जगजीत जी ने जब ये गाना गाया, अब जगजीत सिंह ऐसा गाना गाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन वो जॉन मैथ्यू साहब बोल रहे थे कि मेरे लिए बड़े लक्की हैं, क्योंकि उनकी सरफरोश की गजल उनकी सुपर डुपर हिट हुई थी। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग फिल्म लाइन में एक शब्द से बहुत डरते हैं, वो होता है लक्की। लकी शब्द किसी ने कह दिया तो हम चुप हो जाते हैं, अनलक्की कह दिया तो डर जाते हैं। तो लकी सब में है ना।
1: हाँ।
0: दावा नहीं कर सकते
1: जी,
0: अपन
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा नहीं वो मेरे लिए लकी है। मैंने ठीक है,
1: ओहो
0: मेरे लिए भी लकी हो गए। उनका इस तरह का गाना मतलब

0: मेरे जिंदगी में उस टाइम पे आए फरिश्ता बन के, जब मैं बहुत ही नर्वस था, बेकार था, और मुझे ये लग रहा था कि अब मुझे बंबई छोड़नी पड़ेगी।
1: अच्छा
0: और वो काम करने का अनुभव ऐसा लग रहा था कि मैं एडजस्ट कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि उनकी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है। मैं उनके पिताजी का दोस्त हूं, उसकी उम्र मेरे बच्चों जैसी है। लेकिन हम लोगों ने तय किया कि वो मुझे सर बोलेगा, मैं उसे सर बोलूंगा।

0: मेरे जिंदगी में उस टाइम पे आए फरिश्ता बन के, जब मैं बहुत ही नर्वस था, बेकार था, और मुझे ये लग रहा था कि अब मुझे बंबई छोड़नी पड़ेगी।
1: अच्छा
0: और वो काम करने का अनुभव ऐसा लग रहा था कि मैं एडजस्ट कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि उनकी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है। मैं उनके पिताजी का दोस्त हूं, उसकी उम्र मेरे बच्चों जैसी है। लेकिन हम लोगों ने तय किया कि वो मुझे सर बोलेगा, मैं उसे सर बोलूंगा। हो गई ये बर्दाश्त के आगे, बर्दाश्त
1: बिल्कुल
0: के कितने हैं
1: बहुत
0: तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: क्या बात है,
0: फिर
1: बहुत
0: मैंने
1: खूब
0: दूसरी लाइन की, अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने
1: एकदम
0: तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया और ये सुपर डुपर हिट गाना हुआ।
1: गजब सर, गजब गाना। क्या तो के साहब और सुनिधि
0: तो
1: चौहान ने गाया है,
0: बहुत
1: और
0: सुंदर
1: क्या म्यूजिक और क्या वर्डिंग से सर।
0: ये गाना, एक बार सुनाइए आप।
1: तो चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: गीत तो सुधाकर जी हम बहुत बार बजाते हैं और इस गीत को सुनने के बाद तो एक अलग ही ऊर्जा हम अनाउंसर्स में भी आ जाती है।
1: ये तो ये कभी कभी कोई गीत जो है ना ऐसे भी बनता है। तो हिमेश जी के साथ काम करने का मजा इसी में था, वो इतना इन्वॉल्व होते थे, वो ऐसा नहीं करते थे यार इसको लिख के ले आना, बैठ के गाना बनाते थे। हम एक ही सोफे पे रहते थे, इस कोने पे वो और इस कोने पे मैं। उनको कुछ लगता था तो बोलते थे यार ऐसा कुछ सर बताइए, इसको निभाइए, इसको ऐसा कीजिए। तो वो जो गाइडलाइन होती है ना, वो हिमेश जी के बाद मुझे मिस होता है, वो कि अब जो है ना वैसा माहौल नहीं है।
0: ये तो सर फीलिंग्स का एक मामला है, जहाँ एक संगीतकार और गीतकार बैठकर एक फीलिंग्स के साथ कुछ चीज को क्रिएट कर रहे हैं।
1: लेकिन नहीं ला पाते ना। अभी बहुत दिनों बाद ऐसा होता है, मेरे एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं सतीश देहरा, जो राजस्थान से ही हैं और काफी उन्होंने हिंदी में भी काम किया है। उनके साथ जब मेरी सिटिंग होती है तो बाकायदा रविंदर जैन की थेरी पे भी चलता है, वो उन्हीं का शागिर्द है, तो ढोलक भी होती है, वो बाजे पे होते हैं, मैं लिखता हूं। जब वो सिटिंग होती है तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। बट ऐसा भी काम करना पड़ता है, वो बोलते हैं व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, तो मैंने व्हाट्सएप पे तो आज तक कोई गाना नहीं भेजा। मैं बोलता हूं जब आपके पास टाइम हो आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आ जाऊंगा और मैं आपके साथ करूंगा।
0: कितनी बड़ी बात है कि एक गीतकार खुद कह रहा है कि मैं आ जाऊंगा,
1: वक्त दूंगा, तभी तो गाना होगा। अभी हम लोग निखिल कामत के साथ में बैठा था, तो उसमें अगम निगम साहब, वो
0: सोनू निगम जी के पिताजी
1: जी, वो गाना गा रहे हैं। तो बैठे बैठे हमने उनको भी फोन कर लिया, वो भी आ गए। तो आप यकीन कीजिए मुझे कोई शर्म नहीं है, वो करते करते एक सजेशन अगम साहब ने दे दिया कि यार यहाँ कुछ ऐसा होगा ना तो मजा आ जाएगा, हमने मान लिया। तो ये जो सिटिंगों का दौर है इसलिए वो गाने याद रहते हैं। अगर आप इस तरह से सिटिंग करेंगे कि आप मोबाइल पे भेज दीजिए मैं आप पे भेज दूंगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। हिमेश जी के साथ हमेशा मेरे को ये सब गोल्डन मिला कि हमने जितनी भी पिक्चरें की हमारी सब हिट हुई और हम लोग बैठ के गाना डिस्कस करते थे, हम लोग सजेशन भी देते थे, फिर हम सिंगर भी मिलके तय करते थे कौन गाएगा कौन नहीं गाएगा, वो गाएगा तो कैसा लगेगा, ये गाएगा तो कैसा लगेगा। और फिर हम लोग मतलब स्टूडियोज में भी साथ रहते थे, पूरा दिन हम साथ में रहते थे, कभी वो मुझे छोड़ते नहीं थे। बाद में मेरे पास गाड़ी भी आ गई थी तो बोलते थे इधर खड़ी कर दो, बैठो गाड़ी में, एक ही गाड़ी में मुझे लेके जाते थे, घर पे लाके छोड़ते थे। और मुझे इतना प्यार सम्मान दिया कि मैं बस वो मिस करता हूँ। काम तो चल रहा है, सबके चलते रहते हैं, उसमें कोई
0: बहुत बड़ी बात आपने बताई कि किस तरह से एक गीतकार और संगीतकार और गायक कलाकार उनके बीच में एक कॉम्बिनेशन, एक केमिस्ट्री होनी चाहिए, तब जाकर एक अच्छा गीत रचा जाता है। हम आपके बारे में जब पढ़ रहे थे तो पता चला कि आप जो अपने गीत लिखते नहीं है और वैसे ही बता देते हैं, मतलब कोई डायरी मेंटेन नहीं कर रखी है आपने, और आपसे कहा जाता है कि गीत लाइए, है ना, तो ऐसा कुछ आप नहीं करते हैं, ये कैसे होता है, अचानक गीत आप कैसे रच देते हैं?
1: ये मुझे भी नहीं पता, वो जो अचानक जो मेरे को सूझती है वो शायद ईश्वर का कोई देन है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं कभी ऐसा कागज पे लिख के, अनु मलिक साहब कितनी बार मुझे बोले यार तू कुछ मुखड़े दे मेरे को, शायद उनको लगता होगा कि मैं क्यों नहीं देता, लेकिन मैंने हर बार यही बोला भाई मेरे पास मुखड़े होते ही नहीं, आप कोई सिचुएशन बताओ मैं घर आ जाता हूँ मैं लिख दूंगा।
0: आपके पास कोई अपना रिकॉर्ड नहीं है गीतों का कि ये मेरे गीत हैं, डायरी के पन्ने पलट के अगर हम पढ़े आपके गीतों को?
1: नहीं नहीं, अभी मेरे बेटे ने कुछ कलेक्शन किया है, जो रिकॉर्ड हो गए वो हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो मैंने एक आपको बताया कि लक और अनलक, बस वो उसी पे चलता रहता। एक बार क्या हुआ, मैं मतलब फर्स्ट टाइम प्यारे भाई के साथ काम करने गया था, तो मेरी एक आदत है मैं हमेशा जहां भी जाता हूं तो ऐसे ही मैं बोलता हूं हाँ भाई लिखो, तो वो लिखो जैसा शब्द जो है ना मेरा बहुत फेमस है, तो या तो म्यूजिक डायरेक्टर लिख लेता है या मेरे साथ मेरा कोई असिस्टेंट होता है
0: वो लिख
1: उसको ले जाता हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ।
0: अच्छा।
1: और मैं अगर लिखता हूँ तो गाना रिकॉर्ड नहीं होता, तो मैं डर के मारे भी नहीं लिखता।
0: अच्छा।
1: हमने फायदा क्या इसका, तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। तो ऐसा है, और इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब वो जो चली आ रही है वो चली आ रही है। तो अभी मैं जब वहां पे गया तो उन्होंने एक ट्यून सुनाई तो मेरे मुंह से निकल गया लिखो, और मैं घबरा गया एकदम। मैंने कहा लिखोगे अभी तो बाहर ही निकाल देंगे। मैंने कहा सर वो मेरे पास कुछ पेन और कागज नहीं है, मैं सकपका गया। और वो इतने ग्रेट हैं, वो भी समझ गए कि इसने बोल दिया। मैंने कहा प्यारे भाई वो मैं लिखता नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा गोरख भाई इसका असिस्टेंट बन जा तू लिख ले। तो वो गाना गोरख भाई ने लिखा।
0: तो हाथों हाथ आप पंक्ति लिखवा देते हैं,
1: बिल्कुल लिखवा
0: देते। सिचुएशन बतानी पड़ती है ये एक्टर।
1: हाँ जो भी सिचुएशन बताएंगे
0: बहुत खूबसूरत
1: लिखूंगा। और फिर जब रिकॉर्डिंग होती है, मैं आज तक मैंने कोई रिकॉर्डिंग मिस नहीं की है।
0: हर रिकॉर्डिंग में
1: मैं रहता हूँ। और रिकॉर्डिंग होते वक्त भी मेरी चेंजिंग चालू रहती है। मुझे लगता है कि ये मैंने लिखा तो है लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। मैं क्रिटिक बन के अपना गाना सुनता हूँ रिकॉर्डिंग में। तो कई चीजें जो है ना उसमें मेरी इम्प्रूव हो जाती है।
0: तो कभी कोई ऐसा गीत आपने लिखा हो जो आपकी इच्छा के विपरीत रहा हो, आपकी इच्छा नहीं रही हो ऐसा गीत लिखने की, लेकिन प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, संगीतकार है, वो चाहते हो कि सुधाकर जी इस तरह का गीत लिख कर दें, ऐसी स्थिति कभी आई?
1: ऐसी स्थिति आई थी लेकिन मैंने वो छोड़ दी, लिखा नहीं हमने। हमने कहा आप किसी और से लिखवा लीजिए क्योंकि हम उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो फिर मुझे वो जब मैंने छोड़ा तो मुझे ये लगा कि अगर मैं ऐसे छोड़ूंगा तो लोग मुझे छोड़ देंगे। एक दो बार की तो ठीक है। फिर मैंने अपने आप को तैयार किया कि नहीं, अगर कोई ऐसा भी चाहता है तो उसकी बात को सुनते हुए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब मुझे कर लेना चाहिए। तो उसका जो है ना ये रहा कि जैसे कि मैंने एक पिक्चर में गीत लिखे, जैनियों की एक पिक्चर थी। अब उसमें जब मैं गीत लिख रहा था तो मुझे उस फिल्म में कहानी को गीत में पिरोना था। तो वो मुझे बताते थे कि भाई मेरे को ऐसा लाइन चाहिए, मेरे को ये लाइन ऐसी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, वो डिक्टेट करते थे बाकायदा जो डायरेक्टर थे हमारे।
0: अच्छा।
1: तो अब उसमें मैं बंध गया कि मुझे क्या करना है, बट मैंने वो भी लिखा और वो बहुत लोगों को पसंद किया। तो ऐसा होता तो है कि लोग जो है ना कुछ और लिखवाना चाहते हैं, लेकिन मोस्टली मैं ऐसे काम को छोड़ देता हूँ कि भाई अगर मेरे से नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा तो काम करके क्या फायदा होगा, कुछ भी फायदा नहीं है।
0: तो एक गीत सुन लिया जाए आपकी पसंद का?
1: जी मेरी पसंद का एक गीत आप मुझे सुना दीजिए। ये है आपका तेरी चुनरी बन लो लाखों की।

0: 5000 गाने लगभग लिखे और रिलीज भी हो गए, 1500-1600 एल्बम, और राजस्थानी में आपने 36 फिल्में लिखी हैं अब तक।
1: जी जी।
0: इसके अलावा हरियाणवी फिल्में लिख चुके हैं आप 4-5, भोजपुरी में भी आपने 3-4 फिल्में लिखी हैं। तो इतना काम आपने किया, जैसा कि आपने बताया भी था कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहा, मैंने फिल्में भी डायरेक्टर की और साथ में आपने भजन भी लिखे हैं। इतने सारे काम सुधाकर शर्मा कैसे कर लेते हैं और इनके अनुभव क्या रहे इतने सारे चीजों को एक साथ लेकर चलने के?
1: होता क्या है कि हम खुद एक मुसाफिर हैं और हमारी मंजिल जो है ना वो बड़ी दूर है, मतलब ठिकाने मिलते हैं, मंजिल नहीं मिलती। मंजिल तो आज भी नहीं मिली
0: जी।
1: लेकिन ये एक ऐसा विधा है कि इसमें आप जो है ना, जैसे कि जब राजस्थानी जो फिल्मों में मैंने गीत लिखे, मैं हरियाणे का हूं और राजस्थानी फिल्मों में मेरे सुपर डुपर हिट गाने हैं। वीना कैसेट कंपनी हमारे केसी मालू जी की है,
0: बिल्कुल,
1: वो अभी भी उनका मैं काम कर रहा हूँ, वो साल में मेरे से एक दो काम हमेशा कराते हैं और बहुत सम्मान भी देते हैं और बड़ा मजा आता है उनके साथ काम करने में। तो जो अलग अलग भाषाओं का रंग है वो अगर आपने समझ लिया तो भाव तो सब में एक ही होता है, भाव कोई अलग नहीं होता। रही भजन की बात, तो चूंकि मेरी फैमिली, मेरे पिताजी, जब से मैंने देखा है कि वो हमेशा रामायण पढ़ते हैं और पता नहीं कितनी बार वो पढ़ चुके हैं। भजन के बारे में मैं एक खास बात आपको बताऊं कि मेरे बेटे का एक म्यूजिक कंपनी है ओडली के नाम से।
0: ओडली,
1: ओडली
0: म्यूजिक, चुनरिया आई,
1: चुनरिया अंडरस्टूड है।
0: हाँ जी।
1: तो मैंने सोचा कि मैं अपनी इस कंपनी के लिए रामायण करूं, और ये रामायण करने का बीड़ा जब मैंने उठाया तो मैंने इसमें सिंगर चुने, अमित कुमार।
0: अरे वाह।
1: अब अमित कुमार को सिंगर जब मैंने लिया तो अमित कुमार खुद मेरे को बोले कि यार मेरे से तुम रामायण कैसे गवा रहे हो, मैं तो कोई भजन भी नहीं गाया तो मैं रामायण गाऊंगा कैसे। तो हमने कहा सर आप गा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, आप एक बार मन तो बनाओ। तो अमित जी, मतलब लगभग 3-4 महीने हम लोग ऐसे ही जब भी मिलते, कोई बात होती और वो होते, आखिर एक दिन तैयार हुए।
0: अच्छा।
1: और हम लोग घर पे गए तो मैंने एक ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर लिया जो 25 साल रविंद्र जैन के साथ जिसने काम किया, जिसने गाया भी बहुत है और राजस्थान का सुपरहिट है, सतीश देहरा नाम है उसका,
0: जिनका जिक्र भी आप
1: जिक्र
0: कर रहे
1: किया
0: थे।
1: तो मैंने कहा यार सतीश मेरे लिए इतना काम कर दो यार। उनको इसलिए लिया कि मैंने कहा तुम गाओ और उनको सिखाओ, वो आपको सुन के गाएंगे, सिर्फ ट्यून नहीं, सतीश जी पूरी पूरी चौपाई गा के उनको बताते हैं।
0: अच्छा।
1: कि भाई आप ऐसे गा दीजिए, और अमित जी पूरा उसको फॉलो कर लेते हैं। पहले पहले 2-3 सेशन हमारे मुश्किल गए और अभी तो जो है ना वो बिल्कुल, कभी हम सोचते भी है ना, जैसे सतीश जी कभी बार बोल देते हैं थोड़ा इसको चेंज कर सकते हैं, नहीं नहीं नहीं नहीं तुम एक बार और बताओ मैं यही गाऊंगा। और ये जब सिलसिला जब चालू हुआ तो सच्ची बात ये थी कि मैं बहुत डरा हुआ था। और मंदाकिनी जी मैं एक अपनी एक कमजोरी बताता हूं, मैं कभी किसी बात को छुपाता नहीं हूं, जो है वो है।
0: जी जी।
1: डरा हुआ मैं इसलिए था कि हाँ तो हो गई, गा भी रहे हैं, अब इनको मैं दूं क्या।
0: हाँ।
1: पैसा तो मैंने कहा कि मैं उनको प्यार से बाबा बोलता हूं कभी कभी, मैंने कहा बाबा बात ऐसी है, मजा तो आ रहा है, सब कुछ ठीक है, तो मैंने कहा वो मेरे पास थोड़ा सा एक डिसाइड हो जाए कि मैं क्या दे सकता हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं, मैं क्या दे सकता हूं। बोले मैं 1 रुपया नहीं लूंगा तेरे से। तो मेरे को यकीन नहीं हुआ कि अमित कुमार मेरे को बोल रहा है कि मैं 1 रुपया नहीं लूंगा।
0: अद्भुत,
1: ये बहुत ही अद्भुत। और ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साहब किशोर दा ने ऊपर से मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं नहीं हूं तो भी उस घर में तेरा सम्मान है। मैंने कह दिया और उन्होंने कहा कि मैं 1 रुपये नहीं लूंगा। अब मैंने कहा कि अगर ये 1 रुपया नहीं लेंगे तो ठीक है जो भी होगा। तो मैंने ना पहले सुंदरकांड शुरू किया, हमने कहा अगर इनका मूड ऑफ हो गया और ये बोले कि बस हो गया, क्योंकि पैसा नहीं है ना। सुंदरकांड होने के बाद उन्होंने खुद बोला अब क्या, हमने कहा अब शुरू से कर लेते हैं। और ऐसा करते करते वो 1.5 साल से रेगुलर गा रहे हैं और 3-4 साल और लगेंगे। ऐसा कोई सिंगर या कोई आदमी, मैं खुद भी किसी के लिए नहीं कर सकता कि एक आदमी रेगुलर 5-6 साल मेरे लिए काम करेगा और वो 1 पैसा नहीं लेगा।

0: जो मेरे पास होगा मैं करूंगा,
1: हाँ हाँ सही
0: लेकिन
1: बात
0: मेरी
1: है।
0: औकात ही क्या है, मैं
1: हाँ
0: क्या करूंगा, कुछ भी नहीं कर
1: उनकी
0: पाऊंगा।
1: महानता देखिए आप, अमित
0: लेकिन
1: कुमार
0: उनकी
1: साहब की।
0: ग्रेटनेस देखिए, हर महीने मुझे 6 से 7 वो डेट देते हैं, और जब भी वो आते हैं बड़े टाइम पे आते हैं, जब गाते गाते उनको लगता है कि अब मैं थक गया, तो वहीं से बोलते हैं जय श्री राम। मैंने कहा चलो जय श्री राम। लेकिन इतना लंबा इतना समय देना, और वो भी एक मतलब अब धीरे धीरे उनको इंटरेस्ट आ रहा है, ये बात अलग है। लेकिन जो कमर्शियल बातें जो आजकल लोगों में आ गई हैं,
1: जी
0: लेकिन अमित जी के लिए हैट्स ऑफ,
1: बहुत
0: और मैं ईश्वर से दुआ करता हूं
1: सैल्यूट
0: कि
1: है उन्हें।
0: बस वो खुश रहें, स्वस्थ रहें एकदम।
1: बिल्कुल
0: ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था कि ये जवाब आएगा। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा वो बोलेंगे जो देना है दे देना,
1: जी जी
0: लेकिन
1: जी
0: उन्होंने क्लियर किया
1: कि मैं कुछ नहीं लेने
0: मैं कुछ
1: वाला।
0: नहीं लेने वाला,
1: बहुत बड़ी बात सर,
0: तो ये बहुत बड़ी बात है।
1: उन्होंने आपकी उस भावना को समझा जिस भावना से आप वो कार्यक्रम कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरी तो आंखें नम हो गई हैं और मैं भावुक हो गई हूं।
0: नहीं
1: एक
0: नहीं
1: गाना पहले सुन लेते
0: एक
1: हैं।
0: गाना हम लोग सुनते हैं, मैं इस गाने की कहानी पे आऊंगा, आप गाना सुनाइए, तूने जिंदगी में आके जिंदगी जिंदगी बदल दी।

0: लिखूंगा उसकी आप ट्यून बनाना। तो हंसने लगे, बोले ठीक है लिखो। मैं, लेकिन आज मेरे को ये भी मत बोलना कि ये गाना कमर्शियल नहीं है, मैं कमर्शियल गाना नहीं लिखूंगा आज, जो मेरे दिल में आएगी वो लिखूंगा। कहने लगे ठीक है लिखो। हकीकत यह है कि जब मैं सोचा कि क्या लिखूं, तो मैंने कहा मैं अपने जैसा गाना नहीं लिखता,
1: मतलब जो सुधाकर जी की पहचान है वैसा गाना,
0: वैसा गाना नहीं लिखूंगा। क्या लिखूंगा फिर? तो मैंने गुलजार साहब को याद किया कि गुलजार साहब जैसा लिखना चाहिए, बट ये सोचने बात अलग है, लिखना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो मैंने एक गाना लिखा, उसमें मैंने जिंदगी को प्ले किया, तूने जिंदगी में आके जिंदगी जिंदगी बदल दी। ऐसा करते करते ये गाना जब लिख लिया मैंने, तो हिमेश भाई ने बना भी दिया। तो हिमेश भाई बोले कि सर लेकिन ये गाना आज की डेट में कौन लेगा? हमने कहा कुछ चीजें ऐसी भी होनी चाहिए, कोई ले ना ले, आप मेरे लिए बनाओ ना ये गाना। तो खैर गाना बन गया। अब ये सिचुएशन निकल गई हमराज में,
1: बहुत सुंदर
0: कि ऐसा एक गाना चाहिए। तो मैंने कहा हिमेश भाई इनको सुना दो ये गाना, और ये गाना हमारा लग गया। और ये गाने की जो असल कहानी है वो ये है कि ये गाना मुझे बेस्ट लिरिक राइटर के लिए फिल्म फेयर में नॉमिनेशन तक लेके गया। और हकीकत बात और मैं बताऊं कि ये गाना जिस राइटर को मैंने सोच के लिखा था, उस साल का अवार्ड उस राइटर को मिला, मुझे नहीं मिला। गुलजार साहब को उस साल का मिला। तो कोई बात नहीं, वो तो हमारे एक लीजेंड है भाई, लेकिन इस गाने की उपज उनकी वजह से हुई, हालांकि उन जैसा इसमें कुछ भी नहीं है।
1: नहीं, आपने उनको एक प्रेरणा स्रोत माना कि मैं उनको ध्यान में रखकर अपनी एक रचना गढ़ता।
0: वो हमेशा कुछ अलग ही करते हैं।
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: मैंने जिंदगी को प्ले करके सोचा कि मैं भी कुछ करूं।
1: बहुत सुंदर,
0: और वो हो गया।
1: सुधाकर जी, गीत लिखने का क्या तरीका बदला है जब सोशल मीडिया आ गया है? फिल्मी गानों के प्रति हमारा टेस्ट बदल गया है, खासतौर से युवा लोगों को। क्या ऐसे में गीतकार प्रभावित हुआ है?
0: बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर एक तलवार ये होती है कि कुछ ऐसा करो कि एकदम हुक लाइन पहले होनी चाहिए, उसके इर्द गिर्द गाना लिखा जाता है। और उस गाने को लिखने के चक्कर में गीतकार का अपना थॉट मर गया है कि वो जो कहना चाहता है कहाँ कहे फिर। और अभी तो लोग बोलते हैं AI से करा लेंगे, इससे करा लेंगे, उससे करा लेंगे, लोग करा भी रहे हैं।
1: अच्छा, लेकिन
0: बट AI जो है ना, आपको रास्ता दिखा सकता है, चल नहीं सकता, चलना आप ही को पड़ेगा। वो इमोशन नहीं ला पाएगा,
1: सबसे बड़ी बात
0: वो कहानी नहीं ला पाएगा। टेक्निकली वो साउंड कर देगा, लेकिन वैसा नहीं कर सकता वो।
1: तो एक गीतकार के सामने ये समस्या आ गई, क्योंकि युवा डायरेक्टर भी आ रहे हैं, फिल्मों के निर्माता नए नए आ रहे हैं, नए नए तरह की फिल्में, अच्छी फिल्में भी आ रही हैं, बहुत नए सब्जेक्ट के साथ आ रही हैं। ऐसे में गीतों का जो फ्लेवर है वो भी बदला है, तो गीतकार को भी इसके लिए अपने आप को बदलना होगा। आप क्या इस बदलाव के लिए तैयार रहते हैं हर समय?
0: मैं बिल्कुल तैयार हूं, तभी आज तक काम कर रहा हूं। बट यहां पे थोड़ा सा एक मेरा अड़चन ये आती है कि बदलाव के लिए तो हम तैयार हैं, फोर्ड पने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो बदलाव हम थोड़ा संभाल के कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप जो है ना उसमें कुछ भी इस तरह के वर्ड डाल दें कि वो वर्ड डालने से हिट हो जाएंगे और बाद में पब्लिक उसको जूते मारे, उसका कोई मतलब नहीं होता। अभी पुराने राइटरों ने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए, और उन्होंने वो बात भी कही जो आज के फोर्ड पने में कह रहे हैं, उन्होंने भी कहा
1: बहुत प्यारे तरीके,
0: लेकिन बड़े प्यार से कहा, एक अंदाज से कहा, क्लासिकल कहा। अब आप उस चीज को नंगा कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। ये सब चीजें जो है ना वो बहुत काउंट करती हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैंने जो किया है मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के सुन सकता हूँ, मेरी आने वाली पीढ़ी बोल सकती है कि मेरे दादा ने या मेरे नाना ने ये काम किया है।
1: हमारा आखिरी सवाल है आपसे, पांच पीढ़ियों के साथ आपने काम किया है और ये अनुभव तो आपने हमारे साथ साझा किया, जो नए गीतकार या युवा लड़के लड़कियां इस लाइन में आना चाहते हैं, बतौर गीतकार, बतौर गायक कलाकार या संगीतकार के तौर पर भी, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मंदाकिनी जी, ये आपने धर्म संकट में डाल दिया, क्योंकि मैं किसी को संदेश देने लायक की स्थिति में नहीं हूं, मैं तो खुद ही संदेश लेता रहता हूं। बट मैं उनको एक ही बात शेयर करूंगा, एक तो पेशेंस रखें, दूसरा वो अपने आप को इतना बुद्धिमान न समझें कि जो उन्होंने लिख दिया
1: वो कालजयी हो गया।
0: हाँ, वो ऐसा नहीं हो सकता है।
1: जी, जी।
0: दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं, रिलेशन
1: जी
0: देखिए, आज हिमेश जी तक मैं जो पहुंचा,

0: उनके फादर मेरे दोस्त थे, उनके साथ मैं काम करता था और उन्होंने हिमेश जी के साथ मुझे लगाया। तो ये जो पेशेंस है आपके पास वो ऐसे ही नहीं आ गया, उसको आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं सुनील कौशिक, वो मेरे को एक दिन बोले कि यार जब भी हम लोग मिलते हैं तू मेरे को नमस्ते करता है यार, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बोला भाई क्यों, मैं नमस्ते करता हूं तो अच्छा नहीं लगता तो नहीं करूंगा। बोले नहीं नहीं नहीं नहीं वो बात नहीं है, काम नहीं हो पाता यार। हमने सर काम जब किस्मत में होगा तब हो जाएगा, लेकिन संबंध तो बने होने चाहिए। तो लगभग मतलब 12-13 साल के बाद एक दिन उनका फोन आया, बोले यार एक गाना है आ जा। और छोटा भीम के लिए उन्होंने मुझसे गाने लिखवाए, और एक गाना ही नहीं, समझ लो कि मैंने फिर 3 साल तक कंटिन्यूस उनके साथ काम किया। तो जो मैंने 12-13 साल नमस्ते की हो गई ना वसूल,
1: बिल्कुल।
0: मैं एक बात जरूर और कहना चाहूंगा, होता क्या है नए लोगों में, जैसे कि मेरे को कोई नया म्यूजिक डायरेक्टर मिलता है तो मिलते ही वो उसकी तमन्ना होती है सर मेरे लिए कुछ काम बताइए ना। भाई जो मेरे साथ 20 साल से लगे हुए हैं उनके साथ काम करूं, तू तो अभी अभी मिला है,
1: बिल्कुल।
0: तुम पहले 2-4 साल मेरे साथ रहो तो सही। तो आप आइए काम कीजिए, हैव पेशेंस, काम आज नहीं कल नहीं परसों, साल 2 साल। मुझे पहली कामयाबी मैं अगर आपको बताऊं तो आप समझिए कि मैं अगर 73 को ना भी मानूं, आया गया ये हुआ वो हुआ, मेरा पहला गाना जो रिकॉर्ड हुआ वो रिकॉर्ड हुआ था मेरा 82 में।
1: जी 73 से 82 तक आपने इंतजार किया?
0: इंतजार किया, फिर 82 से 97 तक इंतजार किया।
1: दूसरे गाने का?
0: दूसरे गाने का नहीं, कोई गाना बाहर तो आए।
1: ओहो
0: 97 में गाना बाहर आया ओडली चुनरिया तेरे नाम की। इतना धीरज, आप डिप्रेशन में ना चले जाएं, आपका दिमाग खराब ना हो जाए, और आप ये ना सोच लें कि अब मेरा कुछ नहीं होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक दिन की बात है कि मैं घर से निकला था और मैं बहुत परेशान था। परेशान ये था कि मैं नवरात्रे रखता हूँ,
1: अच्छा,
0: तो कंजकें बिठाते हैं उसमें, और उसमें कोई 350-350 रुपए का खर्चा आता था। ये स्ट्रगल टाइम की एक बात बता रहा हूँ। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, व्रत तो रख लेता हूँ, कंजकें वंजकें नहीं बिठाएंगे, पैसा नहीं है। तो मैं घर से ऐसे ही चला ये सोच के कि एक दुकान वाला है मेरी पहचान का, उसको बोलूंगा भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं है तो तू मेरे को दे दे, तो देवी का काम है, अगर उसने दे दिया तो ठीक है। ऐसा चलते चलते मैं थक गया, एक स्टूडियो था क्लासिक, वहां पे चाय वाय आराम से मिलती है, वहां गया। मैं घुस रहा हूं और मेरे जेब में फोन बज रहा है, और मुझे फोन करता हुआ रिकॉर्डिस्ट बाहर आ रहा है। और बोलता है अरे यार मैं तेरे को भी फोन लगा रहा हूं तू उठा नहीं रहा। मैंने कहा यार मैं निकाल रहा हूं तब तक तू आ गया। वह जल्दी आ, अंदर आ, अंदर आ, अंदर गया। बोले साहब ये गुजरात से आए हैं, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं। बोले यार इनके कुछ गाने ठीक करने हैं, कुमार शानू गाएगा। ठीक कर देता हूँ। अब मैं वो गाने ठीक करने के चक्कर में बैठ गया, 3 गाने थे मैंने ठीक कर दिए। वो बोले सर आप रुक जाइए अभी दादा आ ही रहे हैं तो आप रहिए। तो दादा आ गए, तो दादा ने बोले तूने लिखा है? मैंने नहीं, मैंने लिखा नहीं है, मैंने थोड़ा सा सुधारा है, सब मस्त है। उन गाने गा दिए, चले गए। जब वो चले गए तो उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया, उसमें 3100 रुपए थे। तो ईश्वर पे भरोसा रखो और अपने काम पे भरोसा रखो,
1: बिल्कुल।
0: तो कुछ ना कुछ
1: बात करके बहुत संबल मिला है सुधाकर जी, और मुझे लगता है जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो भी इस बात से सबक सीखेंगे कि किसी भी काम को करने के पीछे कितनी मेहनत और मशक्कत होती है। अब आपके आने का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आपने अपना इतना अमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला, विविध भारती के स्टूडियो आप आए, अपनी बातें अपनी जिंदगी के वो पल वो लम्हात हमारे साथ आपने साझा किए हैं, इसके लिए आपका हम तहे दिल से सुधाकर जी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
0: धन्यवाद मैं आपका करता हूं और विविध भारती का करता हूं, जिसे हरियाणा के खेतों से निकाल के आपके स्टूडियो तक ले आया, क्योंकि मेरा माध्यम आकाशवाणी विविध भारती यही रहा है, यहीं से मेरी शुरुआत थी। और आज मैं उस मुकाम पे हूं कि जहां मैंने अपने उस्तादों को बड़े बड़ों के मैंने देखे, बाहर सब फोटो लगे हुए हैं, हसरत साहब का फोटो लगा, इतने सब ये कभी मेरे ख्वाबों में थे, और मैं खुशकिस्मत हूं कि इन सब से मैं मिला हूं।
1: जी, और हम खुशकिस्मत है कि हम आपसे मिले हैं, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए, जिनके गानों को हम बोलते हैं कि चलिए गीतकार हैं सुधाकर शर्मा, संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया, आज वो सुधाकर जी हमारे सामने बैठे हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं।

0: हैं, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पल है सुधाकर जी।
1: जी और श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: जी तो बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से हमारी ये महत्वपूर्ण बातचीत, और अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
2: ये था जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहायक भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, प्रस्तुत है युवा वर्ग को संबोधित कार्यक्रम युववाणी।

0: युवानी सुनने वाले सभी दोस्तों को बंटी का प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों आपके फेवरेट रेडियो शो युवानी में। उम्मीद है आपने ट्यून कर लिया होगा हमें अपने रेडियो सेट या फिर अपने स्मार्टफोन पे, जरिया जो कोई भी हो दोस्तों, ये जुड़ाव और ये लगाव बहुत ही मायने रखता है क्योंकि हमेशा हम जुड़े रहते हैं बेतार के तार से। तो आइए प्यारे साथियों, इस जुड़ाव इस लगाव को देते हैं फिर से एक नया आयाम, हर शाम की तरह इस शाम भी युवानी के साथ। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत से पहले आइए आपको बताते हैं कि क्या कुछ सहेज कर लाए हैं हम आज के युवावाणी के पिटारे में। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत होगी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की बातों के साथ। इसके अलावा गुलजारी लाल नंदा और सीताराम अल्लूरी सीताराम राजू जी की जयंती के उपलक्ष्य पर भी हम आपसे बातें करेंगे। इसके बाद दोस्तों वक्त होगा हमारे वीकली सेगमेंट गीतों भरी कहानी का, जिसमें आप सुनेंगे एक बेहतरीन कहानी, वो भी मधुर गीत संगीत के साथ। गीतों भरी कहानी के बाद डालेंगे एक नज़र समसामयिक गतिविधियों पर और फिर लेंगे आपसे विदा। तो बेहद खास होने वाला है आज का शो, यूं ही बने रहिएगा हमारे साथ। आइए दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं दिन विशेष की चर्चा की ओर। दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है, जिसे हर साल जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सहकारी समितियों की भूमिका को उजागर करना और सहकारिता के माध्यम से सामाजिक न्याय, समानता, आर्थिक विकास और विश्व शांति को बढ़ावा देना है। इस दिवस के इतिहास की बात करें तो इस दिवस को मनाने की शुरुआत सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन द्वारा 1923 में की गई थी और फिर बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 16 दिसंबर 1992 को एक प्रस्ताव पारित कर इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई। दोस्तों, यह दिन हमें इस बात की याद दिलाता है कि कैसे हम एकजुटता और लोकतांत्रिक स्वामित्व के जरिए समुदाय को आर्थिक और सामाजिक रूप से सबल कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के साथ साथ महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की जयंती भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनका जन्म आज ही के दिन यानी कि 4 जुलाई को 1897 में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले के पंडरंगी गांव में हुआ था। ब्रिटिशकालीन भारत में मद्रास वन अधिनियम 1882 लाया गया था, जिसकी वजह से आदिवासियों को उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। इसके विरोध में अल्लूरी सीताराम राजू ने आदिवासियों का नेतृत्व किया था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई और कई पुलिस थानों और ब्रिटिश ठिकानों पर सफल हमले किए। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पकड़ने के लिए भारी इनाम रखा था। 7 मई 1924 को अंग्रेजों ने उन्हें धोखे से पकड़ लिया और एक पेड़ से बांधकर गोली मार दी। उनके इस बलिदान को और देश के प्रति इतने गहरे समर्पण को आज भी याद किया जाता है। नमन है ऐसे वीर सपूत को। दोस्तों, अल्लूरी सीताराम राजू की जयंती के साथ साथ आज हम गुलजारी लाल नंदा की भी जयंती मना रहे हैं, जो एक प्रमुख राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और गांधीवादी नेता थे। उनका जन्म सियालकोट में हुआ। उन्होंने लाहौर, आगरा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त की, फिर बॉम्बे में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में अपना योगदान दिया। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वे जेल भी गए। वे 2 बार मुंबई विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने केंद्र सरकार में योजना मंत्री और श्रम मंत्री के रूप में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। राष्ट्र निर्माण और श्रम मुद्दों पर उनके अद्वितीय योगदान के लिए 1997 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत माता के ऐसे सच्चे सपूत को हमारा शत शत नमन। दोस्तों, हमें इन महान विभूतियों से प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि हमारा जीवन भी सार्थक हो सके। तो आज के दिन विशेष की चर्चा में इतना ही दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं अपने वीकली सेगमेंट गीतों भरी कहानी की तरफ, लेकिन इससे पहले लेते हैं छोटा सा विराम।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी,
3: फीस तो देखो।
4: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
4: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए का, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
1: आरबीआई कहता है
3: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
6: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
5: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
6: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
5: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
6: 8700001424।

उपाध्याय सर अपने केबिन में बैठे कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। वे अपने विभाग के हेड हैं और एक सफल उच्च अधिकारी भी हैं। मे आई कमिंग सर? सुनकर सर ने परमिशन दी। दरअसल मोंटी उनके विभाग का सबसे छोटा कर्मचारी है, उम्र में भी और पद के लिहाज से भी। फिर भी उनमें खूब पढ़ती है और निपती भी है। जमी और आसमा कभी मिलते हैं, हाँ क्यों नहीं, इनके मधुर रिश्ते को देखकर तो यही लगता है। मोंटी किसी कागजी काम के सिलसिले में सर से मिलने आया है। काम निबटने के बाद वे व्यक्तिगत और इमोशनल गॉसिप करने लगते हैं। कुछ ही दिनों में एक ऐसा राबता सा हो गया है इनमें, जैसे लगता है कि सदियों का संबंध हो। सर आज थोड़े अपसेट से थे, खुद ही बोल पड़े, देखो ना कुछ दिनों से परेशान हूँ, एक छोटा सा हादसा मेरे साथ हो चुका है, सो कुछ अच्छा नहीं लगता है, ड्यूटी है, जिम्मेदारियां हैं, सो आना पड़ता है। मोंटी ने उत्सुकता से पूछा, सब ठीक तो है सर? सर ने आश्वस्त करते हुए कहा, हाँ सब बढ़िया है। एक्चुअली मैंने एक तोता पाल रखा था, मिठू नाम था उसका, वो मेरे परिवार के अभिन्न अंग ही के तरह ही था। दो दिन पहले उड़कर कहीं चला गया, उसे हम पिंजरे में भी नहीं रखा करते थे। संग संग हंसता बोलता खाता पीता था वो, हर मानवोचित भाषा बोल लेता था। मेरे पुत्र समान, स्वीकार्य संतान की तरह वो मेरे साथ हमेशा रहता था। बच्चे और मेरी मिसेज का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। मोंटी ने सकुचाते हुए सर को धीरज बंधाने की कोशिश की और कहने लगा, अगर मीठू को भी आपके इतना ही लगाव होगा आपसे तो वो ज़रूर आएगा। हाँ अगर गलत हाथों में पड़ गया तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं, पंछियों का तो काम ही है उड़ना, उड़ान प्रिय और स्वच्छंदता पसंद होते हैं वो, पराधीनता उन्हें स्वीकार नहीं, परवाज ही उनकी अपनी पहचान है। पंछी, नदी, पवन को कोई भला क्या रोक पाया है?

मोंटी ड्यूटी के बाद अपने घर की ओर जाता है। मिठू वाला वाकया उसे अंदर से कुरेदता रहता है। वो फ्लैशबैक में चला जाता है। स्टूडेंट लाइफ और प्यारे प्यारे से दोस्त सब याद आने लगते हैं उसे। उन्हीं दोस्तों में से उर्मी और अभिषेक भी उसके सबसे अच्छे दोस्त थे और उनकी आपस की दोस्ती भी एक मिसाल सी थी। सारे कैंपस में उनकी दोस्ती की धमक थी और हमेशा चर्चा का विषय भी बनी रहती थी। प्रेम भरा आत्मीय रिश्ता था उनका। वैसे हर रिलेशनशिप में प्रेम ही तो जड़ में होता है। प्रेम बिना जीवन सूना सा लगने लगता है, नीरस हो जाता है और अर्थहीन मूल्यहीन हो जाता है जीवन। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, एक दिन अचानक उर्मी भी मीठू की तरह अपने अनजान सफ़र की उड़ान पर चली गई। अभिषेक को बताना भी मुनासिब नहीं समझा। वर्षों बाद उसे एक दोस्त से पता चला कि वो अभी दुबई में किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रही है। दरअसल उर्मी के अति महत्वाकांक्षी सपनों वाले पंख क्रियाशील और चेतना युक्त हो गए थे। रिश्तों की रंगत अब फीकी पड़ने लगी थी। उसे यह सब बकवास और टाइम पास सा लगने लगा था।

उसकी स्वार्थ बुद्धि उस पर इतनी हावी हो चुकी थी कि उसने इतने अच्छे जीवंत रिश्ते की बलि दे दी। वजह तक बताना मुनासिब नहीं समझा। वैसे उड़ने वाले कहाँ अपने उड़ने की वजह बताते हैं, आखिर ऐसे रिश्तों को क्या कहा जाए और ऐसे रिश्तों के बारे में भी क्या कहा जाए। ये प्रेम तो वास्तव में था ही नहीं, आसक्ति या मोह था। प्रेम किसी बंधन में बंधने का नाम नहीं होता। प्रेम तो उन्मुक्त है, स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, परिंदे की तरह है। इसमें गहरापन और विशालता है, समंदर की तरह। प्रेम आनंद है, जीवन है, ईश्वर है। अक्सर युवा अपने आकर्षण को प्रेम का नाम दे देते हैं। एक दूसरे की आदत सी उन्हें हो जाती है, उठने बैठने, मिलने जुलने, बातें मुलाकातें करने की, और इस आदत को ही एक अलग सा नाम दे दिया जाता है जो सर्वथा उचित नहीं है। अपने स्वार्थवश किसी भी चीज़ की अलग व्याख्या और परिभाषा सर्वथा गलत है। यह प्रेम नहीं, मोह है, खुद से ही द्रोह है। जहाँ मोह है वहाँ खोने का डर है। प्रेम में प्राप्ति है, अधिशेष कुछ भी नहीं। वैसे मोह के धागे भी कम नाजुक नहीं होते, प्रेम के धागों की ही तरह।

दूसरे दिन मोंटी फिर से काम पे जाता है। मेन गेट पर सबसे पहले उसे उपाध्याय सर ही दिखते हैं। मोंटी नमस्कार करता है, सर भी हंसकर अभिवादन स्वीकार करते हैं। अपने चिरपरिचित अंदाज में मोंटी से कहते हैं, केबिन में थोड़ा आइएगा, कुछ काम है आपसे। मोंटी ने तत्क्षण कहा, अभी आऊँ सर? हाँ हाँ क्यों नहीं, सर ने स्वीकारोक्ति दी। दोनों साथी केबिन में दाखिल हुए। सर ने अपने बैग से एक छोटा सा चॉकलेट निकालकर मोंटी को दिया और कहा, लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, आपके शब्दों, विचारों और क्रिएटिविटी के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। मेरे से जो अच्छा से अच्छा बन पड़ेगा करूँगा आपके लिए, निश्चिंत रहिए। मोंटी भी निःशब्द सा खड़ा रहा। अपेक्षा से ज़्यादा सम्मान और प्यार जो मिला था उसे, पहली बार इतना खास महसूस कराया था किसी ने उसे। आँखें पनी आ गई थीं और कंठ अवरुद्ध था। थैंक यू से ज़्यादा तो कुछ बोल ही नहीं पाया। देर तक रोमांचित और अभिभूत होता रहा और सोचता रहा अपनी खुशनसीबी के बारे में। बेहद खास दिन था उसके लिए। मीठू के बारे में मोंटी ने पूछा तो सर ने कहा, क्या कहूँ, अभी भी ड्यूटी से आ रहा था तो मैसेज रो रही थी, कह रही थी कहाँ चला गया मेरा मीठू, बड़ी मार्मिक परिस्थिति से गुजर रहा हूँ, अपने बच्चे की तरह मानता था उसे, देर रात भी मार्केट से फल लाकर दिया करता था। मीठू को फल बहुत पसंद था। आंखों के सामने से उसकी छवि हट ही नहीं रही है, कैसे अपनी व्यथा व्यक्त करूं, उसका बिछोह मैं और मेरा परिवार सही नहीं पा रहा है। वाकई कितना विशाल है सर का हृदय और कितनी आत्मीयता है उनकी फैमिली में, जो एक परिंदे की जुदाई नहीं सह पा रहा है। सच में किसी का साथ छूट जाना अपने आप में एक त्रासदी होती है।

तो ये था दोस्तों आज के गीतों भरी कहानी का सफ़र। उम्मीद है आपने अवश्य पसंद किया होगा। आइए अब चलते चलते करंट अफेयर्स पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। स्वास्थ्य और यात्रा संबंधी सुविधाओं के लिए सरकार ने एयर सुविधा 2.0 पोर्टल संचालित किया है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NAFED द्वारा nafex.in नामक डिजिटल नीलामी पोर्टल की शुरुआत की गई है। और स्पोर्ट्स जगत की ओर चलें तो BCCI ने सूर्य कुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर को भारत की T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। तो आज के लिए करंट अफेयर्स सेगमेंट में बस इतना ही दोस्तों। अभी स्टूडियो की घड़ी भी अब कर रही है इशारा, अभी शो को यहीं पे रैप अप करने का वक्त हो गया है। खैर कोई बात नहीं, मिलेंगे फिर इसी वक्त इसी प्रोग्राम इसी फ्रीक्वेंसी पर। आप अपना ख्याल रखिए और अपने सपनों का भी। यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए युवाओं की वाणी युवा वाणी। अब दीजिए अपने दोस्त बंटी को इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप युवाओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर पर। शाम के 5:30 हो चुके हैं, वक्त है फिल्म संगीत का।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है?
0: पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: इस अंतराल से पूर्व आपने विशाल मिश्रा को सुना, फिल्म थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ। और आइए एक बार फिर से सुनते हैं इनको फिल्म क्रैक में।

0: सुनते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं। हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
4: आकाशवाणी भागलपुर से अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे हैं। कार्यक्रम को जारी रखते हुए ये सुनते हैं फिल्म वनवास का गीत। आवाजें सोनू निगम और श्रेया घोषाल की हैं।

आकाशवाणी भागलपुर से अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे और अब कार्यक्रम विवरण में सुनिए हमारे केंद्र से आज और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सबसे पहले आज के शेष कार्यक्रम। आज की सभा में अब से थोड़ी देर बाद शाम 6 बजे ग्रामीण बंधुओं का कार्यक्रम होगा ग्राम जगत खेती गृहस्थी। इसमें आज हम श्रोताओं को डॉक्टर सुनील चौधरी की वार्ता सुनवाएंगे वन्य जीवों का संरक्षण। साथ ही किसान भाई GS पवार की वार्ता भी सुनेंगे धान की सघनीकरण श्रीविधि। शाम 7:10 पर लोकगीतों का कार्यक्रम होगा, कलाकार होंगे जयनारायण शर्मा। 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में आज हम आपको प्रतिभा सिन्हा के गाए कुछ गीत और भजन सुनवाएंगे। रात्रि 8 बजे प्रायोजित कार्यक्रम सुन सकते हैं आप उड़ान। 8:15 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। 9:30 पर साहित्य भारती कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और रात्रि 10 बजे से आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम जिसे हम दिल्ली केंद्र से ही रिले करेंगे।

श्रोताओं, ये तो थे आज के शेष कार्यक्रम और अब एक नज़र कल के कार्यक्रमों पर। कल की सभा सुबह 5:55 पर खेत खलियान कार्यक्रम के साथ आरंभ होगी। 6:05 पर आप सुनते हैं चिंतन मनन। 6:10 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा वंदना। 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में कल हम आपको एक भेंटवार्ता सुनवाएंगे। विषय होगा किडनी फेलियोर, कारण, लक्षण और बचाव। भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर राजीव कुमार सिन्हा और इनसे बातचीत करेंगे सचिन कुमार।

सुबह 7 बजे से लेकर 7:55 तक आप सुनते हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इस कार्यक्रम में कल आप शालिनी कुमारी के गाए कुछ गीत और भजन सुनेंगे, साथ ही साथ आप सुनेंगे अमरेंद्र कुमार पांडे की वार्ता मानव जीवन और वन। 9:30 पर बच्चों के लिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम होगा बाल मंजूषा।

10:30 पर लोकगीतों के कार्यक्रम में कल के कलाकार होंगे नवल किशोर पंडित और साथी। 11 बजे फिल्म संगीत का आनंद ले सकते हैं आप। 12 बजे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम होगा विज्ञान वाणी। 12:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल हम आपको बलराम दास मिश्र का तबला वादन सुनवाएंगे। 1 बजे लोकरंग कार्यक्रम में रेणु भारतीय के गाए कुछ लोकगीत आप सुन सकते हैं। 1:30 पर अंग साहित्यिक पत्रिका अंगिका साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम होगा अंग दर्पण। 2:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा जो श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित होगा। 5:00 युवा श्रोताओं का कार्यक्रम लेकर आएंगे युववाणी। 6:00 ग्रामीण बंधुओं का कार्यक्रम होगा ग्राम जगत। और 6:30 से आप सुनेंगे ICC महिला T20 विश्व कप 2026 के तहत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे फाइनल मैच की क्रिकेट कमेंट्री जो मैच की समाप्ति तक जारी रहेगी। कार्यक्रम विवरण में अभी आप हमारे केंद्र से आज और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 6:00 को हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण बंधुओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी।

0: स्वागत है श्रोताओं आपका इस प्यारे कार्यक्रम में। सबको किशन का नमस्कार
1: और सबका गैरू के भी नमस्कार और अपने के भी नमस्कार किशन भाई।
0: नमस्कार गैरू भाई, सुनाइए और सब क्या हाल समाचार है।
1: सब हालचाल बढ़िया छे, खेती बाड़ी भी बढ़िया चली रहलो छे। अब हिन्ना मथी सोचलियो कि एकटा छोटो मोटो बिजनेस करियो, व्यापार करियो, कुछ कुछ सामान के बेचे उचे के दुकान दौरी एकटा लगाए सोचले छे।
0: जी जी,
1: कुछ सलाह दहो किशन भाई।
0: गैरू भाई, और कहते हैं ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, ये तो सुने ही होंगे हमारे श्रोता भी, इस बात से भली बातें अवगत हैं। तो कहते हैं सब चार लोग मिलते हैं ना तो कोई काम कठिन भी होता है तो वो सरल हो जाता है। वैसे मुश्किल काम को भी आसान करने के लिए सरकार के द्वारा या हमारे बीच ऐसे बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं, जैसे नाबार्ड मान लीजिए, तो ये लोगों को जोड़ करके वो सहयोग करते हैं ताकि जिस भी दिशा में आप काम करना चाहते हैं उसमें आपको बढ़ोतरी हो। और शायद इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए या वैश्विक स्तर पर, विश्व के स्तर पर दुनिया के देशों ने इस बात को महसूस किया, यही कारण है कि आप हम देखते हैं, प्रतिदिन समाचारों में पढ़ते हैं, अपने प्रसारण रेडियो के माध्यम से भी सुनते हैं, अमुक देशों के बीच उनके साथ ऐसा संबंध हुआ, कभी सांस्कृतिक संबंध बनते हैं, कभी औद्योगिक संबंध बनते हैं, कभी कला संस्कृति के संबंध बनते हैं। उद्देश्य यही है सहकारिता को, सबका साथ लेकर के काम करने की आवश्यकता है, इससे निश्चित रूप से बहुत प्रगति होती है और तरक्की भी होती
1: जी
0: है।
1: जी जी, बिल्कुल सही कह लिया अपने किशन भाई। और आइ खना सहकारिता दिवस भी छिके, जे हरेक वर्ष जे छे जुलाई के पहलो शनिवार के मनेलो जाय छे। और वह अपने जे इतना बढ़िया से उद्देश्य पूरा विश्व के स्तर पर, वैश्विक स्तर पर बतेलिए, वह ओकरो मेन जे छे कि बात वह छिके कि एक दूसरा के बीच जे छे सामाजिक आर्थिक योगदान के सतत विकास करते हुए जे छे ओकरो भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाना। और भारत में भी सहकारिता आंदोलन के विशेष महत्व छे, चाहे कृषि के क्षेत्र में हुए, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में हुए, बैंकिंग के क्षेत्र में हुए, या उपभोक्ता के श्रेणी का सेवा दे के क्षेत्रों में, गाँवों से में जे छे कि कोई व्यापार हुए तो कई सहकारी समिति बनेलो जाय छे, जेकरा के माध्यम से रोजगार, वित्तीय सहायता और बेहतर आजीविका उपलब्ध करावे के प्रयास करलो जाय छे।
0: बच्चों के कल्याण के लिए भी देखिए, महिलाओं के उत्थान के लिए भी देखिए, लघु कुटीर उद्योग की बात करें, या चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और जैसा कि विदित है कि आज भी हमारी अधिकांश जनता गाँव में रहती है, तो कहते हैं सबका साथ, हमारे प्रधानमंत्री का भी ये उद्देश्य है, नारा भी है सबका साथ सबका विकास, शायद उन्होंने भी इस बात की आवश्यकता को महसूस किया तो इस दिशा में ये कार्यरत हैं, सतत प्रयत्नशील हैं। तो हमें आशा की जानी चाहिए, हमें उस दिशा में प्रयास भी करना चाहिए कि मिलजुल के काम कीजिए, निश्चित रूप का सबसे स्पष्ट है कि सबका साथ मिलेगा तो विकास होगा ही।
1: हाँ बिल्कुल, जब सबके सहयोग होय छे और समानता के भाव एक दूसरा में रहे छे तो सामूहिक विकास होय छे और सामूहिक विकास का बढ़ावा भी मिले छे। किसान हुए, मजदूर हुए, महिला हुए और छोटो उद्यमी जे छे, जे छोटो छोटो रोजगार करे छे, वो सशक्त बने छे और स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक विकास के प्रोत्साहन दै में जे सहकारी समिति होय छे किशन भाई, ओकरो बड्डी योगदान छे।
0: बिल्कुल,
1: समावेशी आरो सतत विकास के लक्ष्य के आगू बढ़ावे में मदद भी करे छे। भारत में सहकारिता के क्षेत्र में मजबूत करे के लेली जे छे कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के स्थापना वर्ष 2021 में होले और तहिया से लगातार जे छे कि गांव-गांव में एकदम छोटो-छोटो जगह पर, मोहल्ला में सहकारी समिति बने छे। आरो सहकारिता खाली एक व्यवस्था नहीं छिके बल्कि एक दूसरा का मिली जुली का आगू बढ़ावे के एक प्रकार से संस्कृति छिके, जेकरो बात अभी आपने कहलिए कि पूरा दुनिया के जे जुड़े छे, आरो चाहे वो कला संस्कृति के क्षेत्र में हुआ, उद्योग क्षेत्र में हुआ, राजनीति के क्षेत्र में हुआ, जौन भी क्षेत्र में हुआ, तो हो एक संबंध ही तो छिके। और वह संबंध जब निचला स्तर पर बने छे तो पूरा देश एक साथ तरक्की करे छे, सहयोग विश्वास आरो एकता के साथ देश में समृद्धि आवे छे।
0: एक अच्छी बात है ना गैरू भाई कि चार आदमी का सहयोग होता है तो कठिन काम भी बड़े सरल हो जाते हैं। चार आदमी कमजोर है, एक मजबूत है, था अभी कमजोर हो गए।
1: कहे छे गांव में दसों के लाठी एकक बोझ।
0: बिल्कुल
1: जी,
0: तो बातें हम लोग अपने कार्यक्रम में और भी बातों की चर्चा करेंगे, लेकिन अभी बढ़िया सा देवी गीत से कार्यक्रम अपना शुरू कर।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: बहुत ही बढ़िया जे छै देवी गीत सुनलिए किशन भाई, और अरविंद कुमार यादव जी के आवाज़ में बहुत सुंदर लगले, और इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद दै छिए।
1: गैरू भाई हमारे बीच प्रकृति में सहयोग की बात कर रहे थे कार्यक्रम के शुरू में, तो सहयोग आप यहाँ भी देख सकते हैं, जो प्राकृतिक संतुलन है प्रकृति में, संतुलन बनाए रखने के लिए ये पहाड़, ये झरने, ये जंगल, जंगलों में वन्य जीव का होना भी बड़े आवश्यक हैं। कभी कभी जाने अनजाने में कहीं पर सांप शुशुंदर निकल जाते, फटाफट आदमी लाठी भाला क्या क्या निकाल के तुरंत चाहते हैं मार दें, लेकिन मारना नहीं चाहिए। आप जो वन्य अधिकारी हैं यहाँ पर वन विभाग के हैं, वहाँ पर हालांकि टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध होना चाहिए कभी कभी, मैं हमारे पास भी हैं, कभी प्रसारण में हम बताएंगे, तो आप शीघ्र आप उनको सूचित करें और आप उनको बुलाइए, रेस्क्यू करके ले जाएंगे।
0: बहुत बढ़िया बात बतेलो किशन भाई, एकदम हमारा घरों में निकली गलो रहो बड़का गहुमनो सांप,
1: जी जी
0: बहुत बड़ो रहे, और घुसी गले दिवाली में तब जे छौ कि भागलपुर में जे सुंदर वन छै तो वहां छै वन विभाग पूरा पूरा, तो डीएफओ साहब जे वन विभाग के अधिकारी छै हुनको नंबर पर हम फोन कर लिए, फोन कर लिए तो आधो घंटा के अंदर अंदर वन विभाग के अधिकारी आरु जे सांप पकड़े वाला सब रहे हौसनी अइले आरु पकड़ी के लेके गेले। यानी कि अपने जे बात बोली रहलो छे कि एकदम लाठी भाला निकाली के एकदम चोट है तैयार हो जाए छे, से हौ नहीं करे के चाहिए, ओकरो ये मतलब प्रकृति में एक महत्वपूर्ण योगदान,
1: बिल्कुल वो भी हमारे सहयोगी हैं, हमें ऐसा महसूस करना चाहिए।
0: जी तो यही विषय पर कि वन्य जीवों के केना के जे छै संरक्षण करना छै, ओकरो केना सुरक्षा करना छै, यही विषय पर एक वार्ता के माध्यम से जानकारी प्राप्त करै छियै एकरो वार्ताकार के डॉक्टर सुनील चौधरी जी।
2: वन्य प्राणियों का संरक्षण। वन एवं वन्य प्राणी हमारी एक प्रमुख राष्ट्रीय धरोहर है। वन्य प्राणी वनों के अलंकरण हैं, यहाँ तक भी कहा जा सकता है कि वन्य प्राणी वनों के आभूषण हैं। यही कारण है कि वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए सरकार अत्यधिक जागरूक है। भारत के वन्य प्राणियों के तेजी से विलुप्त होने की स्थिति को देखते हुए सरकार ने वर्ष 1952 में भारतीय वन्य प्राणी परिषद का गठन किया। इस परिषद ने वन्य प्राणी संरक्षण की दिशा में प्रथम प्रयास करते हुए 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर

के मध्य प्रतिवर्ष वन्य प्राणी सप्ताह मनाने का निर्णय लिया। इसीलिए वन्य प्राणियों के संरक्षण के प्रति पूरे भारतीय जनमानस का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच वन्य प्राणी सप्ताह मनाते हैं। भारत में पर्यावरण की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है। वैदिक साहित्य में आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व मानव की सुख समृद्धि के साथ प्रकृति के अंग, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, वायु, वनस्पतियों और वृक्षों की समृद्धि और शुद्धता की कामना व्यक्त की गई है। मानव सभ्यता के विकास की यात्रा वास्तव में वनस्पतियों एवं वनों के साथ उसके संबंधों की यात्रा है। वेद की यह ऋचा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। ओम द्यौ शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति शांतिरेधि शांति। यदि सच कहा जाए तो वेद के इस मंत्र में पर्यावरण की अवधारणा के बीज छिपे हैं, जिसमें आकाश अर्थात वायुमंडल, पृथ्वी अर्थात स्थल मंडल के साथ साथ औषधियों एवं वनस्पतियों की शांति की कामना की गई है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में एक हड़प्पा की सभ्यता में भी 5000 से 3500 ईस्वी पूर्व की मुहरों में पीपल की पत्तियों के छापे प्राप्त होते हैं। इतिहास साक्षी है कि अशोक महान ने अपने सभी शिलालेखों पर जीवों पर दया करने की बात लिखवाई थी। धार्मिक सुरक्षा के कवच ने वन्य जीवों को लंबे समय तक बचाए रखा। भारत जैव संपदा की दृष्टि से समृद्धतम देशों में से एक है। विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों के लगभग 40% जीव जंतु भारत में हैं। देश की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ अनेक प्रकार के पारितंत्र तथा उनमें सम्मिलित पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं। यहाँ लगभग 50,000 प्रकार के पेड़ पौधे एवं 90,000 प्रकार की जंतु प्रजातियाँ पाई जाती हैं। उत्तर में जहाँ हिमालय की ऊंची चोटियाँ हैं, वहीं दक्षिण में नम दलदलीय मैदान, पूर्व में ऊंचे प्रदेश तथा पश्चिम में फैला प्राणी जगत तथा वनस्पति जगत अत्यंत समृद्ध है। यहाँ 850 प्रकार के स्तनधारी, 2000 प्रकार के पक्षी, 450 प्रकार के सरीसृप, 2500 प्रकार की मछलियाँ, 50,000 प्लस प्रकार के कीट एवं 4,000 प्रकार के सीप शंख समुदाय के जंतु पाए जाते हैं। इन प्रजातियों में से कुछ अत्यंत दुर्लभ हैं, जो दूसरे स्थानों में नहीं पाई जाती हैं। बांस, आम, केला, बैगन, कुष्मांड कुल की सब्जियाँ, मूंग, उर्द, अरहर, धान, काली मिर्च, इलायची, अदरक, हल्दी, गन्ना, जूट जैसी व्यावसायिक फसलों के साथ साथ लगभग 2500 औषधीय महत्व की पादप प्रजातियां हैं, जिनका मूल स्थान भारत है। इन सभी पौधों की कई व्यावसायिक एवं जंगली प्रजातियां हैं, जिनमें अलग अलग जीन की उपस्थिति से अलग अलग तरह के गुण पाए जाते हैं। यह जीन पूल हमारे राष्ट्र की धरोहर है। अनूप मृग, स्वाम्प डियर, चौसिंगा, फोर हॉर्न एंटीलोप, कस्तूरी मृग, एक सींग वाला गैंडा, सांभर, गौड़ आदि जंतु केवल भारत में ही उपलब्ध हैं। लेकिन आज स्थिति बदली हुई नजर आती है। दुर्लभ एवं बहुमूल्य पौधों का दोहन कर एवं जंतुओं को मारकर उनके उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर उन्हें बुरी तरह से नष्ट किया जा रहा है। भारत के जंगलों में पाया जाने वाला चीता विलुप्त हो चुका है तथा बाघ, शेर, तेंदुआ आदि संकटग्रस्त श्रेणी में आ गए हैं। इसी प्रकार लाल पांडा, भालू, उड़न गिलहरी, सींग वाले गैंडे, जंगली गधे, जंगली सुअर भी संकटग्रस्त विलुप्त प्राय प्राणियों की सूची में हैं। इन प्राणियों की खाल, हड्डियां, दांत आदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचे जाते हैं। कस्तूरी मृग को अपने सुगंधित कस्तूरी की ऊंची कीमतों के कारण मनुष्य की नृशंसता का शिकार बनना पड़ता है। एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष 20,000 कस्तूरी मृग अवैध शिकार द्वारा मार डाले जाते हैं। विशालकाय स्थलीय स्तनधारियों में हाथी की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। हाथी दांत के व्यापार के लिए अवैध रूप से प्रतिवर्ष 500 हाथी मारे जाते हैं। गैंडा की खाल और सींग का भी अवैध व्यापार किया जा रहा है। गंगा नदी के महत्वपूर्ण जीव डॉल्फिन, घड़ियाल, ऊदबिलाव एवं कछुए भी आज

खतरे में है। डॉल्फिन या सोंस का शिकार मुख्यतः सोंस के तेल के लिए किया जाता है और सोंस तेल का व्यवहार मछली चारा बनाने के लिए और औषधीय गुणों के लिए किया जाता है। हमारे अपने अंग जनपद क्षेत्र में वन्य प्राणियों एवं पक्षियों का शिकार बदस्तूर जारी है। बांका वन प्रमंडल में पिछले दशक में 3 बाघ मारे गए, 1990 में जगदीशपुर के पास एक, 2001 में रजौन के निकट एक तथा 2012 में अमरपुर के निकट एक बाघ मारा गया था। बांका जमुई क्षेत्र में वनों से भटककर भालू अक्सर बस्तियों में आ जाते हैं और बस्ती में रहने वाले लोगों से अक्सर इनके टकराव की घटना प्रकाश में आते रहती है। लक्ष्मीपुर वन क्षेत्र के पास अक्सर भालू देखे गए हैं। बांका जमुई क्षेत्र में हाथियों का झुंड अक्सर उत्पात मचाता रहा है और जान माल को भारी क्षति पहुंचाता रहा है। उस क्षेत्र में रहने वाले किसान या जनजातियों द्वारा उगाए गए फसलों को हाथियों का झुंड विनष्ट करता रहा है, फलस्वरूप हाथियों के प्रति स्वाभाविक शत्रुता का भाव लोगों में उपजा है। अंग जनपद क्षेत्र में गंगा एवं सहायक नदियाँ, झील, ताल, पोखर, ऑक्सबो लेक्स आदि का जाल बिछा हुआ है। ये जलाशय पक्षियों के प्रिय निवास स्थान हैं। विशेषकर जाड़े में दुर्लभ पक्षियों की कई प्रजातियों, जिसमें प्रवासी पक्षी माइग्रेटरी बर्ड्स भी शामिल हैं, का आगमन इस क्षेत्र में होता है और ये इन जलाशयों में अपना डेरा डालते हैं। कॉमन पोचार्ड, टफ्टेड पोचार्ड, सिल्ली, कॉटन टील, गढ़वाल आदि पक्षियों का शिकार बेरहमी से हो रहा है। इनका शिकार स्वादिष्ट मांस के लिए होता है। राष्ट्रीय उच्च पथ 31 पर बिहपुर, भ्रमरपुर एवं नौगछिया कुरसेला के बीच इन पक्षियों को खुलेआम बेचते हुए देखा जा सकता है। भागलपुर के बाजारों में भी ये प्रवासी पक्षी लुके छिपे बेचे जाते हैं। फलस्वरूप हाल के वर्षों में इन प्रवासी पक्षियों का इस क्षेत्र में आना कम हुआ है। गौरैया एवं कौवे तो हमारे घर आंगन से ही गायब हो गए हैं। विक्रमशिला अभयारण्य क्षेत्र की गंगा में कछुओं का शिकार भी धड़ल्ले से हो रहा है। कछुओं का मांस बेहद स्वादिष्ट होता है और इसके अंडे बड़े चाव से खाए जाते हैं। सुल्तानगंज क्षेत्र की गंगा में कछुओं का शिकार कर इनको कहलगांव पहुंचाया जाता है और फिर इन कछुओं की यहाँ से बांग्लादेश और पूर्व एशिया के देशों में तस्करी तथा कालाबाजारी की जाती है। कहने का मतलब है कि हमारे अंग क्षेत्र के वन्य जीव भी आज खतरे में हैं। वन्य जीवों पर खतरे का मुख्य कारण हमारे पर्यावरण पर दिनों दिन बढ़ता दबाव एवं असंतुलन है। पर्यावरण बदलाव का सबसे बड़ा कारण स्वयं मनुष्य की हानिकारक गतिविधियां हैं, जिससे वन, वन्य प्राणी तथा वनस्पतियों की लगातार क्षति हो रही है। वन्य प्राणियों की विलुप्ति के प्रमुख कारण हैं आखेट, हंटिंग, मानव की धनलिप्सा, औद्योगिकरण एवं प्रदूषण तथा जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि। यदि पर्यावरण ह्रास के कारण किसी भी प्रकार की वनस्पति या प्राणी प्रजाति संकटापन्न होती है तो इसका प्रत्यक्ष दुष्प्रभाव मानव के अस्तित्व पर पड़ना अवश्यंभावी है। अतः पर्यावरण की दृष्टि से प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए तथा स्वयं मानव के अस्तित्व की रक्षा के लिए वन्य जीवों का संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है। वन्य जीवों का संरक्षण दो प्रकार से किया जा सकता है, स्वस्थाने संरक्षण, इंसिटू कंजर्वेशन। इस विधि में किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों का वन्य जीवों के महत्व और उनकी उपयोगिता को देखते हुए उनके संरक्षण हेतु वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं, अधिनियम की सूची एक में रखे गए जीव जैसे बाघ, शेर, घड़ियाल, हाथी आदि का शिकार पूर्णतया वर्जित है। धारा 39 में वन्यजीवों को शासन की संपत्ति घोषित किया गया है। अधिनियम की धारा 40 के अनुसार बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के वन्य प्राणियों के विषय में ट्रॉफी रखना, पशु पदार्थ रखना दंडनीय अपराध होगा तथा धारा 44 के अनुसार पशु पदार्थों एवं पशु ट्रॉफी का व्यवसाय भी दंडनीय अपराध माना जाएगा। अधिनियम की धारा 50 के अनुसार कोई भी वन अधिकारी तथा उपनिरीक्षक स्तर का पुलिस अधिकारी वन्य जीवों के अपराध के संदेह में किसी की खाना तलाशी, वाहन एवं घर की तलाशी ले सकता है। धारा 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की एक मुख्य धारा है, इसमें अपराधों के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। अधिनियम की सूची एक में वर्णित वन्य जीवों के प्रथम बार शिकार करने के अपराध में 2 वर्ष की सजा तथा 2000 रुपये अर्थदंड का प्रावधान है।

0: दूसरी बार अपराध करने पर प्रत्येक अपराध के लिए कम से कम एक वर्ष की अतिरिक्त सजा तथा ₹1,000 जुर्माना का प्रावधान है। अनुसूची 2-3-4 के अंतर्गत सूचीबद्ध वन्य जीवों को मारने पर 6 मास से 7 वर्ष की कारावास एवं कम से कम ₹500 के अर्थदंड का प्रावधान है। इस तरह हम देखते हैं कि वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए हमारे यहाँ सशक्त विधि विधान बने हुए हैं। विधि में कठोर दंड की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन देश के शिक्षित एवं अशिक्षित व्यक्तियों को वन एवं वन्य प्राणियों से संबंधित विधि का पर्याप्त ज्ञान नहीं है। अतः जरूरत है इन अधिनियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने की और इन अधिनियमों के प्रभावी अनुपालन की। हम शायद यह भूल गए हैं कि पृथ्वी पर अन्य जीव जंतुओं को भी रहने का उतना ही अधिकार है जितना मनुष्य को। वनस्पति, जीव जंतु तथा मानव एक दूसरे के अस्तित्व के पूरक हैं। संकटग्रस्त जंतुओं और वनस्पतियों को बचाने का उत्तरदायित्व समूची दुनिया का है। पर्यावरण के क्षेत्र में एक नवजागरण आ रहा है। आइए पर्यावरण एवं वन्य जीवों के संरक्षण के पुनीत कर्तव्य में हम अपना योगदान करें।
1: चलिए, बड़ी अच्छी बातों की जानकारी दिए। सब प्रकृति प्रेम है, हमें इस प्रकृति में रहना है और प्रकृति में सामंजस्य और संतुलन बनाते हुए हमें जीवन यापन गुजर बसर करना है, क्योंकि आज के समय में प्रकृति में बड़ी छेड़छाड़ हो रहे हैं। नतीजा उसका हमें ही भुगतना पड़ रहा है। होता यह है कि कभी समय पर वर्षा नहीं होती है, कभी असमय बारिश होना शुरू हो जाता है, ठंड ज़्यादा पड़ते हैं तो कभी नहीं भी पड़ते हैं। तो हमें प्रकृति के साथ निश्चित रूप से तालमेल बना के इस प्रकृति में आगे
2: रहना चाहिए।
1: शादी ब्याह का समय है गैरू भाई, लगे हाथ एक बढ़िया सा विवाह गीत सुनते हैं।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।

0: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
1: तिलका मांझी तो बहुत।
0: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
2: बख्शी जगबंधु तो
1: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 870-001-4242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 870-001-4242।
6: जी है संदेश के बाद फेनू से स्वागत छे सब श्रोता भाई बहन के अपने सबके पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी में।
7: जी जी,
6: और अब किशन भाई अपनो किसान भाई बहन सनी का मौसम के कुछ जानकारी दे दीछे जगरा से कि हुनका सनी का खेती बाड़ी में सुविधा हुआ।
7: जी
6: छे कि नहीं?
7: जी,
6: तो मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आवे वाला 8 जुलाई तक जे छे कि दक्षिण बिहार के जिला में एक दो स्थान पर गरज चमक के साथ आंधी चले के और हल्की वर्षा हुए के संभावना छे। बांका गया रोहतास और कैमूर में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा हुए के संभावना छे। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना छे। सापेक्ष आर्द्रता भोरे भोर 70 से 75% आरो दोपहर का 30 से 40% रहे के संभावना छे और पूर्वानुमान के अवधि में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से दक्षिण पूर्वी हवा चले के अनुमान छे।
7: वर्षा वर्षा होगी कि नहीं गेरू भाई, जरा वो बताइए।
6: कही तो रहलो छे कि वर्षा होते और एक संभावना छे। अब देखो हर बार हो रहलो छे, अबरी तो देखिए रहलो छो कि कत्ता जे छे कि मानसून के दिन पर दिन बीतलो जाए छे, वर्षा के नामो निशान नहीं छे।
7: जी,
6: आरो अपना जे धान के खेती करे वाला किसान भाई बहन छे ओकरा वर्तमान में मानसून के कमजोर स्थिति का देखता हुआ किसान सनी का सलाह दिलो जाए छे कि जौन किसान के पास सिंचाई के सुविधा उपलब्ध छे उन्हें मध्यम अवधि वाला धान के किस्मों के बिचड़ा गिराब सके छे तथा आरो बीज स्थली में नमी बनाए के राखे के आवश्यक

0: आवश्यकता छे आरो आवश्यकता अनुसार जीवन रक्षक सिंचाई भी करना छे। धान के किस्म सबौर मोती धान सबौर सोना आदि के सीधा बुआई भी कर सके छे। अन्य श्री के जहाँ तक बात कर लो जाए तो मोटा अनाज के खेती हेतु ऊंचास भूमि के चयन करो आरो मरुआ के वकुला के MR 316 GPU 67 VL 379 राजेंद्र मड़ुआ आरु जे छे कि कौनी के राजेंद्र कौनी एक किस्म के बुआई कर सके छ। जे किसान भाई सनी जे छे मक्का के खेती करी रहल छ त खरीफ मक्का के बुआई आसमान साफ रहला पर ही करो आरु खेत के जुताई में 10 से 15 टन गोबर के सरलो गोबर के खाद प्रति हेक्टेयर के दर से व्यवहार करिए आरो बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम ग्राम नेत्रजन 60 किलोग्राम स्फूर आरो 50 किलोग्राम पोटास के व्यवहार करे के सलाह देलो जाय छे। अनुशंसित मक्का के किस्म छे जेना कि सुवान देवकी शक्तिमान एक शक्तिमान दू राजेंद्र शंकर मक्का तीन गंगा 11 छे आरो अपनो जे पशुपालक भाई सनी छे ओकरा लेली भी कुछ सलाह छे किशन भाई कि दुधारू पशु के गर्मी के प्रभाव से बचावे के लिए छायादार आरो हवादार स्थान में रखना चाहिए आरो उनका सनी के पर्याप्त मात्रा में साफ सुथरा ताजा पानी उपलब्ध कराना चाहिए आरो जे सबसे महत्वपूर्ण बात छे वो ई छे कि गलघोटू आरो लंगरी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराना जरूरी छे आरो सब दुधारू पशु में टीकाकरण अवश्य करवावो।
1: अभी देखिए जो दुधारू दुधारी या जो पशु हैं उसके बच्चे तो उसको भी जरा बढ़िया से देखभाल करने की ज़रूरत है क्योंकि गर्मी का प्रभाव बहुत ज़्यादा है तो समय पर बढ़िया ढंग से उसको पानी पिलाइए छाया में रखिए हो सके तो जो अभी जो बिजली से चलने वाले पंखे हैं उसकी भी उसको सेवा दे थोड़ा नहला भी सकते हैं ताकि वो बेहतर ढंग से रह सके। वो तो अबोध है बोल नहीं सकते उसके माता जी भी खोते में बंधी रहती हैं तो इन बातों को पशुपालक भाइयों को ध्यान देने की आवश्यकता है। खेतीबाड़ी की चर्चा कर रहे हैं गेरू भाई एक बढ़िया सा हम लोग कृषि गीत सुनते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सुनै छिए अपनों सुनबे और अपना सब किसान भाई बहन भी सुनते हैं।

0: बहुत
1: जी
0: ही बढ़िया
1: जी
0: है कृषि गीत लागलों किसान भाई।
1: जी
0: और सच में जे छे कि किसान सिनी के मन तो तखनी झूमे लगे छे, आरो जब खेतों में फसल लहलहाबे छे तो ओकरो मन के अंदर अंदर ही उनको जे छे कि तान
1: जी
0: फूटे लगे छे। और तो बहुत ही बढ़िया गीत सुनलिए और एकरा लिए इनका धन्यवाद। और अब जे छे कि धान के सधनीकरण
1: जी
0: विषय पर जे छे कि धान के सधनीकरण
1: सघनीकरण
0: हाँ
1: हाँ
0: ये विषय
1: जी
0: पर
1: जी
0: जे एक वार्ता सुने छे वार्ताकार के GS पवार।
2: धान धान की संघनीकरण विधि पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। इस विषय में धान, हम सभी जानते हैं कि धान हमारे देश की एवं हमारे राज्य की महत्वपूर्ण फसल है, और इसकी महत्ता को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने भी इसको संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अनेक वर्षों में इसको अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष घोषित किया है। इसका उत्पादन देश के लगभग सभी राज्यों में किया जाता है, और हमारा यह बिहार राज्य इसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ दोनों दशाओं में, जैसे कि जहाँ जल भराव वाली मृदाएँ हैं एवं सुखाड़ की स्थिति वाली मृदाएँ हैं, दोनों ही कंडीशंस में, दोनों ही स्थिति में हम चावल की खेती करते हैं। वर्ष 2008-09 के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में लगभग 439 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में करीब 9 करोड़ टन चावल का उत्पादन किया गया। देश की बढ़ती जनसंख्या 2% वार्षिक वृद्धि दर की पूर्ति के लिए हमको 2050 तक लगभग 18 करोड़ टन चावल की मांग होने का अनुमान है, और इस मांग को पूरा करने के लिए हमारा बिहार राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपने यहाँ की उत्पादकता को और कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो धान उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु एकीकृत फसल प्रबंधन, पोषक तत्व प्रबंधन, फसल सुरक्षा प्रबंधन, उन्नतशील एवं संकर प्रजातियों के अंगीकरण इत्यादि का समग्र प्रयासों को अपनाते रहने के बाद भी आशातीत वृद्धि नहीं हो पाई। धान की खेती में पादप सुरक्षा, रसायन, उर्वरक एवं सिंचाई जल का आवश्यकता से अधिक प्रयोग किया जाता है, जिसमें भूमि जल स्तर की कमी, फसल में रासायनिक अवशेष मिलने से स्वास्थ्य संबंधी कुप्रभाव सामने आ रहे हैं। उत्पादन स्तर में स्थिरता एवं भिन्नता को देखते हुए धान की उत्पादकता बढ़ाने हेतु स्थानीय परिस्थितियों एवं उपलब्ध संसाधनों को संज्ञान में लेते हुए रणनीति एवं कार्य योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता है। धान की खेती जलमग्नता में परंपरागत रूप से किया जा रहा है, और इसलिए इसे जल प्रेमी फसल भी कहते हैं। धान के जलमग्न मिट्टी में जीवित रहने एवं जलमग्नता की स्थिति में प्रभावी खरपतवार प्रबंधन से इस विधि को और विश्वसनीयता प्राप्त हो गई है। अतः चावल की खेती में जल उत्पादकता निम्नतम स्तर पर है। इस पहलू पर चावल की खेती में परिवर्तन किए जा रहे हैं। अतः चावल संघनीकरण प्रणाली परिस्थिति

स्थितियों तथा उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए जल एवं रसायन आधारित परंपरागत धान उत्पादन विधि का सशक्त विकल्प है, जिसमें घटकों, प्रक्रियाओं एवं उनकी संबंधित सहक्रियाओं द्वारा कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। चावल संघनीकरण प्रणाली का जो विकास हुआ है, सन 1983 में मेडागास्कर में किया गया और वर्ष 1997 एवं अन्य देशों में इसका प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन अब लगभग सभी देशों में इसका सफलतापूर्वक प्रसार हुआ है और सभी देश इसको अपना रहे हैं। अब तक परीक्षणों में यह पद्धति धान उत्पादकता वृद्धि हेतु अधिक अक्षमता रखने वाली सिद्ध हुई है। SRI जो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन या धान संघनीकरण पद्धति है, इस पद्धति में पौधा, मिट्टी, पानी एवं उर्वरक प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां सूचित की गई हैं। वर्षों से परंपरागत विधि में चावल उगाने के लिए खेत में पानी भरकर रखते हैं, लेकिन इस पद्धति में खेत को केवल नम रखना पड़ता है, यानी कि नमी रखनी पड़ती है। तो इस पद्धति द्वारा सफलतापूर्वक खेती करने के लिए मुख्यतः निम्न प्रकार से 6 विधियों का ध्यान देना अति आवश्यक है, या ये कह सकते हैं कि चावल की संघनीकरण प्रणाली के ये मूल सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है कि कम उम्र, यानी कि 8 से लेकर 12 दिन का जो हम दो पतियाने का जो पौध होती है उसका प्रयोग करते हैं, यानी कि धान का जो बिछड़ा होगा उसकी जो उम्र होगी वो 8 से लेकर 12 दिन की हम प्रयोग करते हैं। दूसरा इसका सिद्धांत है कि प्रति पौधा एक ही हिल की हम रोपाई करते हैं, कि प्रति यानी कि दो पौधे नहीं, हम एक ही पौधा इसका करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि अधिक से अधिक इसके कल्ले निकलते हैं और उससे हमको अधिक उत्पादन मिलता है। अधिक दूरी पर पौध रोपण करते हैं, सामान्यतः हम 20x15 पर रोपाई करते हैं, लेकिन इस विधि में 25x25 यानी कि पौधे से पौधे की दूरी 25 और कतार से कतार की दूरी भी 25 सेंटीमीटर रखते हैं। चौथा सिद्धांत है खेतों में खड़े पानी की जगह खेतों को नम रखना, यानी कि जब उसमें सिंचाई की आवश्यकता हो तभी सिंचाई देना, लगातार पानी भरने की इसमें आवश्यकता नहीं है। अगला सिद्धांत है कि पंक्तियों के बीच में खरपतवार प्रबंधन को रोकने के लिए हमको वीडर की हम आवश्यकता पड़ती है। वीडर का यहाँ पर कार्य है कि वो खरपतवारों को की वृद्धि को काट कर मिट्टी में मिला देता है और मिट्टी की संरचना को भी अच्छा करता है। अन्य जो सिद्धांत है, कार्बनिक खाद जैसे गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद का हम इसमें अधिक प्रयोग करते हैं। अन्य कृषि विधियों में धान उत्पादकता बढ़ाने हेतु SRI का अंगीकरण करने के लिए निम्न बिंदुओं के अनुसार धान उत्पादन तकनीक को धरातल पर उतारना होगा। इसके लिए सर्वप्रथम उचित भूमि का चयन, अच्छी जल निकास वाली समतल भूमि की आवश्यकता होती है। अम्लीय एवं क्षारीय जल प्लावित निचली भूमि में इस तकनीक से खेती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन परिस्थितियों में हम सभी संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं कर सकते। भूमि में उपलब्ध आवश्यक पोषक तत्वों की जानकारी हेतु मिट्टी जांच बहुत जरूरी है, उसी के अनुसार हम अपना पोषक तत्व प्रबंधन करते हैं। किस्म का चयन, किस प्रकार की हम किस्म इसमें प्रयोग करें, इस तकनीक में संकर धान का प्रदर्शन बेहतर पाया गया है, इसलिए इसकी सिफारिश की जाती है, क्योंकि संकर धान में अधिक कल्ले निकलते हैं और अधिक उत्पादन देने की क्षमता होती है और प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग वो कर सकते हैं। साधारणतया विभिन्न क्षेत्रों में उगने वाले अधिक पैदावार देने वाली किस्मों को SRI द्वारा उगा सकते हैं। अच्छी फसल के लिए स्थानीय एवं लोकप्रिय किस्म को भी उगाना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलते हों। बीज दर का अगर हम बीज की बात करते हैं तो 1 एकड़ धान के क्षेत्रफल के लिए 2 किलो बीज, अच्छा स्वस्थ बीज का उपयोग करना है। निम्नलिखित पद्धतियां अपनाकर स्वस्थ एवं समुचित बीजों का चयन करें। फर्स्ट जो प्रथम करते हैं, बीज को पानी में डुबो करके डुबोने के लिए लगभग 1.65 किलो नमक को 10 लीटर पानी में मिलाकर नमक का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। ताजे अंडों को नमक के मिश्रण में डालने से अगर अंडा तैर रहा हो तो नमक के मिश्रण की सांद्रता बीज डुबाने के लिए ठीक है। यदि अंडा नीचे रह गया तो नमक डालकर मिश्रण की सांद्रता नमक डालकर बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हमारा अंडा तैरता रहे। पौधशाला के लिए चयन किए गए बीजों को नमक के मिश्रण में डालना चाहिए। बीजों को घोल में अच्छी तरह मिलाएं और ऊपर तैरने वाले बीजों को अलग निकाल कर रख देना चाहिए, क्योंकि इन बीजों की क्षमता, अंकुरण क्षमता और जीव जो वाइबिलिटी है वो कम होती है, इसलिए इनको ऊपर से उतार कर अलग रख देते हैं। नीचे बचे हुए बीजों का चयन करना चाहिए और उन्हें अच्छी प्रकार साफ पानी में 2-3 बार धो लेना चाहिए ताकि नमक का हिस्सा उस बीज में न रहे।

अब बीज भिगोना, कैसे हम बीज को भिगोएं। अच्छे साफ सुथरे बीजों को 12 घंटे तक पानी में भिगोने के बाद पानी से निकालकर भीगी हुई बोरी में डालकर 24 घंटे तक

डाल देनी चाहिए। इसके ऊपर धान का पुआल क्यारी के ऊपरी पहली परत में बिछाएं ताकि बीजों को सीधी धूप और चिड़ियाओं से सुरक्षित रख सकें। प्रतिदिन सुबह शाम कैन की सहायता या छिड़काव जो स्प्रेयर होता है उसकी सहायता से पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। मुख्य खेत की तैयारी, मुख्य खेत की तैयारी जहाँ पर हमको पौध रोपना है उस खेत की तैयारी हम कैसे करें। इस पद्धति में परंपरागत पद्धति के समान ही मुख्य खेत की तैयारी की जाती है, लेकिन खेत को समतल रखना अति आवश्यक है। खेत तैयारी से पहले खेतों में लगभग 4 टन गोबर की सड़ी गली खाद या कंपोस्ट खाद 1 एकड़ में डालकर मिट्टी में मिला देना चाहिए। खेत की जुताई 2 बार करके उसमें पाटा चला दें ताकि खेत समतल हो जाएं, खरपतवार मिट्टी में मिल जाएं। खेत तैयार करते समय अच्छी जल प्रबंध के लिए सिंचाई एवं जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अगर अधिक बारिश हो गई तो उस बारिश के पानी का जल निकास भी उचित प्रबंध होना चाहिए। मुख्य खेत में मार्किंग करते हैं। इस विधि में पौधों की दूरी एवं कतार से कतार की दूरी समान होती है और प्रति वर्ग मीटर 16 पौधे ही लगाए जाते हैं। मार्कर की सहायता से रोपाई के लिए हम 25x25 की दूरी पर निशान लगा दिया जाता है। प्रति पौधा प्रतिरोपण, पौध प्रतिरोपण के लिए खड़े पानी की आवश्यकता नहीं होती। खेत की तैयारी के 24 घंटों के भीतर रोपण करना चाहिए। इस पद्धति में 8 से 12 दिन का पौधा रोपा दिया जाता है। जब पौधों में 2 या 3 पत्ते निकल जाते हैं, 2 या 3 पत्ते, इस विधि में पौधों को बीज के साथ रोपण आवश्यक है। खेत में डाले गए निशान की प्रत्येक चौकड़ी पर एक पौधे को कम गहराई पर रोपा जाता है। पौधों को पौधशाला से निकालने के लिए आधे घंटे के भीतर रोपनी कर देनी चाहिए। खाद प्रबंधन, खाद प्रबंधन से हमें पता चलता है कि हम किस प्रकार खाद और पोषण प्रबंधन करें। खेत तैयार करने के लिए 4 से 5 टन सड़ी गली कंपोस्ट या गोबर की खाद डालकर खेत में अच्छी प्रकार मिली रहनी चाहिए। अगर कार्बनिक खाद उपलब्ध नहीं है तो रासायनिक खादों का उपयोग हम कर सकते हैं। आधा अनुशंसित मात्रा नाइट्रोजन, फास्फोरस की पूरी मात्रा, पोटास की पूरी मात्रा खेत की जुताई आखिरी जुताई के समय खेत में डालकर अच्छी तरह मिला देना चाहिए। खेतों में संख्या बढ़ जाती है, फसल पर कीट रोगों का प्रकोप होने की स्थिति में हम निम्न प्रकार का ध्यान रखेंगे। फसल के कीट रोग एवं उनके प्राकृतिक शत्रुओं मित्र कीटों की पहचान एवं जानकारी अति आवश्यक रखें। संतुलित उर्वरक, जैविक खाद एवं हरी खाद का नियोजन करें। खेत एवं मेड़ पर खरपतवार नहीं रहने दें। नियंत्रण हेतु प्रकाश प्रपंच एवं फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग कर सकते हैं। फसल के मित्र जीव जैसे मकड़ी, बीटल, ततैया आदि का संरक्षण एवं बढ़ावा देना चाहिए। खेत की मेड़ों पर फूल वाले पौधे लगाने चाहिए। कृषि एवं पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण वनस्पति कीटनाशी का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। अधिकतर पादप आधारित कीटनाशकों को कृषक स्वयं ही तैयार कर सकते हैं, जैसे नीम के द्वारा तैयार कर सकते हैं, लहसुन के द्वारा तैयार कर सकते हैं, गेंदा एवं तुलसी आदि के विभिन्न भागों से बने उत्पाद प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इससे नीम आधारित जैसे निम्बेसिडीन, नीम का तेल आदि बहुत अधिक मात्रा में प्रचलित हैं। पादप सुरक्षा रसायनों का प्रयोग, कीटों एवं रोगों के प्रकोप से पूर्व रोपाई के लगभग 30 से 35 दिन, 40 से 45 दिन एवं 55 से 60 दिन बाद करना चाहिए। SRI जो विधि हमारी है, सघनीकरण की जो विधि है, इसकी उपयोगिता धान उत्पादन की ये तकनीक प्रौद्योगिकी न होकर एक पद्धति है, क्योंकि यह स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने वाली प्रौद्योगिकी को उपयोगिता अनुसार अधिक उत्पादन लेने हेतु प्रयोग करने एवं अपनाने में प्रचलन में लाई गई। जनसंख्या वृद्धि को हम लगातार देख रहे हैं कि खाद्यान्न को पूरा करने के लिए वर्तमान जो उपलब्धता है उसके सापेक्ष 50% चावल की अधिक आवश्यकता होगी। अच्छा, अतिरिक्त फजावल की मांग को हम शून्य कर्षण, श्रम, जल, भूमि रसायन में अधिक एवं गुणवत्तापूर्वक उत्पादन लेने हेतु इस विधि को पूरा किया जा सकता है। इस विधि के जो मुख्य लाभ हैं, 30 से 40% पानी की बचत होती है, क्योंकि इस पद्धति में कम पानी का उपयोग होता है। 80% बीज की बचत होती है। ये संकर धान के प्रजनन में बहुत उपयुक्त है, क्योंकि संकर धान का बीज बहुत महंगा है। लगभग ये संकर धान का बीज 200 से 250 रुपये केजी मिलता है, किलो मिलता है। इसलिए संकर धान को हम SRI पद्धति में उगाने में हमको लाभ है। रासायनिक उर्वरक, रसायनों एवं कीटनाशकों की बचत होती है, क्योंकि इस पद्धति में जैविक खाद एवं जैव नियंत्रकों का प्रयोग हम करते हैं। जैविक खेती पदार्थों के उपयोग से अधिक स्वस्थ एवं स्वादिष्ट चावल प्राप्त होता है। कम निवेश में अच्छी पैदावार होती है। SRI के जो हम 6 सिद्धांत

0: प्रयोग करते हैं, यदि कुछ सिद्धांतों का प्रयोग भी करें तो पैदावार में अच्छी बढ़ोतरी होगी। तेजी से फसल की स्थापना के कारण फसल पकने के समय 7 से 10 दिन की कमी हो जाती है। खरपतवार नियंत्रण में कोनोविडर के इस्तेमाल से खर्च में काफ़ी कमी होती है और SRI पद्धति में बीज की गुणवत्ता बेहतर मिलती है। इस तकनीक में कुछ बाधाएं भी आती हैं, जैसे कि प्रारंभ में कम उम्र की पौधों को रोपने के लिए पौधशाला की तैयारी में ज़्यादा श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हम अगर इसका अनुभव रखते हैं तो इससे बचाव कर सकते हैं।
1: बड़ी अच्छी बातों की जानकारी मिली गैरू भाई, और चलते चलते हम अपने किसान भाइयों के एक बढ़िया से झूमर भी सुनवाते चलते हैं, ताकि वो झूमते झूमते खेती बाड़ी करें और उनका फसल भी लहलहाते रहे।
2: बिल्कुल बिल्कुल, एक झूमर गीत सुन लो जाए।

0: مقدار
1: जी, इस गीत
2: के बाद ही हम लोग गैरू भाई अपने किसान भाइयों से आज के कार्यक्रम में यहीं अनुमति लेते हैं। कल के कार्यक्रम में ढेर सारी जानकारी लेकर के फिर उपस्थित होंगे। आज अनुमति लेते हैं। सबको किशन का नमस्कार
1: और सबका गैरू का भी नमस्कार।
3: ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजने को हैं। थोड़ी देर में रांची से प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: बाजार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट का किया उद्घाटन। कहा, डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया हमारा मंत्र। जमशेदपुर की तनिषा भी संवाद में हुई शामिल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के तहत भरा अपना इन्यूमरेशन फॉर्म। मतदाताओं से अभियान में सहयोग का किया आग्रह। झारखंड उच्च न्यायालय ने सरकारी अस्पतालों में लंबे समय से संविदा पर कार्यरत ANM कर्मियों को सेवा से नहीं हटाने और नियमित रूप से वेतन भुगतान करने का दिया निर्देश। पलामू जिले के सिक्का गांव में आर्जिनमोन मिले सरसों तेल से हुई ड्रॉपसी बीमारी के कारण एक ही परिवार के 5 लोगों की हुई थी मौत। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट से हुआ खुलासा। और राजकीय श्रावणी मेला 2026 को लेकर झारखंड और बिहार के अधिकारियों ने की बैठक। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं पर जोर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सांडा में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को प्रोत्साहन देते हुए सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ भारत आगे बढ़ रहा है।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: कार्यक्रम के दौरान जमशेदपुर की बेटी तनिषा गौतम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा संवाद किया। भारत की पहली मेड इन इंडिया कमर्शियल सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च के अवसर पर इस संवाद का आयोजन किया गया। डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी के रूप में कार्यरत तनिषा ने ऐतिहासिक मिशन से जुड़े अपने अनुभव को प्रधानमंत्री के साथ साझा किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान के तहत अपने आवास पर स्वयं इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर संबंधित BLO को सौंपा। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि BLO के घर पहुंचने पर वे तुरंत फॉर्म भरकर हस्ताक्षर सहित जमा करें ताकि पुनर्निरीक्षण कार्य समय पर पूरा हो सके। उन्होंने सभी कर्मचारियों और पदाधिकारियों से भी अपने तथा परिवार के सदस्यों का इन्यूमरेशन फॉर्म शीघ्र भरवाने का आग्रह किया। रांची में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण 2026 के तहत इन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन कार्य की समीक्षा करते हुए उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी और निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य पूरा किया जाए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आज जमशेदपुर के आदित्यपुर में दिवंगत हिमांशु सिंह के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान श्री साहू ने घटना की CBI जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि यह घटना राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ी करती है।
2: इस प्रकार से जमशेदपुर में जो पुलिस की मौजूदगी में हमें दो युवा नौनिहाल बच्चों का साथ जो घटना घटी है उसकी जितनी निंदा करें शायद मुझे कम लगता है। एक युवा की मौत हो गई, एक युवा जीवन और मौत से जूझ रहा है और ये बतलाने का अपराधियों ने काम किया है कि यहाँ पुलिस प्रशासन की सरकार नहीं चल रही है। इस राज्य में अपराधियों का समानांतर सरकार चलने का काम कर रही है।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के महात्मा गांधी मार्ग स्थित श्री हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्यवासियों के सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में नवनिर्मित वातानुकूलित सामुदायिक हॉल श्री राम वाटिका का उद्घाटन करते हुए इसे धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का प्रेरणादायी केंद्र बताया। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में 17-18 वर्षों से संविदा पर कार्यरत ANM कर्मियों को अंतरिम राहत देते हुए अंतिम निर्णय तक उन्हें सेवा से नहीं हटाने और नियमित रूप से वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सेवा नियमितीकरण से जुड़ी याचिका पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC से विस्तृत जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। पलामू जिले के पड़वा प्रखंड के सिक्का गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने जांच रिपोर्ट जारी कर दी है। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि अर्जीमोन मिले सरसों तेल के सेवन से परिवार के सदस्यों को ड्रॉपसी रोग हो गया था, जिससे शरीर में सूजन फैलने के बाद उनकी मौत हो गई। धनबाद के निरसा से विधायक आरूप चटर्जी को कथित तौर पर गैंगस्टर प्रिंस खान द्वारा धमकी दिए जाने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। वसेपुर क्षेत्र में प्रिंस खान से जुड़े एक ठिकाने पर आज बुलडोजर चलाया गया। धनबाद के सिटी SP ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि कुड़की जब्ती के आदेश को लेकर कार्रवाई की गई है।
3: पूरी तरह से लगभग खंडर हो चुका था, इसका पार्ट पूरी तरह सब गिर रहा था। यहाँ पे बच्चे खेलते थे, एक दो बच्चों को यहाँ पे चोटें भी आई और संभवतः इसका नक्शा वगैरह भी पास नहीं था, तो इन सभी के मद्देनजर कुर्की भी की गई। जो पार्ट्स गिर रहे थे, जो खंडर हो चुका था, जिसके कारण जनमानस को दिक्कत हो रही, बस उसे अभी तोड़ा जा रहा है और जैसे ही हमारे पास पूरा ऑर्डर आ जाएगा तो वैसे ही घर को भी उठाया जाएगा।
0: झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से न्याय सदन में आज वित्तीय प्रबंधन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सह झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद ने वित्तीय प्रबंधन पर अपनी बातें रखी।
4: कस्टोडियन के कैपेसिटी में हमको देखना है किस तरह से हम हेड वाइज इसको खर्च करे, जिसे इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ और पब्लिक ट्रस्ट बना रहे पर्पस है। अगर फाइनेंशियल में मिसमैनेजमेंट हो गया तो ट्रस्ट एलिमेंट है जो इंस्टीट्यूशन का ग्रोथ डेवलप नहीं करेगा। उसी के लिए जितना भी रिपोर्ट होता है PAC में जाता है, वहाँ पर जितने भी लोग हैं डिस्कशन करते हैं, यही फोकस है कि हम लोग उसी ट्रस्ट को बनाने के लिए गैदरिंग है उसको।
0: राजकीय श्रावणी मेला 2026 के सफल आयोजन को लेकर आज देवघर में झारखंड और बिहार के अधिकारियों की अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक हुई। संथाल परगना आयुक्त संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में सुल्तानगंज से देवघर तक कांवरिया पथ पर सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधा की समीक्षा की गई। देव

0: देवघर के उपायुक्त सौरभ कुमार भुवनिया ने बताया कि मेले के दौरान वीआईपी दर्शन पर रोक रहेगी।
1: सभी बिंदुओं पर आज बहुत ही वृहद तरीके से चर्चा हुई और सभी जिलों में आपस में कोऑर्डिनेशन हम लोग एस्टैब्लिश करके डेटा शेयरिंग करके और जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे कोई अगर एम्बुलेंस हेल्प का जरूरत पड़ता है या फिर कोई भी गाड़ी का आवागमन का जरूरत है या फिर श्रद्धालु जो आ रहे हैं ये कितनी मात्रा में आ रहे हैं, हर तरह का जो डिटेल्स है आपस में शेयर करें ताकि हम लोग आगामी शारदीय मेला का संपादन हो बहुत बढ़िया से।
0: रांची जिला जूनियर वुशु प्रतियोगिता का आयोजन कल मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम के वुशु हॉल में होगा, जिसमें जिले के विभिन्न विद्यालयों, क्लबों और प्रशिक्षण केंद्रों के जूनियर खिलाड़ी भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता के माध्यम से खिलाड़ियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के चयन का अवसर मिलेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट का किया उद्घाटन, कहा डिजाइन इन इंडिया मेक इन इंडिया हमारा मंत्र। जमशेदपुर की तनीषा भी संवाद में हुई शामिल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत भरा अपना इन्यूरेशन फॉर्म। मतदाताओं से अभियान में सहयोग का किया आग्रह। झारखंड उच्च न्यायालय ने सरकारी अस्पतालों में लंबे समय से संविदा पर कार्यरत एएनएम कर्मियों को सेवा से नहीं हटाने और नियमित रूप से वेतन भुगतान करने का दिया निर्देश। पलामू जिले के सिक्का गांव में आर्जिनमोड मिले सरसों तेल से हुई ड्रॉपसी बीमारी के कारण एक ही परिवार के 5 लोगों की हुई थी मौत, स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट से हुआ खुलासा। और राजकीय श्रावणी मेला 2026 को लेकर झारखंड और बिहार के अधिकारियों ने की बैठक, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं पर जोर। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार के ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर पर। 7:11 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं लोकगीत जयनारायण शर्मा से। आरंभ में इनसे सुनिए एक पूर्वी।

अभी आप जयनारायण शर्मा के गाए लोकगीत सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। संध्या के 7:25 होने को है। थोड़ी देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे पटना केंद्र से।

0: पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार एक अंतराल के बाद।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 100 फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन की घोषणा की। अपराध नियंत्रण और न्याय व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर दिया बल। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा, 13 अगस्त तक चलेगी कार्यवाही। उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने एथेनॉल को स्वच्छ ईंधन बताया, कहा यह अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। और बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने सबसे कम उम्र में टीम इंडिया में डेब्यू कर रचा इतिहास, सचिन तेंदुलकर का 36 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने न्याय व्यवस्था को और तेज तथा प्रभावी बनाने के लिए 100 फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौधरी ने ये जानकारी दी। इससे पहले बोधगया के महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में 3 नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने समयबद्ध तरीके से मामलों के निष्पादन की व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया था।
1: मैं पिछले 2 साल से लगातार आग्रह कर रहा हूं कि 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट का स्थापना किया जाए और जरूरत पड़े तो अभी आप किसी को चार्ज दें। जिले में केसेस बहुत लंबे चल रहे हैं और पहले फिक्स था कि 14-15 केसेस को आपको सुनवाई करके पूरा करना है, वो टाइम फ्रेम नहीं हो पा रहा है। इसकी व्यवस्था हमको जो भी सरकार के स्तर पर करना है हमको निर्देशित कीजिए। हमारी सरकार आपको एकदम पूरी तरह आश्वस्त करती है कि रूल ऑफ लॉ के लिए जितनी भी राशि लगाना पड़ेगा हम लोग हर हालत में लगाने का काम।
0: मुख्यमंत्री ने अपराध नियंत्रण और न्यायिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के उपयोग पर बल दिया।
1: अब AI का उपयोग हम कर सकते हैं और AI उपयोग करने से सब पता चल जाएगा कि कौन थाना में आया था, कौन कहीं क्राइम यदि CCTV कैमरा में हो रहा है। यदि हम AI को यूज करते हैं तो आपको रेड फ्लैगिंग, ग्रीन फ्लैगिंग या जिस भी तरह के आप अपने चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे उससे आप सीधे कनेक्ट हो जाएंगे कि किस इलाके में हमको अधिक ध्यान देने की जरूरत है और कहां गड़बड़ी हो रही
0: है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बिपार्ट और बिहार जुडिशियल एकेडमी ने संयुक्त रूप से किया है। सम्मेलन में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, राज्य के सभी जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक सहित 200 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा, यह सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र संबंधी सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने एथेनॉल को स्वच्छ ईंधन बताते हुए कहा कि यह अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड

0: की पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम सुनियोजित चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था।
1: It is supported by scientific evidence,
2: यह वैज्ञानिक प्रमाणों ऑटोमोटिव निर्माताओं द्वारा व्यापक परीक्षण और उनका समर्थन करने वाली एजेंसियों यानी ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI और SIAM का समर्थन प्राप्त है और यह वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप ही है जिनका पालन जीवाश्म ईंधन को हरित बनाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाता है।
1: The fossil fuels to lower the carbon emissions.
0: केंद्र सरकार ने पायरेसी की खबरों को देखते हुए मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों के हितों की रक्षा करना है। केंद्र सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की है। इसका खरीद मूल्य 1875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर अब 2125 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य में औद्योगिक विकास को गति दी जा रही है और निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। आज रोहतास के विक्रमगंज में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम द्वारा राज्य में उद्योगों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है।
3: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने निर्णय लिया है कि यदि 30 दिन में जो बाकी सब डिपार्टमेंट है यदि वो उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को लाइसेंस देने का काम नहीं करते तो 31वें दिन उद्योग विभाग सेल्फ अप्रूव सभी लाइसेंसेस को करने का काम करेगा। और अब जो ये 30 दिन का सिंगल विंडो सिस्टम है ये कोई कागजी या काल्पनिक बात नहीं बल्कि बिहार की सच्चाई है।
0: राज्य सरकार ने झारखंड से बिहार में प्रवेश करने वाले अवैध और ओवरलोडेड गिट्टी लदे वाहनों के खिलाफ निगरानी बढ़ा दी है। राज्य परिवहन आयुक्त ने सभी सीमावर्ती जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर ऐसे वाहनों की सघन जांच करने और मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने बहुचर्चित टेंडर घोटाले में गिरफ्तार भवन निर्माण विभाग के तत्कालीन संयुक्त सचिव मुमुक्षु कुमार चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार सरकारी सेवक नियमावली के तहत यह कार्रवाई की है। मुमुक्षु कुमार चौधरी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण कर इतिहास रच दिया है। 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में डेब्यू करने वाले वैभव भारत की सीनियर पुरुष टीम के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 1989 में 16 वर्ष की आयु में पदार्पण करने वाले सचिन तेंदुलकर का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इधर भारत और इंग्लैंड के बीच आज दूसरा T20 क्रिकेट मैच मैनचेस्टर में जारी है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर और 2 गेंदों पर 84 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी 10 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में 2 छक्के लगाए। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ने से बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। इसके चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 39.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी की संभावना है। जहानाबाद जिले के खोसी थाना क्षेत्र अंतर्गत चैती पिपरा स्थित फल्गु नदी में बालू खनन को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में 6 लोग घायल हो गए। SDPO कृति कमल ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच कई राउंड फायरिंग हुई है।
1: चैती पिपरा गांव में 2 पक्षों के बीच बालू उठाव को लेकर के विवाद हुआ और उसी में गोली चली है। अभी की सूचना के अनुसार 6 लोग घायल हैं। जो भी लोग इसके दोषी होंगे उनके विरुद्ध जो भी उचित विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी।
0: पूर्वी चंपारण जिले के पिपरा कोठी में प्रस्तावित वाटर पार्क परियोजना के निर्माण कार्य में बाधा डालने के आरोप में स्थानीय थाने में राजद सांसद सुधाकर सिंह समेत 57 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है। अररिया के जिलाधिकारी विनोद तुहन ने नेपाल की नागरिकता रखने वाली 10 महिलाओं को भारतीय नागरिकता प्राप्ति की प्रक्रिया के तहत शपथ दिलाई। इन सभी महिलाओं का विवाह अररिया जिले में हुआ है। मुजफ्फरपुर जिले के बोझा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में स्कूटी सवार 2 युवतियों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार आदि गोपालपुर चौक के पास एक अनियंत्रित कार ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी जिससे दोनों युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। कटिहार जिले के मनिहारी थाना क्षेत्र के पूरब टोला में करंट लगने से 1 महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बोचाही के पास पिछले गुरुवार को हुई लूट के मामले में पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूट की रकम और हथियार समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। मधुबनी जिले के जयनगर में पेट्रोल पंप पर पिस्तौल दिखाकर लूट की कोशिश कर रहे 2 अपराधियों को स्थानीय लोगों ने घेर कर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से पिस्तौल बरामद की गई है। भोजपुर जिले में महुली घाट स्थित पीपा पुल पर पुलिस की वर्दी का रौब दिखाकर राहगीरों से अवैध वसूली करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में 1 होमगार्ड जवान भी शामिल है। बरौनी जंक्शन पर उत्पाद विभाग की टीम ने कवि गुरु एक्सप्रेस ट्रेन से 118 ग्राम हेरोइन बरामद की है। मौके से 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत महोदीपुर गांव में पुलिस ने एक 4-पहिया वाहन से 124 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। रोहतास जिले के सासाराम नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक होटल में छापेमारी कर अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर जिले के सिवायपट्टी थाना क्षेत्र में आज तड़के अपराधियों ने

0: एक किराना व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। समस्तीपुर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन बख्तियारपुर ताजपुर फोरलेन गंगा पुल के स्लैब का एक हिस्सा गिर जाने से 6 मजदूर घायल हो गए। घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। राष्ट्रीय एड्स संगठन के निर्देश पर भभुआ स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज में रेड रन के तहत 5 किलोमीटर मैराथन का आयोजन किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 100 फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन की घोषणा की। अपराध नियंत्रण और न्याय व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर दिया बल। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा, 13 अगस्त तक चलेगी कार्यवाही। उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने इथेनॉल को स्वच्छ ईंधन बताया, कहा यह अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। और बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने सबसे कम उम्र में टीम इंडिया में डेब्यू कर रचा इतिहास, सचिन तेंदुलकर का 36 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है शेखपुरा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता निरंजन कुमार।
1: शेखपुरा जिले में मानसून के आगमन के बावजूद अब तक केवल 39 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। आमतौर पर जून माह में जिले में करीब 165 मिलीमीटर वर्षा होती है, लेकिन इस बार बारिश सामान्य से काफी कम रही है और यह 30% से भी नीचे दर्ज की गई है। बारिश की कमी के कारण धान की रोपाई सहित खरीफ फसलों की बुआई प्रभावित हुई है। इसके चलते जिले में सुखाड़ जैसे हालात बनने लगे हैं और किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। कृषि विभाग के अनुसार इस वर्ष जिले में 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान तथा लगभग 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अरहर, मक्का व अन्य खरीफ फसलों की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हालांकि अब तक 30% से भी कम धान की नर्सरी बिचड़ा तैयार हो सकी है। बारिश की कमी के कारण किसान परेशान हैं और बारिश का इंतजार कर रहे हैं। वहीं भीषण गर्मी का असर भी लगातार जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इधर कृषि विज्ञान केंद्र और जिला कृषि विभाग के सहयोग से जिले में 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने, रासायनिक उर्वरकों के कम उपयोग तथा मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए जागरूक किया गया। बीते दिनों जिले के पुलिस अधीक्षक बलराम कुमार चौधरी का तबादला कर दिया गया है। उनके स्थान पर सासाराम के पूर्व पुलिस अधीक्षक हिमांशु को शेखपुरा का 29वां पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने जनता के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने और अपराध नियंत्रण के साथ साथ कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की अपनी प्राथमिकता बताया है। शेखपुरा जिले में बीते दिनों केंद्रीय चयन परिषद बोर्ड द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती के विभिन्न संवर्गों की लिखित परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित माहौल में सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई। परीक्षा के दौरान जिला प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई।

0: समाधान किया जा रहा है। वहीं बीते माह के अंतिम रविवार से पंचायत विकास दिवस की भी शुरुआत की गई है। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री, प्रभारी सचिव, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में पंचायतों के समग्र विकास को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भी सामूहिक रूप से सुना और विभिन्न विकास योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिले के विभिन्न हिस्सों में भारत संकल्प सम्मेलन आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में श्रम संसाधन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद, प्रभारी मंत्री श्वेता गुप्ता, विधान परिषद सदस्य अनामिका सिंह सहित अन्य नेताओं ने भाग लिया और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को साझा करते हुए मीडिया को संबोधित किया। इधर आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा होने के अवसर पर जिले में उत्साह का माहौल देखने को मिला। लोगों ने आकाशवाणी की विश्वसनीय समाचार सेवा, जन जागरूकता और मनोरंजन के जुड़े कार्यक्रमों की सराहना करते हुए इसे समाज के हर वर्ग के लिए उपयोगी माध्यम बताया।
1: मैं रूबी कुमारी, आकाशवाणी के 90 साल पूरा होने पर बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम 40 वर्ष से आकाशवाणी को सुनते आ रहे हैं। प्रादेशिक समाचार हो, चौपाल हो, या गीत गाना हो, या नाटक हो।
2: आकाशवाणी कार्यक्रम को 1967 से सुन रहा हूं, जिसका आज 90 वर्ष पूरा हो चुका है, जिसमें कृषि एवं मनोरंजन के अलावा देश विदेश के समाचार का नियमित प्रसारण होता है, जो कि बहुत ही लाभदायक।
0: हाल ही में संपन्न बिहार विधान परिषद उपचुनाव में जिले के घाट कुसुम्भा प्रखंड के सुजावलपुर गांव निवासी ललन प्रसाद विधान पार्षद निर्वाचित हुए। उनके निर्वाचित होने पर जिले भर में खुशी का माहौल रहा। स्थानीय लोगों ने उन्हें बधाई देते हुए क्षेत्र के विकास को लेकर उम्मीद जताई और विश्वास व्यक्त किया कि उनके कार्यकाल में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत शेखपुरा जिले में तपेदिक रोगियों की पहचान के लिए विशेष अभियान शुरू की गई है। यह अभियान 14 अगस्त तक चलेगा, जिसके दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर संभावित मरीजों की जांच करेगी और टीबी के लक्षण वाले लोगों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य जिले को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाना और रोग को समय पर पहचान सुनिश्चित करना है।
3: अभी आप सुन रहे थे शेखपुरा जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता निरंजन कुमार।
4: आकाशवाणी पट्टा से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा। इसके तहत आप सुनेंगे बिहार की लोक धुन कल और आज विषय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं युवा गायक उत्पल उदित, उनसे बातचीत कर रही है आकाशवाणी।
5: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 205.76 मीटर पर। 7:52 हो चुके हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। कलाकार हैं प्रतिभा सिन्हा। कार्यक्रम के आरंभ में इनसे सुनते हैं एक भजन।

0: सुरलहरी कार्यक्रम में अभी आप प्रतिभा सिन्हा को सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर पर। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान की अगली कड़ी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आर्किड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।
2: उड़ान, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम उड़ान में। एक बार फिर से उड़ान कार्यक्रम में हमने आपका स्वागत किया, और वो इसलिए किया कि 2-3 सप्ताह के हमारे इस कार्यक्रम के बाद इतने ज्यादा फोन कॉल आए हैं और लोगों ने जिज्ञासा जाहिर की है, हाँ, कि बीसी और बीबीए की पढ़ाई क्या सचमुच बहुत ही उम्दा है, क्या इंजीनियरिंग से अच्छी पढ़ाई है, अच्छी है या बुरी है, ये तो हम नहीं कह सकते। चाहे वो खगड़िया हो, पूर्णिया हो, भागलपुर हो, रोहतास हो, बक्सर हो, आरा हो, पटना हो, बहुत जगह से फोन कॉल्स आए, अच्छा लगा। उड़ान कार्यक्रम में हम लगातार हर साल इसी समय आते हैं और आपके करियर की बातें करते हैं, क्योंकि आपका करियर है तो सब कुछ है अच्छा जीवन जीने के लिए। हाँ, आपको अच्छा पैसा चाहिए, अच्छे पैसे के लिए अच्छी नौकरी चाहिए, और अच्छी नौकरी के लिए अच्छी पढ़ाई, और आज तो कहेंगे कि प्रोफेशनल पढ़ाई चाहिए, और बीसी और बीबीए बहुत ही उम्दा पढ़ाई है। हाँ, खास करके जब आपको रोजगार परख पढ़ाई की आप खोज कर रहे हैं उसके अंदर उड़ान कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, उड़ान कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं आर्किड बिजनेस कॉलेज की तरफ से। आर्किड बिजनेस कॉलेज पटना के राजेंद्र नगर, आर्य कुमार रोड और सगुना मोड़ पर है। पिछले 27 वर्षों से बीसीए और बीबीए की पढ़ाई के साथ युवा साथियों के साथ एकदम खड़े हैं और लगातार आपके लिए काम कर रहे हैं। 100% जॉब असिस्टेंस की यहां गुंजाइश बनती है। जी हाँ, अगर और अधिक जानकारी चाहिए बीसी और बीबीए के लिए तो डायल करें 7520-800-800। वाव, क्या नंबर है, 7520-800-800। एक बात और बताना चाहते हैं, दाखिला वहां लें, एडमिशन वहां लें जहां, हाँ, किसी विशेष यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त हो, और अगर जो स्थायी मान्यता प्राप्त हो तो और भी अच्छा है। और आर्किड बिजनेस कॉलेज बीसीए और बीबीए के लिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का एकमात्र स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थान है। अगर स्थायी मान्यता नहीं है ना, तो बीच में कुछ भी हो सकता है।
3: नहीं, कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
4: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
3: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
4: आर्किड बिजनेस कॉलेज, जहां से बीसीए या बीबीए कोर्सेज कर सकती हो।
3: फिर तो आर्किड से ही बीसीए या बीबीए करना सेफ है।
5: आर्किड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड़ पटना। कॉल करें 7520-800-800। याद रखें 7520-800-800।
2: उड़ान, उड़ान में सबसे पहले अब हम स्वागत करते हैं आशीष जी का। और जो सवाल हमसे पूछा गया ना कि इंजीनियरिंग, बीसीए और बीबीए, हम चीजों को खोलकर रख देते हैं। आप समझिए, आप जानिए, आप महसूस कीजिए, आप निर्णय लीजिए, माता पिता, बड़े बड़े भाई बहन, जिससे भी हो, लेकिन निर्णय लेने से पहले इंस्टीट्यूशन को जरूर देखिएगा। आगे और चर्चा करेंगे। नंबर है 7520-800-800, 7520-800-800। बीसी और बीबीए के लिए अगर जो आर्किड बिजनेस कॉलेज से आप करना चाहते हैं तो ये डायल करें 7520-800-800। आशीष जी, एक बात बताइए कि बीसीए और बीबीए और इंजीनियरिंग, इसके बारे में ढेर सारे फोन कॉल्स आए थे, बताइए।
6: देखिए, ऐसा है कि अगर आप एक डेटा, मैं आपको शेयर करना चाहता हूं यहां पर, आज के डेट में एक डेटा कहीं मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि आज हमारे देश में जो इंजीनियर्स की जो संख्या, इंजीनियर्स की जो संख्या है वो लगभग 14 लाख के आसपास में है। मैं ये 14 लाख उनको बोल रहा हूँ जिनके पास बीटेक की डिग्री है। इस 14 लाख में से मात्र 4 लाख के पास जॉब है, मात्र 4 लाख के पास।

0: उसके अतिरिक्त 3 लाख ऐसे हैं जिन्होंने अपना इंजीनियरिंग छोड़ दिया, उसके बाद वो कहीं बैंक में काम कर रहे हैं या कोई इंश्योरेंस बेच रहा है कहीं, या किसी ने बिजनेस कर लिया, और बाकी 7 लाख लोग निकल गया, बाकी 7 लाख आज भी रोड पर जॉब के लिए ढूंढ घूम फिर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, वो टहल रहे हैं, उतना पैसा लगा करके, इतना समय लगा करके। मेरा यही कहना है, यदि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स अगर आपका मजबूत नहीं है, तो केवल इंजीनियरिंग का कोर्स करने के लिए इंजीनियरिंग मत कीजिए। उसके अतिरिक्त अगर आपको लगता है कि आपका जो टैलेंट है वो एवरेज है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा कोर्स मैं बताता हूँ, जिस कोर्स को आप ज़रूर करिए और आप देखिए उसका कितना फ़ायदा आपको मिलता है। उस कोर्स का नाम है BCA, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। 3 साल का कोर्स है। 3 साल का कोर्स करने के बाद आप 2 साल आप MCA कहीं से कर लीजिए, फिर आपको देखिए कितने सारे एवेन्यूज। MCA करने के बाद में बैंक से लेकर के इवन के जो IT कंपनी से लेकर के जितनी बड़ी कंपनियां हैं, आप TCS का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का या विप्रो का विज्ञापन उठा करके देखिए, उसमें लिखा रहता है जो मिनिमम क्वालिफिकेशन MCA, वो MCA आप कीजिए BCA करने के बाद में, या BCA करने के बाद भी इवन बहुत सारी IT कंपनीज वो आपको एंट्री लेवल जॉब के लिए आपको अब्सॉर्ब कर लेती है, जैसे हमारे यहाँ भी हो रहा है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज इन कंपनियों में कंपनी उसका पूरा का पूरा प्रोफाइल हमारे पास है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि BCA एक अच्छा कोर्स है, इस कोर्स को आप करिए और करने के बाद आपको लगेगा आगे चल करके कि हमने इंजीनियरिंग से बेहतर किया। हाँ, अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत मजबूत है, एकदम आप उसमें टॉपर्स में हैं, तो फिर आपको जरूर इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहिए। अन्यथा मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की मैं देख रहा हूँ कि बेरोजगार इंजीनियरों की भीड़, बीटेक स्टूडेंट्स की भीड़, तो मुझे लगता है आप कंपेयर कर दीजिए दोनों को, BCA करने के बाद स्टूडेंट्स की भीड़ जो बेरोजगारों की भीड़, और इंजीनियरिंग करने के बाद बेरोजगारों की भीड़, आपको ये लगेगा कि इंजीनियरिंग में बेरोजगारों की भीड़ ज़्यादा है और BCA करने के बाद कम है। तो मेरा समझना यही है कि आप BCA करिए और उसका आप लाभ लीजिए, आगे चल के MCA कीजिए, बाकी सब मतलब बहुत अच्छा होगा।
1: आशीष जी, आपने तो पूरी तरीके से खोल कर सारी चीजें बता दी कि BCA और BBA और इंजीनियरिंग। जी हाँ, हम अपने से कुछ भी नहीं कहना चाहते। आप एक करियर काउंसलर भी हैं और लगातार लिखते पढ़ते भी रहते हैं, न्यूज़पेपर में भी आपको लोग देखता है और रेडियो पर सुन भी रहा है। बहरहाल, BCA और BBA हम बार बार कहते हैं, तोता की तरह राजेश रट लिया है BCA और BBA, क्योंकि समाज में हम देख रहे हैं, आप नज़र उठा कर देखिए ना, BCA और BBA के लिए ही सारे लोग दीवाने हो रहे हैं, और आपके मन के अंदर भी कहीं ना कहीं इन दो कोर्सों ने कहीं ना कहीं जगह बनाई है। चुनने से पहले, हाँ, संस्थान चुनने से पहले बहुत बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है। हाँ, बहुत कुछ देखना पड़ता है, एफिलिएशन से लेकर सारी चीज़ें, कि संस्थान कहाँ से एफिलिएटेड है, कहाँ से मान्यता प्राप्त है, किस यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है, वहाँ फैकल्टी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, जॉब का प्लेसमेंट क्या है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। इसीलिए आर्केड बिजनेस कॉलेज का हम नाम लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप यहाँ आके दाखिला ले लीजिए, ना, कभी नहीं। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर कहते हैं कि जो 27 वर्षों से लगातार लगा हुआ है ना BCA और BBA के लिए, तो कुछ तो बात होगी। आर्केड बिजनेस कॉलेज की तरफ से ही ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं, जो राजेंद्र नगर आर्य कुमार रोड सगुना मोड़ पटना में है। एक बार नंबर बता रहा हूँ, जरूर डायल कीजिएगा, 7520800800। हमने साइंस स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट किए हैं उनकी बात की, PCM वालों की। अब सवाल पूछते हैं आशीष जी से कि आर्ट्स कॉमर्स इन बच्चों के लिए कितना कारगर साबित होगा BCA और BBA की पढ़ाई?
0: देखिए, आर्ट्स से जिसने किया है, वैसे तो देखिए अभी कई विश्वविद्यालय BCA के कोर्स के लिए मैथमेटिक्स जरूरी मांगते हैं 10+2 में, लेकिन कईयों ने रिलैक्स भी कर दिया है। लेकिन मेरा समझना यही है कि यदि आपने आर्ट्स से अगर 10+2 किया है, तो फिर BBA कोर्स, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स बहुत बेहतर होगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको किसी ऐसे फील्ड की तरफ जाना चाहिए जहाँ पर आपका निश्चित जॉब मिले। वैसे स्थिति में BBA कीजिए, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद अगर आपने किसी अच्छी जगह से MBA कर लिया, तो फिर पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही सेम मैसेज मैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी देना चाहूँगा जिन्होंने 10+2 कॉमर्स के साथ किया है, क्योंकि कॉमर्स के बहुत सारे पेपर्स ऐसे होते हैं जो पेपर्स उनको BBA में फिर से दोबारा पढ़ने पड़ते हैं, तो उनको बहुत सुविधा होगी। कॉमर्स करने के बाद अगर आप BBA करते हैं, उसके बाद MBA करते हैं, तो आपको फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी, और जो लोग पूरे बिहार में ये रेडियो पर बज रहा है, आकाशवाणी के सारे केंद्र इसको प्रसारित कर रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि आपकी नज़र में अगर ये दोनों कोर्स BCA और BBA में से किसी एक को चुनना हो तो वो किसको चुने?
0: देखिए, मैं यही कहूँगा कि अगर आपका 10+2 में PCM रहा है और मैथमेटिक्स अगर आपका ठीक है, अच्छा है, तो फिर आपको BCA करना चाहिए। और अगर आपका ठीक है, आपने PCM भी कर लिया है उसके बाद भी, लेकिन मैथमेटिक्स भी एवरेज है, तो आप BBA चुन सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि BCA और MCA करने के बाद एक आप प्रोग्रामर बनते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो आदमी जिसका मैथमेटिक्स और फिजिक्स जितना बेहतर होता है वो उतना ही अच्छी एनालिसिस कर सकता है, और एनालिसिस अगर आपकी जो आपकी स्किल अगर है तो आप उतने अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो मेरा समझना यही है कि कुल मिलाकर के अगर आपको खुद आकलन करना है मार्क्स के हिसाब से, मैं चलिए बोल देता हूँ, अगर आपको PCM में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में अगर आपको 70% से ज़्यादा मार्क्स है या 60% से भी ज़्यादा मार्क्स है तो आप BCA ले सकते हैं, लेकिन अगर उससे कम है, 60-70% से कम अगर है, तो फिर आपको BBA की तरफ जाना चाहिए। और वैसे ही आर्ट्स के स्टूडेंट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी यही थ्योरी में कहूँगा कि अगर आपको आपके अपने सब्जेक्ट में, अगर मान लीजिए कॉमर्स को, तो मैं बोलूँगा कि वो BCA की तरफ ना जाएं, बेहतर है वो BBA ही लें, क्योंकि उनका ऑलरेडी उनका कॉमर्स का एक बैकग्राउंड रहा है और आगे चल करके उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उनको पढ़ने में सुविधा होगी BBA कोर्स में, और फिर आगे MBA में भी वही सारी चीज़ें विस्तार से पढ़ना होगा उनको।
1: वाह वाह आशीष जी, क्या बातें आपने कही। उड़ान कार्यक्रम लेकर आने का हमारा मकसद यही है कि सारी चीज़ों को खोल कर हम अपने एक्सपर्ट से रखवा दें, तार तार कर दें एकदम, कि आपको क्रिस्टल क्लियर दिखाई देने लगे कि अगर राजेश BCA और BBA की बात कर रहा है तो क्यों कर रहा है। ISE, हाँ, जिन्होंने PCM के साथ किया, आर्ट्स के साथ किया, कॉमर्स के साथ किया, कौन सा कोर्स उनके लिए रोजगार पैदा करने में सहायक होगा, कौन से कोर्स को चुनना होगा। जी हाँ, यही हमारा मकसद है उड़ान कार्यक्रम को लेकर आने का, और इसीलिए हम नंबर बार बार बताते हैं, कहीं भी असुविधा लगे, कहीं भी परेशानी लगे ना, तो आर्केड बिजनेस कॉलेज का ये जो नंबर है 7520-800-800 पर बात करें, क्योंकि ये लोग 27 वर्षों के साथ BCA और BBA के साथ चल रहे हैं और न जाने कितने युवा रोजगार में आ चुके हैं। एक बात और कहते हैं कि कोर्स आपने चुन लिया, संस्थान चुनने में भी सावधानी बरतनी चाहिए। पैसा आप फिर से कमा सकते हैं लेकिन गुजरा हुआ वक्त आप वापस नहीं ला सकते हैं। जहां तक पैसे की बात चली तो अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, 4 लाख तक आपको लोन मिल सकता है जिस पर आप पढ़ाई कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे बड़ी बात फैकल्टी, जैसा कि आशीष जी ने कहा है कि फैकल्टी तो आत्मा होती है किसी भी संस्थान की। इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर किस यूनिवर्सिटी की डिग्री आपको मिलेगी, कहां से मान्यता प्राप्त है, वो संस्थान स्थायी मान्यता प्राप्त है कि नहीं, और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आर्केड बिजनेस कॉलेज पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से, हाँ, BCA और BBA के लिए एकमात्र स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थान है। और अगर स्थायी मान्यता प्राप्त नहीं हुआ तो ये स्थिति भी हो सकती है,
2: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
3: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
2: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
3: आर्केड बिजनेस कॉलेज, जहां से BCA या BBA कोर्सेज कर सकती हो।
2: फिर तो आर्केड से ही BCA या BBA करना सेफ है।
4: आर्केड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड़, पटना। कॉल करें 7520-800-800, याद रखें 7520-800-800।
1: आशीष जी, चलते चलते आर्केड बिजनेस कॉलेज, आज का यूथ और टेक्निकल पढ़ाई, क्या कहना चाहिएगा?
0: मैं समझता हूँ कि आप आइए, अगर आप 10+2 कर चुके हैं और फिर उसके बाद अगर कोई किसी प्रोफेशनल कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं तो आप आइए। आर्केड बिजनेस कॉलेज के 2 कैंपस हैं, राजेंद्र नगर और सगुना मोड़, और वहाँ पर आप BCA या BBA जिसमें भी, जो भी, जैसा मैंने आपको बताया उस हिसाब से आप डिटेल्स लीजिए, सारा इंक्वायरी कीजिए और आपको समझ में आए। प्लेसमेंट बुलेटिन देखिए, आप देखिए अभी तक कितने बच्चों का, सभी बच्चों का रियल फोटो के साथ में, किस किस कंपनी में वो जॉब में गए हैं, उन सब का पूरा डिटेल्स हम आपको पूरा एक ब्यौरा देंगे, लिखित वो पूरा प्रिंटेड देंगे जिसको आप ले जा सकते हैं, और उसमें पूरा आप देखिए, देख करके आपको समझ में आ जाएगा। क्या पता उसमें से कहीं आपके गाँव का भी कोई बच्चा निकल जाए जो, और उससे फिर आप बात कीजिए, अगर उसमें आपको लिखा नजर, उसको फोन कीजिए कि भाई तुम यहाँ पे हो ना, तो आपको बताएगा कि हाँ हम यहाँ पे हैं, इस कंपनी में हैं, ऐसे हैं, और फिर आप आइए, फिर आपको आपको तैयार करने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। मैं फिर कहता हूँ, आप केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और आपको एक अच्छा प्रोडक्ट बना करके हम निकाल।
1: थैंक यू आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी चले गए और राजेश के पास अब बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि उड़ान कार्यक्रम में हम सारी

0: चीजों को खोल कर रख दें और आप उसे सुने, आपके माता पिता बड़े भाई बहनों के साथ बैठ कर डिसीजन लें, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का डिसीजन है। हमारी समझ से बीसीए और बीबीए की पढ़ाई बहुत ही उत्तम है। आप डायल कर सकते हैं, 27 वर्षों से इस कोर्स के साथ काम कर रहे हैं आर्केड बिजनेस कॉलेज वाले। नंबर है 7520800800, 7520800800। तो राजेश को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आर्केड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। रात्रि के 8:15 हो चुके हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा।

आकाशवाणी भागलपुर से अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुन रहे हैं रजनीगंधा। आइए अब सुनते हैं श्रेया घोषाल और उदय मजुमदार को फिल्म है गुरु।

सावन को आने दो। रजनीगंधा कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। आवाज़ें जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा की हैं।

आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है मीडियम वेव 205.76 मीटर पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब दिल्ली से समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांसद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
1: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सांसद संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया

0: विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण दो की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
1: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
2: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है।

0: वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्हास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खमेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खामेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 बजे कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 बजे पैराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanand, Gujarat to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says India successfully overcame West Asia crisis through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources. Monsoon session of Parliament to be held from 20th of this month to 13th August. India's defence exports reach a record high of over 38,000 crore rupees, says Defence Minister Rajnath Singh. Heavy rain disrupts normal life in many parts of Maharashtra, several rivers in spate. And in men's cricket, India set a target of 191 runs for hosts England in second T20 in Manchester. Vaibhav Suryavanshi becomes youngest debutant in international cricket. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi emphasized that this development is the next step in India's massive electronics revolution, which has already established the country as the world's second largest mobile phone manufacturer. He stated that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem, but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। पांच साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: Lauding the diverse workforce at the plant, the Prime Minister described the complex as a mini-India where engineers and professionals from various states are working under one roof to power the global digital economy. The Prime Minister also said the Sanand plant is geared to produce 20 crore chips annually. He congratulated CG Semi on setting an ambitious future target of scaling production to 500 crore chips per year.
2: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यहीं नहीं रुकने वाले हैं आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे
1: Addressing at the occasion, Union Minister Ashwini Vaishnaw announced that India will have 5 operational semiconductor plants by the end of 2026. He emphasized that chips produced at the Sanand plant will cater to diverse industrial applications and will be exported to global markets, including the United States, Japan and Europe.
3: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है
4: टुडे इंडियाज थर्ड सेमीकंडक्टर प्लांट इज बीइंग लॉन्च्ड द प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड द फर्स्ट प्लांट ऑन 28th फरवरी द सेकंड प्लांट ऑन 31st मार्च एंड टुडे ऑन 4th जुलाई द थर्ड प्लांट गिवन द स्पीड विद व्हिच द प्राइम मिनिस्टर अप्रूव्ड 12 प्लांट्स इन द कैबिनेट एंड विद कमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्टिंग इन 3 आउट ऑफ दोस 12 प्लांट्स अ न्यू वेव ऑफ कॉन्फिडेंस इन इंडियाज सेमीकंडक्टर कैपेबिलिटीज हैज इमर्ज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड टुडे
3: आज दुनिया भर में भारत की कंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है
1: Earlier, upon reaching Sanand, the Prime Minister toured the high-tech plant and inspected the production process. He also interacted closely with engineers and operators working inside the facility. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan, marking a major push to infrastructure, energy, transport and employment generation in the state. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Thereafter, he dedicated the country's most modern greenfield refinery cum petrochemical complex to the nation in Pachupadra in Balotra district, which is an industrial processing plant built from scratch on undeveloped clean land. He also inspected the refinery's state-of-the-art control room, interacted with engineers and technical experts, flagged off fuel tankers, and virtually laid the foundation stone for Jaipur Metro Phase 2. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy, and prudent management of national resources.
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है.
1: Mr. Modi also handed over appointment letters to around 54,000 youth recruited across various departments of the government of Rajasthan. Prime Minister Modi will be on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand from Monday. At the invitation of Indonesian President Prabowo Subianto, Prime Minister Modi will undertake a state visit to Indonesia from the 6th to the 8th of this month. This will be Mr. Modi's fourth visit to Indonesia and his first bilateral visit since India-Indonesia relations were elevated to a comprehensive strategic partnership in May 2018. Here is a report from our correspondent in Jakarta.
5: During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral discussions with President of Prabowo Subianto, reviewing progress across key areas of cooperation under the strategic partnership. In Jakarta, the Prime Minister is also scheduled to address a large gathering of the Indian diaspora, underscoring the deep cultural and historical ties between the two nations. The Indian community in Indonesia is eagerly waiting for the visit. Speaking to Akashvani, Siddharth Taparia, President of the India Club of Jakarta, highlighted the strong friendship between India and Indonesia. He noted that this high-level engagement reflects the importance both countries place on each other. Mr. Taparia emphasized that India and Indonesia, as two of the fastest-growing economies with large populations, together create a vibrant marketplace. He expressed optimism that two nations will deepen collaboration in infrastructure, trade, defense, agriculture, natural resources, and other sectors. Shondi Bandashgupta, Jakarta, Indonesia.
1: Following his visit to Indonesia, Mr. Modi will embark on the second leg of his visit to Australia from the 8th to the 10th of this month. On the third and last leg of his three-nation visit, Mr. Modi will be in New Zealand on the 10th and 11th of July. The monsoon session of Parliament will commence on the 20th of this month. It will continue till the 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju today informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of Parliament from 20th July. Mr. Rijiju said the session will focus on meaningful debate, discussion and decisions on issues of national importance. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Defence Minister Rajnath Singh today highlighted India's significant progress in manufacturing and technology, saying that the country's defence exports have reached a record of over 38,000 crore rupees. Addressing an event organised by a private media organisation in New Delhi, Mr. Singh said the sharp rise from 686 crore rupees in the financial year 2013-14 reflects an almost 57-fold increase and underlines growing global confidence in Make in India defence platforms.
6: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है.
7: टुडे आवर डिफेंस प्रोडक्शन हैज रीच्ड मोर देन 1,78,000 करोड़ रुपीस. अंटिल 7 8 और 9 इयर्स अगो द डिफेंस प्रोडक्शन ऑफ आवर्स वाज एप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ रुपीस. डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैव आल्सो रीच्ड ए रिकॉर्ड हाई ऑफ ओवर 38,000 करोड़ रुपीस एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इन 2013 एंड 14 इट वाज ओनली 686 करोड़ व्हिच इज नाउ increased by 57 times today.
6: जो आज यह बढ़कर 57 times बढ़ चुका है.
1: Industry experts have said that ethanol blending program has not been introduced overnight, but has been implemented through a measured step-by-step and scientifically driven process.

0: कंडक्टर असेंबली और टेस्ट ओसेट प्लांट का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव और गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल के साथ साथ आलमी टेक कंपनियों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। वहां बड़ी तादाद में मौजूद लोगों से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि यह कदम भारत के बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स इनकलाब में अगला मरहला है, जिसकी बदौलत भारत को मोबाइल फोन तैयार करने वाले दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुल्क का रुतबा पहले ही हासिल है। जनाब मोदी ने कहा कि सानंद में सीजी सेमी ओसेट मरकज से न सिर्फ अंदरूनी मुल्क चिप मैन्युफैक्चरिंग इको निजाम को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे आलमी सतह पर सेमी कंडक्टर वैल्यू चेन निजाम में भारत की पोजीशन में इजाफा होगा और तकनीकी खुद किफालत को भी फरोग हासिल होगा। वजीर आजम ने इस एतमाद का इजहार किया कि इस तारीखी प्रोजेक्ट से सानंद सेमी कंडक्टर के एक दरख्शां आलमी मरकज के तौर पर उभरेगा। जनाब मोदी ने इसे विकसित भारत का नक्शराह और मेक इन इंडिया का दूसरा कदम करार दिया। मस्कूरा प्लांट में मुतनव्वा अफरादी कुव्वत की सताइश करते हुए वजीर आजम ने कॉम्प्लेक्स को एक मिनी इंडिया से ताबीर किया, जहां मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर्स और पेशावर अफराद आलमी डिजिटल मईशत को तकवीत पहुंचाने की खातिर एक छत के नीचे काम कर रहे हैं। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि इस उभरते हुए इको निजाम से मसनूई जहानत और नए सिलसिले की टेक्नोलॉजियों के शोबे में भारत के नौजवानों को मजीद आगे बढ़ने के वसी मौके हासिल होंगे। वजीर आजम ने कहा कि सानंद का प्लांट सालाना 20 करोड़ चिप्स तैयार कर सकेगा। जनाब मोदी ने पैदावार बढ़ाकर सालाना 500 करोड़ चिप्स तैयार करने का मुस्तकबिल का बड़ा निशाना तय करने पर सीजी सेमी को मुबारकबाद दी।
1: सीजी सेमी का ये प्लांट भारत, जापान और थाईलैंड के हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स के साझा प्रयासों का भी प्रतीक है। ये केवल एक बिजनेस वेंचर नहीं है, ये टेक्नोलॉजी, भरोसे और साझेदारी का ऐसा मॉडल है जो भारत की सेमीकंडक्टर जर्नी को नई गति देने वाला है। बीते सवा दो सालों में आप सभी ने स्क्रैच से स्केल तक इस पूरी फैसिलिटी को आकार दिया है। आज हम इसके कमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी।
0: इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया कि मुल्क में इस साल के आखिर तक 5 सेमी कंडक्टर प्लांट्स काम करने लगेंगे। मजकूरा शोबे की तेज रफ्तार पेशरफ्त को उजागर करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि सानंद मरकज में भूमि पूजन की तकरीब से लेकर कमर्शियल पैदावार का सिलसिला शुरू होने तक सिर्फ 27 महीने लगे।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: जनाब अश्विनी वैष्णव ने जोर देकर कहा कि सानंद प्लांट में तैयार होने वाले चिप्स का इस्तेमाल मुख्तलिफ सनती शोबों में किया जाएगा और उन्हें अमेरिका, जापान और यूरोप समेत आलमी मार्केट्स में भी बरामद किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में 1,05,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा, जिससे रियासत में बुनियादी ढांचे, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और रोजगार के मौके पैदा करने को बड़ी तकवीत मिलेगी। दिनभर के अपने दौरे में वजीर आजम ने जोधपुर हवाई अड्डे पर नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह किया। इसके बाद जनाब मोदी ने बालोतरा जिले में पचपदरा के मकाम पर मुल्क का सबसे जदीद तर्ज का ग्रीन फील्ड रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स मुल्क के नाम वक्फ किया। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या मादनियात के लिए एक ऐसा सनती प्रोसेसिंग प्लांट है जिसे साफ सुथरी कच्ची जमीन पर नए सिरे से बनाया जाता है। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मगरबी एशिया की महाजराई से 21वीं सदी का तवानाई का सबसे बड़ा बहरान पैदा हो गया था, लेकिन भारत ने बरवक्त फैसलों, मौसर सिफारतकारी और कौमी वसाइल के मोहतात बंदोबस्त के जरिए इस चैलेंज पर कामयाबी के साथ उबूर हासिल किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभाव

0: भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: जनाब मोदी ने कहा कि बहरान के दौरान दुनिया के मुल्कों के साथ भारत के दोस्ताना ताल्लुकात का अहम रोल रहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सरकार ने आलमी सतह पर उथल पुथल के बावजूद खाना पकाने की गैस की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं होने दिया।
0: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरीज के सामर्थ्य पर फोकस किया, औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरीज को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
1: जनाब मोदी ने इस मौके पर तकरीबन 54,000 नौजवानों को तकर्रुरनामे भी सौंपे, जिन्हें राजस्थान सरकार के मुख्तलिफ महकमों में भर्ती किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस महीने की 20 तारीख को शुरू होगा और 13 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बताया कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से पार्लियामेंट का मानसून इजलास तलब करने की सरकार की तजवीज को मंजूरी दे दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब रिजिजू ने कहा कि इस इजलास में कौमी अहमियत के हामिल मामलात पर बामकसद बहस मुबासे और फैसलों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी में भारत की नुमाया तरक्की को ये कहते हुए उजागर किया कि मुल्क की दिफाई बरामदात रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तक पहुंच गई हैं। नई दिल्ली में मीडिया के एक निजी इदारे की जानिब से मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि माली बरस 2013-14 में 686 करोड़ रुपये से जबरदस्त इजाफा तकरीबन 57 गुना है और इससे मेक इन इंडिया दिफाई प्लेटफॉर्म में बढ़ते आलमी एतमाद की अक्कासी होती है।
2: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स

0: सबसे ज्यादा बुलंदी 1,78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तक पहुंच गई, जो 2014-15 की सतह से तकरीबन 3 गुना है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग की वसीतर हुसूलियाबियों को उजागर करते हुए जनाब सिंह ने मेक इन इंडिया पहल के तहत मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चरिंग की तौसी, मोटर गाड़ियों की बरामदात में इजाफे, अंदरून मुल्क तैयार करदा रेल इंजन और डिजिटल बुनियादी ढांचे की मजबूती को उजागर किया। गुजश्ता दहाई में मुल्क की तरक्की के बारे में बात करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में हुकूमत ने किल्लत का इजाला किया, मौके बढ़ाए और वर्क कल्चर में यकसर तब्दीली पैदा की। उन्होंने कहा कि हुकूमत रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म की पॉलिसी के जरिए विकसित भारत की मजबूत बुनियाद कायम कर रही है। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की इत्तलात सामने आने पर टेलीग्राम ऐप को नोटिस जारी किया है। सरकारी जराये के मुताबिक सरकार ने टेलीग्राम को हिदायत दी है कि चोरी छुपे हासिल की गई फिल्मों और ओवर द टॉप ओटीटी प्रोग्रामों के खिलाफ बिला ताखीर इकदाम किए जाएं। जराये ने मजीद बताया कि मस्कूरा प्लेटफॉर्म से कहा गया है कि वो 15 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करे। इंडोनेशिया के सदर की दावत पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस माह की 6 से 8 तारीख तक इंडोनेशिया का दौरा करेंगे। वजीर आजम मोदी का इंडोनेशिया का यह चौथा और मई 2018 में भारत इंडोनेशिया ताल्लुकात को जामे कलीदी शराकतदारी तक वसूल दिए जाने के बाद पहला दौरा होगा। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: अपने दौरे के दौरान वजीर आजम मोदी इंडोनेशिया के सदर के साथ बाहमी बातचीत करेंगे, जिसमें कलीदी शराकतदारी के तहत अहम शोबों में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। जकार्ता में वजीर आजम का वहां आबाद भारतीय बिरादरी के एक बड़े इज्तम से खिताब का भी प्रोग्राम है। इंडोनेशिया में भारतीय बिरादरी वजीर आजम के दौरे की मुंतजर है। जकार्ता में इंडिया क्लब के सदर सिद्धार्थ तपाड़िया ने आकाशवाणी से बात करते हुए भारत और इंडोनेशिया के दरमियान मजबूत दोस्ती को उजागर किया। उन्होंने कहा कि इस आला सतही रबते से ये बात नुमाया होती है कि दोनों ममालिक एक दूसरे को खास अहमियत देते हैं। उन्होंने इस बात पर पुरउम्मीदी का इजहार किया कि दोनों ममालिक बुनियादी ढांचे, तिजारत, दिफा, ज़राअत, कुदरती वसाइल और दीगर शोबों में इश्तराक को मजीद मुस्तहकम करेंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमरीका के 250वीं यौम आजादी पर सदर डोनाल्ड ट्रंप और वहां के अवाम को मुबारकबाद दी है। जनाब मोदी ने अपने पैगाम में कहा कि भारत और अमरीका के ताल्लुकात कलीदी साझेदारी से आगे बढ़कर हैं, जो जमहूरियत, कानून की अमलदारी और अपने अवाम की लामहदूद सलाहियत के मुश्तरक एतमाद पर मबनी है। सनअती माहरीन ने कहा है कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम रातों रात मुतारिफ नहीं किया गया, बल्कि ये एक सोचा समझा मरहलेवार और साइंस पर मबनी अमल है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की साबिक चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम 2018 में सिलसिलेवार तबादला ख्याल और मुतालिका फरीकों के सलाह मशवरे के लिए लोगों के सामने रखा गया। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे रियासत भर में मामूलात जिंदगी मुतासर हैं। मुंबई और उसके मजाफाती इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे मुंबई, थाने और पालघर में स्कूलों को बंद करना पड़ा। पालघर जिले के हिस्सों से सैलाब किसी सूरत हाल की खबर है, जिससे सड़क और रेल ट्रैफिक मुतासर हुआ है। रायगढ़ में अहम दरियाओं में पानी की सतह बढ़ गई है। मुसलसल बारिश से कोल्हापुर में पंचगंगा और दीगर दरियाओं में भी पानी की सतह में इजाफा हुआ है। ईरान के साबिक रहबर आला आयतुल्ला सैयद अली खामनाई की 6 रोजा सरकारी आखिरी रसूमात का सिलसिला आज से तेहरान में शुरू हो गया। इसमें हजारों सोगवार शिरकत कर रहे हैं और ईरान के मरहूम रहनुमा को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। मर्दों के क्रिकेट में मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफोर्ड में दूसरे T20 बैन अलावामी क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड की जीत के लिए 191 रन का निशाना रखा है। अब से कुछ देर पहले तक इंग्लैंड ने 5 ओवर्स में 3 विकेट पर 52 रन बना लिए थे। इससे कबल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हुए भारत ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 190 रन बनाए। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए अपना पहला बैन अलावामी मैच खेलने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए। वैभव ने 15 साल और 99 दिन की उम्र में अपना पहला मैच खेला। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सानंद में सीजी सेमी के आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट प्लांट का इफ्तिताह किया, ताकि चिप मैन्युफैक्चरिंग इको निजाम को मुस्तहकम बनाया जा सके। वजीर आजम ने कहा है कि भारत ने बरवक्त फैसलों, मौसर सिफारतकारी और कौमी वसाइल के मोहतात बंदोबस्त के जरिए मगरबी एशिया बहरान पर कामयाबी के साथ उबूर हासिल किया। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस महीने की 20 तारीख से लेकर 13

0: अगस्त तक होगा। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। और मर्दों के क्रिकेट में मैनचेस्टर में भारत ने दूसरे टी20 मैच में इंग्लैंड के सामने 191 रन का निशाना रखा। वैभव सूर्यवंशी बैन अल्कवामी क्रिकेट में कदम रखने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार, सावन अगर हकीकत है तो आषाढ़ एक कल्पना, ऐसी कल्पना जिसमें भरे होते हैं खुशी के रंग, झीनी बहार, गर्म हवाओं के बीच हल्की सी फुहरन, जैसे तस्वीर खिंचवाने के बाद उसे देखने की त्वरित ललक होती है या कपड़े सिलवाने के बाद उन्हें पहनने की, ठीक वैसे ही आषाढ़ में धरती खुद को आकाश के आईने में निहारने को आतुर रहती है, खूब सजना संवरना चाहती है, बादलों और हवाओं को हरी ओढ़नी सिलने को दे आती है, खूब बतलाना और जतलाना चाहती है, सिद्ध करना चाहती है अपने होने और जग की सार्थकता को। आकाश और धरा के बीच जो रिक्त है, जो दूरी है, उसे पास लाती है, उसे मिलाती है, उसे बुलाती है ये बरखा। सही मायने में ये बरखा ही सार है, आधार है इस संसार सागर का, जीव जगत के अस्तित्व का। बरखा है तो ये कहानी है, बरखा है तो ये रवानी है, कोई इसमें बहुत ज्यादा डूब जाता है तो कोई सारा का सारा प्यासा रह जाता है। बरखा खुले में मैदानों में होती है, मगर घर की बहुत सी खिड़कियों से प्यास झांकती रह जाती है। बशीर बद्र का एक शेर साया से याद आ रहा है, जिस बादल की आस में जूड़े खोल दिए सुहागन ने, वो पर्वत से सिर टकरा कर बरस गया सहराओं में। सुनते हैं रूपक, मेघ, मन और मालवा।
4: प्रकृति की लय में आषाढ़ का एक दिन। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत में लिखा है, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघ मासलिष्ट सानुं वप्र क्रीड़ा परिणत गज वृक्षनीयम ददर्श। यानी आषाढ़ के पहले दिन जब यक्ष ने पर्वत के शिखर पर झुके हुए मेघ को देखा तो उसे ऐसा लगा कि एक हाथी क्रीड़ा में मगन हो टीले से मिट्टी खोद रहा है, तो यक्ष अपनी पत्नी यक्षिणी की स्मृति में व्याकुल हो उठता है और मेघ को ही अपना संदेश वाहक बनाने का निश्चय करता है। कालिदास की ही रचना मेघदूत से प्रेरित होकर मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक लिखा। ये कालजयी कृति आधुनिक हिंदी नाटक की आधारशिला मानी जाती है। आषाढ़ का पहला दिन भारतीय काव्य परंपरा में केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं है, वे मनुष्य के भीतर घटित होने वाले भाव परिवर्तन का भी समय है। उमड़ते मेघ, आकाश में फैलती घटाएं और वर्षा की पहली आहट भारतीय साहित्य में सदियों से

लिए काव्य परंपरा में केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं है, वे मनुष्य के भीतर घटित होने वाले भाव परिवर्तन का भी समय है। उमड़ते मेघ, आकाश में फैलती घटाएं और वर्षा की पहली आहट भारतीय साहित्य में सदियों से

0: आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गईं। और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई हूँ।
1: मल्लिका को भीगने का तनिक भी दुख नहीं होता। वो कहती है अगर मैं नहीं भीगती तो इस सुख से वंचित रह जाती। वो उस सौंदर्य का वर्णन करती है जो उसकी स्मृति में स्थायी रह जाता है और यहाँ प्रकृति उसके मन की अनुभूति बन जाती है। मल्लिका कहती है
0: मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघ मालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह रहता है।
1: मल्लिका केवल कालिदास से प्रेम ही नहीं करती, वह उनके भीतर के कवि को भी पहचानती है। इसीलिए जब उज्जैनी से कालिदास को राजकवि बनने का निमंत्रण मिलता है तो एक बड़ा द्वंद सामने आता है। कालिदास का मन तैयार नहीं होता, उन्हें लगता है कि इस गांव, इन पर्वतों, इन मेघों और मल्लिका से दूर होकर कहीं उनका रचनात्मक स्रोत सूख न जाए। मालवा की प्रकृति, आत्मीय परिवेश और मल्लिका, यही तो कालिदास की रचनात्मकता का आधार हैं। लेकिन मल्लिका अपने प्रेम को बंधन नहीं बनने देती, वह अपने व्यक्तिगत सुख से अधिक कालिदास की रचनात्मक यात्रा को महत्व देती है। वह उन्हें समझाती है कि उन्हें उज्जैनी अवश्य जाना चाहिए। जब कालिदास कहते हैं
2: फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राजाश्रय स्वीकार करने का ही नहीं है, उससे कहीं बड़ा प्रश्न मेरे सामने है।
0: और वो प्रश्न मैं हूँ, हूँ ना?
2: तुम पूरी तरह नहीं समझ रही हो मल्लिका, प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मैं अनुभव करता हूँ ये ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ, उन सूत्रों में तुम हो, ये आकाश और ये मेघ है, यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल हैं। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा।
0: विश्वास करो तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से अलग नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ के हरिन सब तुम्हारे साथ जाएंगे और मैं भी तुमसे दूर नहीं होंगी। जब कभी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़ते हुए मेघों से घिर जाया करूंगी।
1: कालिदास उज्जैनी पहुँचते हैं, वहाँ उन्हें यश मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, वैभव प्राप्त होता है, उनका व्यक्तित्व विस्तार पाता है और उनकी पहचान दूर दूर तक स्थापित होती है। लेकिन इसी यात्रा के साथ एक दूसरा परिवर्तन भी घटित होने लगता है। वे धीरे धीरे उस भाव भूमि से दूर होते जाते हैं जहां उनकी सृजनात्मक चेतना ने जन्म लिया था। जिस प्रकृति ने उन्हें संवेदना दी, जिन आत्मीय संबंधों ने उनकी कल्पना को आकार दिया और जिस सहज परिवेश ने उनके भीतर के कवि को जन्म दिया था, वही संसार अब उनसे छूटने लगता है। नाटक का अंतिम भाग इसी गहरी विडंबना को उजागर करता है कि मनुष्य जीवन में उपलब्धियां तो अर्जित कर लेता है पर कई बार उसी प्रक्रिया में वह उन स्रोतों से दूर हो जाता है जिन्होंने उसके व्यक्तित्व को निर्मित किया था। उल्लेखनीय है कि नाटक की शुरुआत भी आषाढ़ की वर्षा से होती है और अंत भी वर्षा के ही वातावरण में घटित होता है। किंतु जहां आरंभ की वर्षा में उल्लास, प्रेम और संभावनाएं हैं, वहीं अंत की वर्षा में समय, दूरी और जीवन की अनकही रिक्तता का बोध है। इसीलिए आषाढ़ का एक दिन केवल कालिदास की कथा नहीं है, यह नाटक हमें बताता है कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे कुछ ऐसी स्मृतियां और संबंध भी छूट जाते हैं जिनका मूल्य समय बीतने पर अधिक गहराई से समझ में आता है।

0: वही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, वैसे ही वर्षा हो रही है, वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ, किंतु
1: लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूँ कि मैंने वहाँ रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वो यहाँ के जीवन का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय है, मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है, और विरह विमर्दता यक्षिणी तुम हो।
2: मेघ, मन और मालवा, अभी आपने ये रूपक सुना। आलेख और वाचन सुश्री भावना झा का था और नाट्य स्वर था नेत्रा और प्रांजल का। साथियों, कहते हैं इंसान कुछ नहीं करता, समय प्रावर्तिक रहकर उसे उस ओर आकर्षित करता है। मोहन राकेश की कृति आषाढ़ का एक दिन विवेक, आत्मबोध और अनुभव जैसे बिंदुओं पर मौन रहकर भी बहुत कुछ कह जाती है, चिंतन के नए द्वार खोल जाती है और यथार्थ कुछ कुछ तत्कालीन समाज को आगाह करता है। लेकिन एक सीढ़ी नीचे उतरा जाए तो वहाँ एक ऐसी पीढ़ी दिखाई देती है जो जड़ता, बंधन, दमन और शोषण में लिपटी हुई है। निराशा के बीच वहाँ कोई उम्मीद भी नहीं। साहित्य के हर अनुयायी ने किसी न किसी मोड़ पर प्रेमचंद को अवश्य पढ़ा है। सब कुछ न सही, पर बहुत कुछ जरूर पढ़ा है। कुछ ऐसा भी है जो नहीं पढ़ा होगा। आइए ऐसी ही कुछ रचनाओं पर चर्चा करते हैं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से। आपसे बातचीत कर रही हैं युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा।
3: 31 जुलाई को महान कथाकार साहित्यकार प्रेमचंद की जयंती है, और प्रेमचंद जैसे बड़े और प्रसिद्ध लेखक की कुछ रचनाएं जो कालजयी हो गई, मगर ऐसी भी बहुत सी रचनाएं हैं जिनका जिक्र कम होता है या जिनको एक आम पाठक द्वारा या कुछ खास पाठकों द्वारा भी कम पढ़ा गया है। हालांकि वो बहुत अच्छी रचनाएं हैं अपने कथ्य में, अपने प्रभाव में। प्रेमचंद कुछ अनपढ़े कुछ अनसुने, इस विषय के इर्द गिर्द आज हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल वो ये है कि कुछ रचनाएं जो इतनी लोकप्रिय हो गई कि उनकी पहचान ही बन गई, तो क्या इसी लोकप्रियता ने उनकी अन्य उत्कृष्ट रचनाओं को पाठकों की दृष्टि से ओझल कर दिया?
4: देखिए, ओझल कर दिया शायद ज्यादा बड़ा एक बयान होगा, और वैसे एक हद तक तो ये देखिए होता ही है कि किसी भी रचनाकार ने अगर प्रचुर मात्रा में लिखा है तो उस प्रचुर मात्रा में लिखी गई रचनाओं में से कुछ रचनाएं अधिक चर्चित होती हैं, किसी समय विशेष में ज्यादा चर्चित होती हैं। समय बदलता है, युग के मानदंड और मान्यताएं बदलती हैं, आवश्यकताएं बदलती हैं, मनुष्य के सरोकार बदलते हैं, तो उसके साथ साथ कई कहानियां, कई रचनाएं, कई कविताएं, कई उपन्यास फिर से वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, फिर से प्रकट हो जाते हैं। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आपकी साहित्य में रुचि है और आपको साहित्य पढ़ने में सुख मिलता है और उससे आप कुछ समृद्ध होते हैं, तो हर साहित्यकार की और खासतौर से खूब लिखने वाले साहित्यकारों की जो बहुत चर्चित रचनाएं हैं, उनके अलावा भी कई रचनाएं होती हैं जिनको पढ़ने से आप समृद्ध होते हैं, और उनकी रचना धर्मिता के बहुत सारे ऐसे पहलू आपके सामने आते हैं जो कुछ रचनाओं विशेष पर अगर आप केंद्रित बने रहें तो उतने प्रकट नहीं होते हैं।
3: वो रचनाएं भी बहुत इजाफा करती हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि प्रेमचंद की ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जिनका साहित्यिक मूल्य आपकी दृष्टि में बहुत ऊंचा है लेकिन कम पढ़ी गई या कम चर्चित है या बिल्कुल ही अनदेखी रह गई?
4: देखिए, बिल्कुल अनदेखी रह गई वाली बात तो थोड़ी कठिन होगी, क्योंकि प्रेमचंद का जैसे मानसरोवर है जिसमें उनकी कहानियां संग्रहित हैं, और बहुत सारी कहानियां हैं, उन सारी कहानियों की चर्चा तो शायद एक बातचीत में एक आदमी के द्वारा करना लगभग असंभव ही होगा। एक संयोग है, मेरी स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश में हुई, और ये दौर था, ये 1960 के दशक का अंत था, और उस समय उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में हिंदी के विद्यार्थियों के लिए एक पुस्तिका हुआ करती थी जिसमें प्रेमचंद की ऐसी कहानियां थी जिनको बाल मनोविज्ञान के साथ जोड़ करके ज्यादा बच्चों के लिए इनको अनुकूल माना जाता

था और प्रेमचंद की कई कहानियां एक साथ पढ़ने का जो सौभाग्य था वो उससे शुरू हुआ। उसमें जहां तक मुझे याद है कि कफन शायद नहीं थी। सबसे चर्चित कहानियों में कफन है, पूस की रात है, लेकिन कई कहानियां थी जो बहुत चर्चित हैं और सब जानते हैं। ईदगाह जैसे महान कहानी है और ईदगाह उसमें थी। हाँ, एक कहानी और जो बहुत लोकप्रिय भी है और मुझे बहुत प्रिय है, बड़े भाई साहब, जिसमें अगर आप पढ़ें तो शिक्षा की बात है लेकिन साथ साथ मनोविज्ञान भी है। अद्भुत कहानी है। अगर इससे हम जोड़कर देखें तो मुझे एक कहानी जो बहुत प्रिय है वो गुल्ली डंडा है। इस कहानी में यह है मूल रूप से कि एक आदमी है जो अब किसी कस्बे में रहता था बचपन में, वहां उसका बचपन बीता है और अब वो बाद में उसके पिता का ट्रांसफर हो गया। वो थोड़ा ठीक ठाक समृद्ध घर का था, वो इंजीनियर बन गया और बहुत साल बाद उस अपने कस्बे में लौट गया है। अब वो याद कर रहा है तो उसमें उससे मीठी याद है वो गुल्ली डंडा के खेल की है और फिर उसके जो रोमांच का वर्णन करते हैं, पर गुल्ली डंडा का पूरा जो आनंद होता है, लेकिन साथ साथ एक सामाजिक चेतना अपने आप आती है। और कहा जाता है कि हिंदी में ऐसी कहानियों की कमी है जिनमें खेल का, विज्ञान का, ऐसे विषय जो है अपेक्षाकृत कम आते हैं। तो ऐसी ही अगर आप प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी, आप जो कि बड़ी काफी प्रसिद्ध कहानी है, पर उसमें भी आप याद करें कि भारतीय ढंग के शतरंज में प्यादे किस तरह चलते हैं और विलायती शतरंज में कैसे चलते हैं, इसको वो कहानी की विकास में और कहानी के मर्म के बयान में इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि सिर्फ शतरंज खिलाड़ी नाम नहीं रख दिया है। ऐसी एक कहानी जो मुझे याद आती है जिसमें बाल मनोविज्ञान की ही अगर बात करें तो रामलीला कहानी है। रामलीला कहानी हमारे आज के समय में मुझे लगता है बहुत ही सार्थक और प्रासंगिक है। अब इस कहानी में क्या है कि रामलीला हो रही है। अच्छा, शुरुआत इससे होती है कि वो आदमी जो कहानी लिख रहा है वो फिर वही मामला है कि वो बूढ़ा हो चला है और लिखते हैं कि अब जब मैं लोगों को खोटे लगाकर और हु करते दौड़ता हूं तो कई बार हंसी आती है।

0: तो हम लोग क्या करें, कैसे जाएं सोच रहे हैं। तो ये पिताजी से पैसे मांगने जाता है कि आप 2 रुपए दे दीजिए तो उन लोगों को दे दूं, तो वो नहीं देते। अब यहां बाल मनोविज्ञान का एक रूप देखिए। उस दिन से मुझे अपने पिता से ऐसी चिढ़ हो गई कि जीवन में उनके किसी सीख को फिर मैंने माना ही नहीं। इससे मेरा नुकसान भी हुआ, लेकिन मेरे अंदर ऐसी एक जुगुप्सा पैदा हुई कि आप उस नाचने वाली को अशर्फी देने को तैयार थे, लेकिन इन बच्चों को आप नहीं दे सके। और फिर वो कह लिखते हैं कि मैं कहीं से, मुझे 2 आने कहीं पड़े थे या मिल गए, और वो जाकर माँ से मांग के या कहीं से 2 आने दिए। यानी एक कहानी का वो एक सिरा उठाते हैं और उस सिरे से वो उसे कहां तक ले जाते हैं। कई कहानियां और दिमाग में घूमने लगी। प्रेरणा कहानी याद आ रही है, एक बच्चे की कहानी जिसको अपने शिक्षक से प्रेरणा मिली। ये सही है कि ज्यादा चर्चा ये केंद्र में वही कहानियां रहती हैं जो बहुत चर्चित हैं और होनी भी चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ।
1: तो जहाँ आप होनी भी चाहिए, जहाँ आप कह रहे हैं, वहाँ एक सवाल मन में आता है कि क्या जिन रचनाओं को हमने मान लिया है कि जो बहुत चर्चित हैं, बहु पठित हैं, उनमें और जो दूसरी और रचनाएं भी, जिनका भी आप जिक्र भी कर रहे थे उदाहरण सहित, तो क्या उनमें अपने कथ में, अपने प्रभाव में या उनकी अपनी शैली में, रचने की शैली में कुछ मूल अंतर है?
0: नहीं, अंतर नहीं है, विस्तार है। मुख्य बात यह है कि प्रेमचंद का एक तो विकास हुआ लगातार। प्रेमचंद ने बिल्कुल सामान्य किस्सा गोई से शुरू किया और वो निखरते चले गए। प्रेमचंद जो हैं, उनकी जो आखिरी दौर की कहानियां हैं, कफन है या पूस की रात है, ये उनकी सबसे महान कहानियां मानी जाती हैं। उनका अंतिम पूरा जो उपन्यास है वो गोदान है, जो उनका महानतम उपन्यास माना जाता है। और सच्चाई ये है कि उनका वैचारिक विकास भी हुआ। वो एक किस्सा गोई से आगे बढ़े, अपने समय से प्रभावित थे, आदर्शवादी चेतना के साथ आगे बढ़े, हृदय परिवर्तन बहुत होता था उनकी कहानियों में। लेकिन यह है कि प्रेमचंद

0: वो आप देखें कितनी चीजें हैं जो आपको लगता है कि बिल्कुल आपके आसपास घट रही हैं। इसको देखने के लिए आपको पढ़ना चाहिए कि कितने तरह से जीवन को उन्होंने देखा, उस पर विचार किया। प्रेमचंद ने कहा है कि सच्चा साहित्यकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है और साहित्य जो है राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है, उनके वाक्य हैं। लेकिन यह है कि मनुष्य से और सृष्टि से बहुत गहरा और आत्मीय प्रेम किए बिना आप साहित्यकार नहीं हो सकते, कलाकार नहीं हो सकते, अच्छे मनुष्य नहीं हो सकते। और प्रेमचंद के यहाँ उनकी कहानी कला में कितने व्यापक स्तर पर, कितनी सूक्ष्मताओं के साथ हमारा संसार, हमारा जीवन मिलता है, जो तब था और जो आज 9 दशक बाद भी प्रेमचंद हमारे पुरोधा हैं और हमारी उंगली पकड़कर हमें ले चल रहे हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतने विस्तार में प्रेमचंद की कहानियों के बारे में हमारे श्रोताओं को अवगत कराया आपने।
2: ये भी प्रेमचंद, अभी आप इस विषय पर वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से बातचीत सुन रहे थे। आपसे बातचीत कर रही थी युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा। साथियों, प्रेमचंद का युग यकीनन वैसा ही रहा होगा जैसा उनकी कृतियों में है, पर देश को आजादी मिलते ही सब कुछ न सही पर बहुत कुछ बदला। राष्ट्रीय धारा के कवियों की चेतना प्रस्फुटित हुई। अतीत और तत्काल के महासंगम की ज्वाला ने देशभक्ति, एकता और अखंडता के नए सूत्र रचे। आइए उस धारा के महत्वपूर्ण कवि रामधारी सिंह दिनकर की राष्ट्रभक्ति और शक्ति पर एक वार्ता सुनते हैं। दिनकर राष्ट्र के हितकर वार्ताकार हैं, वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी।
3: भारत के स्वाधीनता संग्राम में जो भारत के और भारतीय भाषाओं के, विशेष रूप से हिंदी के कवियों ने जो योगदान दिया, उसमें एक लंबी चौड़ी सूची है। माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है, और इसमें एक नाम है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर न सिर्फ राष्ट्रीय भावना के कवि हैं, बल्कि उनकी वाणी में और उनकी लेखनी में जो ओज था वो अद्भुत ओज था। और मंचों पर जिस तरीके से वो कविता का गायन किया करते थे, उसमें मुझे लगता है कि शायद सचमुच लोगों की भुजाएं फड़कने लगती होंगी।
4: सुख से नहीं, विवश उड़ने के पंख नहीं होने से, और मूक इसलिए कि उनके कंठ नहीं खुलते हैं। सोचा है यह कभी कि गूंगापन कैसी पीड़ा है, भीतर भीतर दर्द भोगना लेकिन बटा न पाना, उसे किसी से कहकर मेरे मन को चोट लगी है। बोल नहीं सकता जो उसका भी दुख कोई दुख है, कितने लोग समझते हैं भाषा उदास आंखों की।
3: आप लोगों को हैरत होगी कि रामधारी सिंह दिनकर 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बारदोली में किसान आंदोलन कर रहे थे, उसके संदर्भ में उस समय जब विजय संदेश रामधारी सिंह दिनकर कविता लिखते हैं, तो उस कविता को पढ़ करके आज भी भुजाएं फड़कने लगती हैं। और वो दृश्य सामने आ जाता है कि जब सरदार पटेल ने बारदोली के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और उसमें ब्रिटिश सरकार को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। मैं आपको उनकी 4 लाइनें सुना सकता हूं और अद्भुत आपको आनंद आएगा उस कविता को सुनने में। तेग तोप तलवार उधर थी, इधर निरीहों की थी आह, उधर मिटा देने की धुन थी, इधर प्रबल मिटने की चाह, इधर उठी हुंकार सृष्टि सारी वह डावा डोल हुई, प्रलय कारणी ध्वनि जनसत्ता की अतिशय अनमोल हुई, ठोक ताल दुंदुभी बजा शासन की हस्त हिलाई है, वीर बार दोली वालों की गाओ विजय बधाई है। निरे निहत्थे हैं पर क्यों डर जाएं तेरी फटकारों से, गगन गूंज जाएगा भीषण सहस हुंकारों से, दमन जेल से डरे कौन पाशवी शक्ति में क्यों भूला, भारतीय बच्चे झूलेंगे फांसी का प्यारा झूला, बलिवेदी पर चढ़कर जग में अनुपम कीर्ति कमाई है, वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है। और एक कविता नहीं, उनकी लंबी कविताओं की ऐसी सूची है जो बार बार जहां पर वो इस तरीके की बात करते हैं। और जिस तरीके से फांसी के फंदों पर झूल जाने वाले हमारे क्रांतिकारी थे, शहीद थे, उनके लिए ये कविताएं एक ऐसा संजीवनी का काम करती थीं कि उन कवियों की कविताएं पढ़ करके लोग भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ते थे। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी जैसी काव्य कृति लिखी और न सिर्फ राष्ट्र के स्तर पर, वो जिस तरीके से समाज में भी बात करते हैं। जाति जाति रटते केवल जिनकी पूंजी पाखंड, मैं क्या जानू जाति जाति हैं ये मेरे भुजदंड। एक कविता और मैं आपको सुनाना चाहूंगा, 1945 में ये कविता लिख रहे हैं। हाँ भारत की लाल भवानी, जवा कुसुम के हारों वाली, शिवा रक्त रोहिणी वसना कबरी में लाल सितारों वाली, कर में लिए त्रिशूल कमंडल, दिव्य शोभनी सुरसरी स्नाता, राजनीति की अचल

0: अमिनी साम्य धर्म ध्वज धर की माता, भारत भूमि के मिट्टी से श्रृंगार सजाने वाली, चढ़ हिमाद्री पर विश्व शांति का शंख बजाने वाली। कि राष्ट्रीयता क्या होती है और राष्ट्रीयता कहीं अंतर्राष्ट्रीयता में बाधित तो नहीं होती, इसलिए रामधारी सिंह दिनकर भारत भूमि पर भारत के स्वाधीनता आंदोलन की आवाज बुलंद करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को उस देश के रूप में स्थापित करते हैं जो विश्व शांति की बात करता है। जिस समय भारत परतंत्र था उस समय यह बात कहना बड़ा मुश्किल था, लेकिन दिनकर जी ने बात कही। जयप्रकाश नारायण रामधारी सिंह दिनकर जिसे बहुत सिंहासन खाली करो की जनता आती है। दिनकर जी ने कुछ साम्यवादी स्वभाव की भी कविताएं लिखी और गांधी जी पर भी कविताएं लिखी उन्होंने, लेकिन खुद उन्होंने कहा ये कि मैं जीवन भर गांधी और मार्क्स के बीच में झटके खाता रहा हूं, इसीलिए उजले को लाल से गुणा करने पर जो रंग बनता है वही रंग मेरी कविता का रंग है, वही रंग केसरिया रंग, वो रंग उन्होंने कहा। और स्वयं ये किसी आलोचक ने नहीं कहा, किसी दिनकर जी के पाठक ने नहीं कहा, स्वयं दिनकर जी स्वीकार करते हैं। 1965 के युद्ध के समय सैन्य शिविरों में वो कविताएं गाई जाती थी और दिनकर की अन्य अन्य कविताएं जो हैं सैनिकों के लिए शिविरों में, वहां के आम आदमी जो थे जब गांवों से सेनाएं निकलती थी तो दिनकर जी की कविताएं गा गा करके सैनिकों का उत्साह बढ़ाया जाता था। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको रश्मि रथी पूरी याद है, परशुराम की प्रतीक्षा से वो उद्धृत करते हैं, क्षमा क्षोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो। ये कविता की लाइन ऐसी है जो आम तौर पर तब से पिछले 50, 60, 70, 80 वर्षों से लेकर के आज तक जो है लगातार उद्धृत की जाती है, मुहावरा बन गई है, अपनी बात को कहने का अंदाज बन गया है। दिनकर जी की कविताएं जो है, श्वानों को मिलता दूध दही, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, ये कविता की पंक्तियां ऐसी हैं जो आम आदमी के मुंह पर, आम आदमी की जुबान पर आती हैं। अपनी बात को कहने के लिए दिनकर जी की पंक्तियों का उदाहरण दे करके जिस तरीके से अपनी बात को यहां पर पुष्ट किया जाता है या स्पष्ट किया जाता है, ये वास्तव में कवि दिनकर की वो सार्थकता है या वो उनकी सफलता है जो शायद हर कवि को नहीं मिलती। दिनकर जी की बहुत प्रसिद्ध कृति है उर्वशी, अपने समय का सूर्य हूं मैं। जब दिनकर जी इस तरीके की पंक्ति पढ़ा करते थे तो समूचा मंच जो है अनगिनत तालियों से भरा रहता था। एक लंबी उनका काव्य नाटक जिसमें चंद्रगुप्त के बारे में है, सेल्यूकस का उदाहरण देते हैं वो कि सेल्यूकस आपने आकर के हमें बहुत अच्छा किया कि हमें अपने आत्मगौरव का भान करा दिया। वो लिखते हैं, भारत भूमि है एक हिमालय से आसेतु निरंतर, पश्चिम में कंबोज कपिश तक उसकी ही सीमा है, किया कौन अपराध गए जो हम अपनी सीमा तक, अनाहूत हमसे लड़ने को क्यों सेल्यूकस चढ़ आया, मदोन्नमत यूनान जानता था न मगध के बल को, समझा था वह हमें छिन्न शायद पुर के कैसा, वह कलंक का पंख आज धुल गया देश के मुख से, हम कृतज्ञ हैं सेल्यूकस ने अवसर हमें दिया है। दिखा दिया पूरे विश्व को भारत की उस आत्मगौरव का व्यक्त करने का अवसर दिया सेल्यूकस ने। वीर सिकंदर के गौरव का प्रतिभू सेल्यूकस था, आज खड़ा है वह विपन्न आहत सा मगध सभा में, उस बलिष्ठ शार्दूल सदृश निष्प्रभ हत तेज अकिंचन, पर्वत से टकराकर जिसने नखरद तोड़ लिए हों, उस भुजंग सा जिसकी मणिमस्तक से निकल गई हो। तो ये है रामधारी सिंह दिनकर।
1: दिनकर राष्ट्र के हितकर। अभी आप ये वार्ता सुन रहे थे वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी की इस वार्ता के साथ ही हम अमित घोष, उमाशंकर जोशी, अजीत कुमार, महाश्वेता देवी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गोपाल दास नीरज, कुंवर बेचैन, कन्हैया लाल नंदन की स्मृति को नमन करते हुए आपसे यही विदा लेते हैं। वाचन स्वर नीलम मलकानिया, प्रस्तुति सहयोग वंदना, आलेख और प्रस्तुति राम अवतार पैरवा की।

ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज रात प्रस्तुत है ख्याल गायन। कलाकार हैं पंडित अर्णोब चट्टोपाध्याय। किराना घराना के दिग्गज कलाकार उस्ताद अब्दुल करीम खां और उस्ताद वाहिद खां का हाथ थामकर जिस सांगीतिक विरासत की शुरुआत हुई थी, उसने युगों का सफर तय किया और आज इसे आगे बढ़ाने वाले गुणी कलाकारों में पंडित अर्णोब चट्टोपाध्याय का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। कोलकाता के निकट स्थित उपनगर बोशीरहाट में जन्मे और संगीत के माहौल में पले बढ़े पंडित अर्णोब चट्टोपाध्याय ने अपने पिता संगीताचार्य श्री अरुण कुमार चट्टोपाध्याय से महज 5 वर्ष की आयु में संगीत सीखना आरंभ किया। आगे चलकर

0: आपने पंडित एकानन, विदुषी मालविका कानन और उस्ताद मशकूर अली खां जैसे प्रख्यात कलाकारों से शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया। पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय ने बड़ी ही छोटी उम्र में मंच पर कदम रखा। केवल 7 वर्ष की आयु में सन 1979 में कोलकाता में आयोजित सुरेश संगीत सम्मेलन में उस्ताद अमजद अली खान के साथ आपको कार्यक्रम प्रस्तुत करने का सुयोग प्राप्त हुआ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के टॉप ग्रेड के कलाकार होने के साथ साथ आप संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तहत ICCR के सूचीबद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ भी हैं। आज की पीढ़ी के सुविख्यात ख्याल गायकों की श्रेणी में आपका नाम शामिल है। किराना घराना की पारंपरिक पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय अपनी ख्याल और ठुमरी की प्रस्तुतियों में अद्भुत सुंदर गायकी का मिश्रण करते हैं, जो आपकी पेशकश को रंगदार और लोकप्रिय बनाता है।
1: Tonight in the National Program of Music, we present Khayal Recital by Pandit Arnob Chattopadhyay, the musical heritage initiated by Ustad Abdul Karim Khan and Ustad Abdul Wahid Khan. The doyens of Kirana Gharana has meandered through the ages and is still survived by a few vocalists such as Pandit Arnob Chattopadhyay. Born and groomed in a musical ambience in the suburban town of Boshirhat near Kolkata, Pandit Arnob Chattopadhyay was initiated into the world of music at a tender age of 5 years by his father, Sangeetacharya Sri Arun Kumar Chattopadhyay. Later, he was trained in classical music by such stalwarts as Pandit A. Kanan, Vidushi Malavika Kanan and Ustad Mashkur Ali Khan. Pandit Arnob Chattopadhyay flowered into a young performer very early in his life. At the age of 7 only, he shared the stage with Ustad Amzad Ali Khan at the Suresh Sangeet Sammelan, Kolkata in the year 1979. A top-grade artist of Akashvani and Doordarshan and an empaneled Hindustani classical music artist at ICCR, Ministry of Culture, Government of India, Pandit Arnob Chattopadhyay is one of the most acclaimed vocalists of the present generation. While maintaining the pure tradition of Kirana Gharana, Pandit Arnob Chattopadhyay is known for mixing the other forms of Gayaki both in Khayal and Thumri presentations, which makes his renditions quite colorful and popular.
0: आज रात पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय के साथ संगत करेंगे तबले पर इमोन सरकार, हारमोनियम पर कमलाक्ष मुखोपाध्याय और तानपुरा पर कोयल शाह।
1: Tonight, Pandit Arnob Chattopadhyay is accompanied on the tabla by Imon Sarkar, on the harmonium by Kamalaksh Mukhopadhyay, and on the tanpura by Koel Saha.
0: ख्याल गायन के इस कार्यक्रम की शुरुआत पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय राग यमन के साथ करेंगे। यह बंदिश पूर्वार्ध में विलंबित एक ताल, तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध

0: मंगल गायन के अंतर्गत आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग यमन सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग हमीर। यह बंदिश पहले मध्य लय तीन ताल तत्पश्चात द्रुत एक ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग यमन इन द ख्याल रिसाइटल बाय पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। He now presents Rag Hamir, the composition of which is set to Madhyalaya Teen Tal, followed by Drut Ek Tal.

0: पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग हमीर सुन रहे थे। ख्याल गायन की इस प्रस्तुति का समापन आप राग वाचस्पति के साथ करेंगे। यह बंदिश मध्यलय तीन ताल और द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग हमीर। पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय कंक्लूड्स हिज ख्याल रिसाइटल विथ राग वाचस्पति। The composition of the rag is set in Madhyalaya Teen Taal and Drut Teen Taal.

0: ख्याल गायन के इस कार्यक्रम में आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग वाचस्पति सुन रहे थे। आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर इमोन सरकार, हारमोनियम पर कमलाक्ष मुखोपाध्याय और तानपुरा पर कोयल शाहा। और इसी के साथ आज रात संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग वाचस्पति इन द ख्याल रिसाइटल बाय पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय इमोन सरकार, ऑन द हारमोनियम बाय कमलाक्ष मुखोपाध्याय एंड ऑन द तानपुरा बाय कोयल साहा। And with this, we come to the end of National Program of Music Tonight. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत

0: भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न भागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources.
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है.
2: Mr. Modi also handed over appointment letters to around 54,000 youth recruited across various departments of the government of Rajasthan. Home Minister Amit Shah called the inauguration of the new CG Semi-OSAT facility and India's new leap towards self-reliance in technology. In a social media post, Mr. Shah said the new facility will further invigorate Gujarat as the country's growth engine and open vast employment opportunities for youth. Prime Minister Modi will be on a six-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand from Monday. At the invitation of Indonesian President Prabowo Subianto, Prime Minister Modi will undertake a state visit to Indonesia from the 6th to 8th of this month. This will be Mr. Modi's fourth visit to Indonesia and his first bilateral visit since India-Indonesia relations were elevated to a comprehensive strategic partnership in May 2018. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be on an official visit to Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman from tomorrow till 10th of this month. During the visit to these countries, Dr. Jaishankar will be meeting with his counterparts and the leadership. The Ministry of External Affairs said the visit will focus on enhancing India's bilateral relations with the countries and also provide an opportunity to exchange views on regional developments and issues of mutual interest. The monsoon session of the Parliament will commence on 20th of this month. It will continue till 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju today informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of Parliament from 20th of July. Mr. Rijiju said the session will focus on meaningful debate, discussion and decisions on issues of national importance. Industry experts have said that ethanol blending program has not been introduced overnight but has been implemented through a measured, step-by-step and scientifically driven process. Addressing a press conference in New Delhi, former chairman and managing director of Engineers India Limited, Vartika Shukla said that ethanol blending program was placed in the public domain for a structured discussions and stakeholder consultations in 2018.
3: The ethanol blending program, particularly in 2018, it was in a structured manner put out for discussion and deliberation by all stakeholders. It is supported by scientific evidence, extensive testing by the automotive manufacturers and the agencies who support them, namely the Automotive Research Association of India. And also it is in line with the global best practices which is followed to green the fossil fuels to lower the carbon emissions.
2: In men's cricket, England defeated India by 4 wickets in the second T20 international of the 5-match series at Old Trafford in Manchester. India set a target of 191 runs for England. In reply, England scored 191 runs for 6 in 19 overs. Opting to bat first, India posted 190 runs for the loss of 7 wickets in the allotted 20 overs. Jacob Bethell was declared player of the match. And that's the end of this news bulletin.
4: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है. रात्रि के 11:10 हो चुके हैं. अब हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है. कल के कार्यक्रमों के साथ सुबह 5:48 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे. अभी अनुमति दीजिए. शुभरात्रि. जय हिंद.